बुलबुल का मगर चुप रहना ये मुझको बुरा लगता है। कुछ बात मेरी ओ मैना कह दे दे कोई गाली गाली, हाँ कभू का चश्मा हर

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ, अगले साल ठंड छह महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं छह महीने बीमार रही। उसके दो साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके चार साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट, एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मनन से मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक। पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो। आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, जिंदगी की भागदौड़ में हम खुद का ध्यान रखना भूल जाते हैं। सारा दिन हम दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों को खुश रखने के लिए जीते हैं, पर खुद को खुश रखना भूल जाते हैं। जिंदगी की भागदौड़ में जब सेहत बिगड़ने लगती है, जिनके लिए सारी जिंदगी दे दी वो तो कभी खुश होते नहीं। ना अपेक्षाएं खत्म होती है और ना इच्छाएं। जब अपने आप को खोकर दूसरों को बनाने की कोशिश करते हैं तब कुछ भी हासिल नहीं होता। जिंदगी में हर किसी के कभी न कभी एक मोड़ ऐसा जरूर आता है जब इंसान सब कुछ खोने के बाद खुद को देखता है कि जिनके लिए सारी जीवन दे दी वो तो खुश हुए नहीं। उनकी इच्छाएं अपेक्षाएं तो बढ़ती ही गई, कभी पूर्ण नहीं हुई। सब कुछ करते हुए हम खुद से मिलना, खुद की सेहत पर ध्यान देना, खुद से प्यार करना, खुद को सम्मान देना भूल जाते हैं। हमें लगता है कि कोई और ये सब हमारे लिए करेगा, लेकिन जब हम खुद ये सब हमारे लिए नहीं कर रहे तो औरों से क्या अपेक्षा रखना। जब हम खुद अपना ख्याल रखना छोड़कर सबका ख्याल रखने की कोशिश करते हैं तब दिन ब दिन अपनी सेहत, अपनी खुशी, अपनी शांति को भी खो देते हैं। हमें लगता है कि कोई और हमारी देखभाल करेगा, कोई और हमसे प्यार करेगा, कोई और हमें इज्जत देगा, लेकिन ये सब कुछ हम खुद के साथ क्यों नहीं करते? हम अपने आप में परिपूर्ण क्यों नहीं बनते? क्यों हमें इज्जत किसी और से चाहिए? क्यों हमें प्यार किसी और से चाहिए? क्यों हम चाहते हैं कि हमारी सेहत की देखभाल कोई और करे? ये सब हम अपने लिए क्यों नहीं करते? क्यों हम खुद को खोकर, खुद को भूलकर, खुद को मिटाकर दूसरों को बनाने की कोशिश करते हैं? क्यों हम भूल जाते हैं ये कलयुग है? क्यों हम भूल जाते हैं कि हमें किसी और से इज्जत नहीं चाहिए? हम खुद क्यों अपने आप को इज्जत नहीं देते? क्यों हम अपने आप को सम्मान देना भूल जाते हैं? प्यार मांगने के बजाय क्यों हम खुद को प्यार नहीं कर सकते? ये कलयुग है, यहाँ कड़वी बातें सुनने नहीं मिलेगी, ये तो होना नहीं है। कलयुग की हवा ही ऐसी है, पर हम खुद से अच्छी बातें क्यों नहीं कर सकते? कलयुग में अपमान करने वालों की कमी नहीं है, पर हम खुद को सम्मान क्यों नहीं दे सकते?

हम अपने साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं कर सकते? क्यों हमें अच्छाई बाहर से चाहिए? हम अपने अंदर अच्छाई क्यों क्रिएट नहीं कर सकते? क्यों हम अपनी ही रूह से प्यार नहीं कर सकते? जब तक भिखारी बनकर दुनिया के सामने खड़े रहेंगे, तब तक कुछ नहीं मिलेगा। अपने आप को भरने के लिए हम क्या करते हैं? हमें लगता है कि प्यार, सम्मान, अच्छा व्यवहार हमें बाहर से मिलेगा। लेकिन जब तक आप स्वयं से प्यार करना नहीं सीख जाते, तब तक आपको बाहर भी प्यार नहीं मिलेगा। जब तक आप खुद को सम्मान नहीं देते, तब तक आपको बाहरी दुनिया से भी मान नहीं मिलेगा। खुद को खोकर हम जहां को नहीं पा सकते, पहले खुद को पाना है, फिर जहां अपने आप मिल जाएगा। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, खुद को जाने बिगर हम खुदा को भी नहीं जान सकते। सारी जिंदगी हम बाहर की दौड़ में लगे रहते हैं लेकिन रुककर अपनी रूह को नहीं देखते। अगर खुद को देखना सीख जाते तो खुदा भी नजर आता। क्या है हमारा खुद का स्वरूप? शरीर तो नश्वर है, शरीर में विराजमान हम एक चैतन्य आत्मा है। परमात्मा कहते हैं कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शांत स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, सुख स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। हर आत्मा सतोगुणी है। अगर मैं खुद ही प्रेम स्वरूप आत्मा हूं तो प्रेम किसी और से क्यों चाहिए? अगर मैं खुद ही शांत स्वरूप हूं तो बाहर की परिस्थितियां शांत हो

या ना हो क्या फर्क पड़ता है? मैं अपने अंदर की शांति को क्यों महसूस नहीं कर सकती? अगर मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं तो बाहर की परिस्थितियों में सुख हो या दुख हो क्या फर्क पड़ता है? मैं अपने अंदर उस सुख को क्यों अनुभव नहीं कर सकती? अगर मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं तो लोगों की कड़वी बातें, कड़वा व्यवहार मुझे मेरी स्थिति से हिला कैसे सकता है? मैं शक्ति स्वरूप हूं तो किसी भी परिस्थिति में मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। किसी ने की हुई निंदा, अपमान, बुराई मुझे अपने शक्ति स्वरूप से हिला कैसे सकता है? अगर मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं तो अपवित्रता मेरे जीवन में आ नहीं सकती। अगर मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं तो किसी से भी परिस्थिति को पार होने के लिए मुझे सहयोग की जरूरत नहीं है। मेरे अंदर का विवेक मुझे सही और गलत का फर्क दिखा सकता है। मेरे जीवन के निर्णय लेने की ताकत मुझ में है। फिर क्यों मैं किसी और से पूछूं कि मुझे क्या निर्णय लेना है, क्या करना है? अगर मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं तो बाहर की परिस्थितियों का प्रभाव मुझ पर पड़ता है कैसे? मैं आनंद स्वरूप स्थिति से दुख स्वरूप में आती हूं कैसे? दुख स्वरूप ये तो मेरा ओरिजिनल स्वरूप नहीं है। जब तक हम अपनी खुशी लोगों के व्यवहार पर निर्भर करेंगे हम दुखी होते रहेंगे, लेकिन जिस समय हम अपने आप को अपने खुद के स्वरूप में स्थित करेंगे तब हमें सच्ची खुशी, आनंद, शांति प्राप्त होगी। आत्मिक स्वरूप में टिकना यही सारे दुखों का अंत है। जब तक हम बाह्य मुक्ता में रहेंगे हमें अपमान महसूस होगा, निंदा बुराई से हम प्रभावित होते रहेंगे, लोगों के स्वभाव संस्कार से प्रभावित होते रहेंगे। जिस समय हम अंतर्मुखी हो जाएंगे उस समय हमें लोगों का दृष्टिकोण, लोगों की भावनाएं, लोगों के मत, लोगों का व्यवहार प्रभावित नहीं करेगा। मान मांगने की चीज नहीं है, स्वयं को स्वमान में टिकाने की जरूरत है। अगर हम अपनी रूह को देखना, अपने आप को स्वमान देना सीख जाए, अपने स्वरूप में टिक जाए तो हमें इस दुनिया से कुछ भी पाने की इच्छा अपेक्षा नहीं रहेगी। सातों गुण हमारे ही अंदर है, लेकिन हम इसलिए अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि आज तक हमने अपने आप को देखने की कोशिश ही नहीं की। सारी जिंदगी भागदौड़ में बिता दी, कभी अपने स्वमान में नहीं टिके, कभी अपने आप से प्यार नहीं किया, कभी अपने अंदर के शांति को अनुभव करने की कोशिश नहीं की। अपने आत्मिक स्थिति में टिकना यही सारे दुखों से मुक्ति का मार्ग है। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, इस कलयुग में हम जिस चीज को भी पकड़ कर रखेंगे वही बात हमें दुख देगी। अपने नाम को पकड़े रहेंगे तो कभी किसी ने हमारी बुराई की तो दुख होगा। अपने मान को पकड़े रखेंगे तो कभी किसी ने अपमान किया तो दुख होगा। अपनी इमेज को पकड़े रखेंगे और किसी ने निंदा की तो दुख होगा। भूतकाल को पकड़े रखेंगे तो भूतकाल की कड़वी बातों से दुख होगा। भविष्य की चिंता को पकड़े रखेंगे तो भी दुख होगा। किसी व्यक्ति के प्रति नाराजगी पकड़कर रखेंगे

तो भी दुख होगा। किसी की कोई कड़वी बातें दिल में पकड़कर रखी तो दुख होगा। किसी का स्वभाव संस्कार का कठोरपन दिल में पकड़ के रखने से दुख होगा। किसी भी बात का भय हमें दुखी कर सकता है। इच्छाओं को पकड़कर रखना और वो पूरी नहीं हुई तो दुखी होना। दूसरों के प्रति अपेक्षाएं पकड़कर रखी तो दुख होता है। और फिर दुखी होकर हम परमात्मा को कहते हैं दुखों से छुड़ाओ, लेकिन परमात्मा कहते हैं छोड़ो तो छूटो। परमात्मा कहते हैं अपने आप से पूछो, छोड़ो तो छूटो। यह पाठ पक्का किया? छोड़ो तो छूटो यह पाठ सदा याद रहा? व दूसरों ने दुख देना छोड़ा तब दुखी होना छोड़ेंगे? परमात्मा कहते हैं कि जब परमात्मा दुखों से छुड़ाए तब मैं दुखों से छूटूं, ऐसा पाठ तो नहीं पढ़ लेते हो? किसी भी दुख की डाली को अपने बुद्धि रूपी पांव से पकड़ के तो नहीं बैठे हो? किसी भी पुराने स्वभाव संस्कार व किसी भी शक्ति की कमी होने के कारण, निर्बल होने के कारण दुखों की डाली पर ही तो नहीं बैठ गए हो? हर बात में छोड़ो तो छूटो यह बात प्रैक्टिकल में लाते हो? परमात्मा कहते हैं यही नहीं सोचो कि दूसरे मुझे दुख देना छोड़े तो मैं दुखों से छूटूं, संबंधी छोड़े तो मैं दुखों से छूटूं, विघ्न डालने वाले विघ्न डालना छोड़े तो मैं दुखों से छूटूं, भिन्न भिन्न परिस्थितियां मुझे छोड़े तो मैं दुखों से छूटूं, यह कभी नहीं सोचना। सदा स्वयं दुखों को छोड़ना तो स्वयं दुखों से छूट भी जाओगे। परमात्मा कहते हैं हर बात में, चाहे स्वभाव परिवर्तन में, संस्कार परिवर्तन में, एक दो के संपर्क में आने में, परिस्थितियां या विघ्नों को पार करने में, स्वयं को छोड़ो तो छूटो यह पाठ पक्का किया? परिस्थिति आपको नहीं छोड़ेगी, आपको परिस्थिति को छोड़ना पड़ेगा। दूसरी आत्माएं संस्कार के टकराव में भी आती है, तो भी यही सोचो कि मैं छोड़ूं तो छूटूं, यह टकराव छोड़े तो मैं दुखों से छूटूं, यह नहीं सोचना। अगर यह छोड़े तो छूटूं होगा तो टकराव समाप्त होकर फिर दूसरा शुरू हो जाएगा। कहां तक इंतजार करते रहेंगे कि दूसरे हमें दुख देना छोड़े तो मैं दुखों से छूटूं? परमात्मा कहते हैं दुखों की भिन्न भिन्न डालियों को हमें ही छोड़कर उड़ता पंछी बनकर परमात्मा के समीप का अनुभव करना है, परमात्मा को अपने पास बुलाना है, उनकी समीपता का अनुभव करना है। जब तक हम दुखों की अलग अलग डालियों को पकड़े रहेंगे तब तक हम दुखों से छूटेंगे नहीं। छोड़ना हमें है क्योंकि पकड़ा भी हमने है। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन। आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, परमात्मा कहते हैं पेपर तो आने ही हैं, भिन्न भिन्न परिस्थितियों के पेपर जीवन में आने ही हैं। जब पेपर आते हैं तो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूपों से आते हैं, लेकिन हमें पेपर में पास होना है। मैं पढ़ूंगी तो पास होंगी, या टीचर पेपर हल्का करे तो पास होंगी। परमात्मा कहते हैं क्या करना पड़ता है? मैं पढ़ूं तो पास हूं, यह ठीक है ना? ऐसे ही यहां भी सभी बातों को मैं स्वयं पास कर जाऊंगी, फलाना व्यक्ति पास करे यह नहीं, फलानी परिस्थिति पास करे यह भी नहीं, मुझे पास करना है। इसको कहा जाता है छोड़ो तो छूटो। इंतजार नहीं कर

करो। परमात्मा कहते हैं इंतजाम करो। किसी भी प्रकार के स्व के संस्कार व स्वभाव व दूसरों के स्वभाव और संस्कार देखने और वर्णन करने की कमजोरी है। पुरुषार्थ में निराधार नहीं आधार है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु का लगाव है। किसी भी गुण व शक्ति की कमी है। यह है भिन्न भिन्न दुखों के परिस्थितियों की डालियां। तो इन डालियों में से किसी एक भी डाली को पकड़ के तो नहीं बैठे हो? अगर किसी भी डाली को पकड़ा हुआ है तो दुखों से छूट नहीं सकते। परमात्मा के समीपता का अनुभव नहीं कर सकते। परमात्मा कहते हैं छोड़ो तो छूटो, यह पाठ पक्का किया है? दुखों की डालियों को तो नहीं पकड़ते हो? थक जाते हैं ना, तो डाली को पकड़कर बैठ जाते हैं। कभी स्वयं से थक जाते हैं, कभी दूसरों से थक जाते हैं, कभी सेवा से थक जाते हैं, तो डाली को पकड़कर फिर चिल्लाते हैं अब छुड़ाओ अब छुड़ाओ। परमात्मा कहते हैं पकड़ा आपने खुद है और छुड़ावे परमात्मा, यह कैसे हो सकता है? इसीलिए परमात्मा कहते हैं सदा छोड़ने की ताकत रखो। भिन्न भिन्न दुखों की डालियों को परिस्थितियों को पकड़े नहीं रहो। परिस्थितियां आएंगी और गुजर जाएंगी, बातें आएंगी और गुजर जाएंगी, उसमें अटके नहीं रहना है। परमात्मा कहते हैं मन बुद्धि से इन दुखों के डालियों को छोड़कर परमात्मा के समीप पहुंच जाओ। इस कलयुग में किसी भी बात से लगाव नहीं होना चाहिए। न हमारे नाम के प्रति हमें लगाव होना चाहिए, न हमारे इमेज के प्रति हमें लगाव होना चाहिए, न हमारे मान के प्रति हमें लगाव होना चाहिए। हमें बाहर की दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। परमात्मा कहते हैं स्वयं को इतना भरपूर कर लो कि बाहर से कुछ भी मांगने की जरूरत ही ना पड़े। और ये तभी मुमकिन होगा जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में टिक कर परमात्मा को याद करेंगे। जब तक इस दुनिया के देहधारियों को याद करेंगे हम दुखी होते रहेंगे, लेकिन जब हम खुद के आत्मिक स्वरूप में टिक कर खुद को आत्मा समझकर सुखों के सागर परमात्मा से अपने मन बुद्धि को जोड़ेंगे तभी हम सुखी हो पाएंगे। जब हम खुद को जानेंगे तभी हम खुदा को भी जान पाएंगे। परमात्मा कहते हैं पहले स्वयं को पहचानो तभी हम परमात्मा को भी पहचान पाएंगे। श्रोते हो, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम। ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार हैं गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रे। रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
1: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। खुशी को जब हमने देखना शुरू किया तो हमने पास्ट में देखा तो हमें पता चला कि जितना हम पास्ट को पकड़ के बैठेंगे खुशी उतनी छूटती जाएगी। फ्यूचर में जब हम जाते जाते हैं, प्लानिंग करते हैं या हर अचीवमेंट जो ऐसा होगा तो मुझे खुशी मिलेगी, तो डिपेंडेंसी वहां पहुंचती रहती है। और बार बार ये कहा भी जाता है कि पास्ट और फ्यूचर को छोड़कर प्रेजेंट में रहना चाहिए, यानी ये लम्हा, ये मोमेंट जब हम आपके साथ हैं या कोई भी जीवन में जब भी हम जहां हैं वो हमारा प्रेजेंट। कैसे उसको अगर हम सही तरीके से लें तो हमारी खुशी कायम रह सकती है और वो इंडेक्स बहुत स्ट्रेट रह सकता है। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
2: ओम शांति
1: सिस्टर शिवानी। सब कुछ तो हमें समझ में आ गया, मतलब जिस जिस पर डिपेंड कर रहा था वो तो छूट गया हमसे, मतलब पास्ट भी छूटा और फ्यूचर पर भी हमें समझ में आया कि जहां प्लानिंग सही है, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर इज नॉट बैड, बट देन माई डिपेंडेंसी ऑफ बींग हैप्पी वो अगर फ्यूचर पर डिपेंड होगी तो उसके साथ तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। प्रेजेंट पे आ जाते हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली मेंट बाय, मतलब हर बार बात ये की जाती है, प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट पे रहना?
2: एक्चुअली क्यों पास्ट और फ्यूचर में क्या होता कि जब भी हम पास्ट का वर्णन करते या फ्यूचर का करते वी आर इन द डूइंग मोड, यू नो। पास्ट के बारे में ऐसे व्हाट शुड हैव आई डन एंड इन द फ्यूचर ऐसे व्हाट डू आई हैव टू डू, सो इट बिकम्स द डूइंग, यू नो, द ह्यूमन डूइंग। एंड इस प्रोसेस में हम क्या भूल जाते, द बीइंग पार्ट, व्हाट डू आई हैव टू बी। एंड आज हम अपनी वोकैबुलरी को भी देखें तो हमारी सारी वोकैबुलरी क्या है, व्हाट आई शुड हैव डन, व्हाट आई शुडंट हैव डू, व्हाट शुड
1: हाउ मच आई हैव बीन डूइंग,
2: तो सब कुछ डूइंग पर फोकस्ड है और इसलिए हमारी हैप्पीनेस भी डूइंग पर फोकस्ड हो गई कि ये करेंगे।

0: होगा तो खुशी होगी। तो राजयोग हमें सिखाता दैट यू आर नॉट ह्यूमन डूइंग, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। सो फर्स्ट बी हैप्पी, नॉट डू एनीथिंग सो दैट यू कैन गेट हैप्पी, बट जस्ट दैट बीइंग हैज टू बी हैप्पी। तो वो बीइंग तो प्रेजेंट हर मोमेंट में हम उसको रियलाइज कर सकते। तो प्रेजेंट में रहना मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ एक बातें ऐसे हम अगर ध्यान रखें तो फिर प्रेजेंट में रहना बहुत इजी हो जाएगा।
1: प्रेजेंट में खुश रहना या प्रेजेंट में
0: है तो खुश है।
1: हाँ, आई नो, अमेजिंग।
0: प्रेजेंट में है तो स्टेबल है। डिस्टर्बेंस कहाँ आ रहा था? पास्ट का कोई इमोशन, कोई हर्ट, या फ्यूचर का कोई यू नो फियर या एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन भी क्या होती, क्योंकि हमने कहा एक्सपेक्टेशन हमें डिस्टर्ब करती। एक्सपेक्टेशन मीन्स फ्यूचर में आपका बिहेवियर या कोई सिचुएशन उसको प्रिडिक्ट करना, दिस इज एक्सपेक्टेशन। सो वी आर नॉट इन द प्रेजेंट। अगर हम प्रेजेंट में होंगे तो एक्सपेक्टेशंस हमारे खत्म होती जाएंगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आर ऑलवेज सम काइंड ऑफ अ प्रिडिक्शन। तो प्रेजेंट ऑलवेज वुड मीन स्टेबिलिटी। तो इसमें कुछ एक बातों पर हम ध्यान देते। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात इज कि आई द सेल्फ, जो मैं हूं, आई एम ऑलरेडी कम्प्लीट, आई एम ऑलरेडी ब्यूटिफुल। आई डू नॉट नीड टू कम्पीट और कम्पेयर विद एनीवन। जब हम फ्यूचर में भी अपनी हैप्पीनेस ढूंढते हैं तो हम देखते हैं मैं इनके जैसा बन जाऊं तो, मैं इस पोजिशन पर पहुंच जाऊं तो, इनके पास जो है वो मेरे पास भी आ जाए तो, देन वी शिफ्ट इन टू द फ्यूचर।
1: आई डोंट फील कम्प्लीट, सो वाई एज इवन इफ आई ओके आई क्रिएट दिस थॉट, देन ओनली आई फील कम्प्लीट,
0: बिकॉज फीलिंग इज बेस्ड ऑन व्हाट थॉट आई क्रिएट।
1: ओके, दैट इज वाई आई फील इनकम्प्लीट, बिकॉज आई थिंक
0: दैट
1: आई ओनली बी कम्प्लीट इफ दिस इज अ थिंग विल हैपन।
0: I think that I will only be happy, suppose I am assistant manager, let's say, okay? So I create a thought ki I will be happy when I become senior manager. When I reach there, I create a thought ki main tab khush hongi when I become general manager. So ye thoughts kon create kar raha? ये तो मैं ही क्रिएट कर रही हूँ। या इनके पास जो गाड़ी है, जब ये गाड़ी मेरे पास भी आ जाएगी, देन आई विल बी हैप्पी। तो ये जो सेल्फ है, ये एनर्जी है, ये शक्ति है। ये शक्ति को ना कोई वस्तु की जरूरत है, ना किसी पोजीशन की जरूरत है, ये अपने आप में कंप्लीट है और हैप्पीनेस इसकी नेचर है। इसकी कोई वस्तु या कोई पोजीशन या कोई फिजिकल ब्यूटी इसको कंप्लीट नहीं कर सकती, क्योंकि दिस इज एनर्जी। दिस डजंट रिक्वायर एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट टू बी कम्प्लीट, दिस जस्ट रिक्वायर्स द राइट थॉट।
1: मेरी यू नो मी बींग दिस कम्प्लीट एनर्जी एंड मी acting in the present also, maybe, you know, doing things or whatever, me being this person also, how does it relate?
0: I am this person only. What is this person? This person means main wo energy jo thoughts create karti, feelings create karti, is body, is costume ke dwara main apna role, apni responsibility nibha raha hu. Ab happiness kahan hai? Happiness meri thought hai. This I can create any time, any place, any moment, irrespective and independent of anything. लेकिन मैंने ही वो thoughts create किए कि मैं इस position पर पहुंचूंगा, मैं इनके जैसा सुंदर हो जाऊंगा, मेरे पास इतना salary आ जाएगा, then I will be happy. जो energy है, ये धन से कैसे, क्योंकि energy है, energy को complete करने के लिए क्या चाहिए होगा? सिर्फ right energy ही चाहिए होगी ना, physical चीज उसको complete नहीं कर सकती। हाँ, beauty है, अगर कोई हम physical beauty की बात कर रहे हैं, अगर मेरा हाथ कट गया सपोज यहाँ, तो हाँ मैं फिजिकली इनकम्प्लीट हूँ, क्योंकि ये फिजिकल है, इसका एक फिजिकल पार्ट ठीक नहीं है, तो आई से आई एम इनकम्प्लीट। सिमिलरली ये एनर्जी है, इट्स ओनली थॉट्स। सो ऑल दैट आई हैव टू डू टू फील कम्प्लीट, टू फील हैप्पी, इज टू क्रिएट राइट काइंड ऑफ थॉट्स। इवन अगर अब मेरा ये हाथ कट गया, यहाँ से दोनों हाथ कट गए, दोनों पांव कट, इट डजेंट मैटर, बिकॉज आई एम हियर। ये इनकम्प्लीट होगा, ये बॉडी इनकम्प्लीट होगी, लेकिन मैं फिर भी कहाँ हूँ? आई एम हियर। तो अगर मैं यहाँ बैठकर आई कैन क्रिएट द राइट थॉट, इवन अगर
1: तो अगर मैं वो राइट थॉट नहीं क्रिएट कर रही,
0: तो सब कुछ होते हुए
1: भी मैं इनकम्प्लीट हूँ,
0: एंड तब मेरी वो डिजायर्स की लिस्ट इतनी लंबी होती, ये होगा देन आई फील कम्प्लीट, ये होगा देन आई फील कम्प्लीट, एंड द लिस्ट जस्ट गोज ऑन, एंड देन आई एम ईदर इन द पास्ट और इन द फ्यूचर, क्योंकि मैं सोचती हूँ ये सब मिलेगा देन आई विल बी कम्प्लीट। तो ये जो सेल्फ रियल, इसीलिए कहा जाता है

0: acne pain.
1: Yes, you know, like, let's try. Oh my God, amazing. The first thought today in the episode only has made me feel very, very good, you know. Because somewhere ye jo adhurapan hai, yehi humse bahut kuch karwa raha.
0: Aur ye adhurapan ko hi hum kehte hai vacuum. Jo hum kehte hai na, andar pata nahi, hollow feel ho raha hai. Hollow matlab kya? Incomplete, andar khalipan hai. Kyun khalipan hai? Kyunki hum bahar dhoond rahe hain aur bahar dhoondne ke process mein we hai complete, lekin thoughts kya create kar rahe hain? Ye hota to, ye hota to ye kis tarah ki thoughts hai? Negative thoughts hai. Ye meri energy ko deplete karte hain. I only have to take care right kind of thoughts to stay complete and fulfilled. And ye jaise hi hum create karna shuru karte, I will feel very, very free, liberated, independent. Fir hoga right maine mein independence ki I am free. Nahi to hum hamesha kisi na kisi par, ya kisi na position par, vastu par, dhan par dependent hi rehte hain. Aur ek jo bahut important baat aati jo humne pichli baar bhi dekha ki kyun hum future mein jaate hain. क्योंकि वर्तमान में, प्रेजेंट में कोई ना कोई बाधा है, कोई ना कोई परिस्थिति है, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल है, और वो ऑब्स्टिकल मेरे अंदर दर्द क्रिएट कर रहा है. मैं ये समझती हूँ कि वो ऑब्स्टिकल आया तो मेरे अंदर दर्द है, तो मैं क्या करती हूँ, आगे के बारे में सोचना शुरू करती हूँ, तो एटलीस्ट आई विल बी पेन फ्री. बट आई हैव टू बी इन द प्रेजेंट. अब प्रेजेंट में ऑब्स्ट्रक्शन जो आई है उसको फेस करने के लिए मुझे क्या थॉट क्रिएट करना पड़ेगा कि ये एक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है.
1: अच्छा, फेस तो फिर भी करना ही पड़ेगा ना.
0: फेस तो करना है, फेस करना तो है ही मुझे, लेकिन फेस कैसे करना है? क्या मैं ऐसी थॉट क्रिएट करूं ताकि वो मेरे को एक ऑब्स्टिकल लगे ही नहीं. सो वी क्रिएट अ थॉट, व्हाट्स इन द वे इज एक्चुअली द वे, इट्स नॉट इन द वे. हम कहते हैं ये मेरे लिए
1: रास्ते में,
0: ये मेरे रास्ते में खड़ा है. ये एक्चुअली मेरे रास्ते में नहीं है, ये ही रास्ता है. व्हाट्स इन द वे इज एक्चुअली द वे. दिस परिस्थिति जो आई है, ये आई है ताकि मुझे एक ऐसा रास्ता लेना. सो लेट्स से दिस इज एन ऑब्स्टिकल, ठीक है. अब हम जा रहे हैं सड़क पे और बीच में एक बहुत बड़ा
1: पत्थर
0: है. अब हम पत्थर को कहकर कहें कि यही पत्थर मेरे रास्ते में खड़ा है और हम रुक जाएं, नहीं. रास्ता ही एक्चुअली कौन सा है? ऐसा है, रास्ता ही ये है.
1: ओह, तो वो पत्थर आया ही मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए.
0: रास्ता ही वो है. हम क्या करते हैं, हम रुक जाते हैं. सपोज रोड डिवाइडर आता, तो व्हाट इज अ रोड डिवाइडर? ऐसे एक रास्ते में बैरियर लगा है, तो हम वहां खड़े हो जाते हैं कि यहाँ बैरियर है, अब हम आगे नहीं जा सकते. नो, वी नो. सो वी से व्हाट इज द वे? द वे इज लाइक दिस. सो दैट्स व्हाई वी से इट्स नॉट इन द वे, इट्स देयर सो दैट वी सी द वे. और उससे क्या होता है, हमें रुकना नहीं है, हमें उसके अराउंड रास्ता ढूंढना है कि मेरा रास्ता क्या है. फाइनेंशियल क्राइसिस आया, इट्स नॉट एन ऑब्स्टिकल, इट्स जस्ट कम एंड आई हैव टू लुक फॉर द अदर वे कि कौन सा रास्ता है आगे जाने का. उससे क्या होगा, मेरी थिंकिंग की क्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. इंस्टेड ऑफ नहीं अब मेरा क्या होगा,
1: यू नो, एक वो हताश होने वाला जो एहसास है वो खत्म हो जाएगा.
0: एब्सोल्युटली.
1: क्योंकि जैसे ही वो पहाड़ की तरह पत्थर आ जाता है सामने, हम फिर भी रास्ता ढूंढ लेते हैं, लेकिन क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा, इससे मुझे जूझना है, तो उसे तो मुझे इग्नोर ही कर सकती हूँ.
0: वो कुछ है ही नहीं, वो जो आया है परिस्थिति
1: वो, तो वो
0: आई ही, वो रहेगी. वो आई ही उसे लिए है ताकि मैं अपनी सोच को एक नई दिशा देकर, उसको एक ऑब्स्टिकल नहीं, उसको एक अपॉर्चुनिटी समझ कर. लेकिन उसको अगर एक अपॉर्चुनिटी देखेंगे तब ना, जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी देखेंगे कैसी थॉट्स चलेंगे, इट विल बी अ डिफरेंट क्वालिटी. एंड दैट्स व्हाई व्हेन लाइक यू से सिचुएशन हिट मी, यू नो दिस हैज हैपेंड टू मी, सो वी विल से नथिंग हैपेंस टू मी, इट हैपेंस फॉर मी. जो भी हुआ, जो भी परिस्थिति आई, छोटी से लेके बहुत बड़ी तक, इट्स नॉट दैट हैपेंड टू मी, इट हैपेंड फॉर मी. क्योंकि जैसे ही परिस्थिति आएगी, इट डिमांड्स अ
1: सोल्यूशन,
0: रिस्पॉन्स. इट डिमांड्स अ रिस्पॉन्स. और ये परिस्थिति ही इसलिए आई है ताकि वो मेरे क्रिएटिव रिस्पॉन्स को और इन्हांस करती है. इस सिचुएशन को आप देखो कितनी परिस्थिति,
1: तो टेस्ट नहीं हो रहा है. हम जैसे जिंदगी को एक टेस्ट बना के रखते हैं ना, कि ये टेस्ट आते हैं, ये मतलब हर उससे गुजरना ही पड़ेगा. ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन खेल रहे हैं, यू नो, हर्डल रेस.
0: इवन इफ यू लुक एट इट लाइक अ हर्डल रेस, लेट्स से हम जीवन को उस तरह की एक हर्डल रेस भी करें, तो हर्डल रेस होता है तो क्या आता है, जब वो बैरियर आता है, वो हर्डल आता है, तो हम क्या करते हैं?
1: कूद जाते,
0: कूद जाते हैं, थोड़े उधर खड़े हो जाएंगे. ये आया ही मेरे रास्ते में, मेरे भाग्य में ही ये हर्डल है, अब मेरा कुछ

0: कंट्रोल, तो मैं अपने आप को ही मारना शुरू कर देती हूँ। देखो जो फिजिकली अपने आप को मारना शुरू कर दे, अंदर वो कितना अपने आप को अब्यूज कर रहे होंगे। इट इज सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग पेन, बहुत ज्यादा दर्द अपने आप को देना। कुछ एक बातों को इस तरह से अगर हम ध्यान रखें कि आई एम ऑलरेडी कम्प्लीट, आई एम ऑलरेडी ब्यूटिफुल, मुझे कम्पीट नहीं करना है, मेरे जीवन में जो भी परिस्थिति आई है इट हैज कम ओनली फॉर मी टू लर्न द वे, ये कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, और ये इट हैज नॉट कम टू मी, इट हैज कम फॉर मी टू लर्न हाउ टू क्रिएट द रिस्पॉन्स। और दूसरा सक्सेस की जो परिभाषा है वो है स्टेबिलिटी एंड एक्सचेंज ऑफ राइट एनर्जी इन रिलेशनशिप्स, एंड कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता, नो वन कैन हर्ट मी। तो जिन जिनको आज दिन तक समझा था, एक एक करके उनको हल्का होकर जाने दे, एंड देन यू सी हैप्पीनेस कैसे हो जाएगी,
1: बिकम्स योर प्रॉपर्टी एक्चुअली, एंड दिस इज व्हाट वी ऑल वांट, सो व्हाई डोंट वी ट्राई इट आउट। जो आज अभी हमने जो इनफैक्ट, अगर आपको इस श्रृंखला की शुरुआत याद हो तो हमने बात की थी कि जो हमारी फीलिंग है, हैप्पीनेस की हम बात कर रहे थे, इधर हैप्पी और सैड। सो हैप्पीनेस भी एक फीलिंग है, सैडनेस भी एक फीलिंग है, और वो मेरे थॉट्स या मेरे बिलीफ सिस्टम्स से आ रही थी। कहीं ना कहीं ये जो बिलीफ सिस्टम था पूरा का पूरा कि मैं इनकम्प्लीट हूं, मुझे कुछ चाहिए कम्प्लीशन के लिए, या मेरा सक्सेस या मेरी अचीवमेंट या मेरे वो व्यक्ति या वो लोग या मेरे अपने बच्चे भी। कितनी बार कितनी चीजों पर हम खुद को कम्प्लीट होने का एहसास दिलाते हैं, अगर वो हैं तो ये डिपेंडेंसी है। अगर मैं कम्प्लीट हूं, ये फीलिंग मुझे आ जाए, ये मेरा बिलीफ बन जाए कि आई एम अ कम्प्लीट बींग, एंड देन आई एम इंटरेक्टिंग विद अदर्स, अमेजिंग, इट्स गिव्स मी सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग। और ये हैप्पीनेस का सबसे आई थिंक पहला पायदान होगा। और उसके बाद जिस तरह से कोई भी ऑब्स्टिकल आ रही है, जैसे आपने कहा कि उसे हम एक इट हैज नॉट कम टू मी, इट इज फॉर मी, सो आई हैव टू लुक फॉर द राइट डायरेक्शन। तो कई सारी बातें आज हमने समझी, उन्हें अनुभव में लेकर आए। ये बिलीफ सिस्टम अपनी अब डायरी में हम नोट करना शुरू कर दें और हर रोज पढ़ने लग जाएं, ताकि जो पुराने बिलीफ सिस्टम हैं वो डिलीट होने शुरू हो जाएं। कोई बात, कोई मन में आपकी बात ऐसी है जिसको आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई बिलीफ सिस्टम है जो डिलीट नहीं हो पा रहा, प्लीज फील फ्री, आप हमें फोन करें या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 01242666 999 3445 999 3446 9873666 555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। शिवानी, थैंक यू सो मच आज की इस पूरी बातचीत के लिए। ओम शांति। अब एक नहीं, ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि ये जो पूरा प्रयास है ये आगे भी चलेगा। हर बात जो हम कह रहे हैं, जो मान रहे हैं, उसे अपने अनुभव में जरूर लाएं। फिर मिलेंगे। ओम शांति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवरलास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपनेपन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुणेरी आवाज में 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। मेडिटेशन को जब सही परिपेक्ष में समझा जाना और ये भी जाना कि किस तरह से उससे पहले का जो फाउंडेशन है वो

0: जरूरी हो जाता है और जो भी थॉट्स आना चाहते हैं उन्हें आने देना चाहिए एक साक्षी भाव से। अगर हम उन्हें देख पाते हैं तो फिर मेडिटेशन का जो रास्ता है वो आसान हो जाता है, क्लैरिटी आ जाती है। आज हम में से जरूर सबने थोड़ा थोड़ा अनुभव किया होगा क्योंकि एक लॉन्ग प्रोसेस है, काम करते करते ही होगा। लेकिन अब आगे सवाल ये उठता है कि एक बार जब वो महसूस होने लग गया, वो एहसास कि मैं एक पीसफुल सोल हूं या मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, तब उसे जीवन में जब दिन भर हम साथ रहेंगे तब कैसे उसे इम्प्लीमेंट करना है और उसका क्या लाभ हमें अपने दिनचर्या में मिलना चाहिए, इसी पर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। और इसे बात करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी, पिछली कड़ी के बाद अब ये क्लैरिटी हो गई कि मेडिटेशन से पहले जो क्लिंजिंग प्रोसेस है, जो बेस है, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद ही एक्चुअली इन द रियल सेंस जो हम अभी तक बात करते आ रहे हैं कि क्या अनुभव होना चाहिए, उसका थोड़ा थोड़ा एहसास होना शुरू हुआ है। अब ये एहसास दिख भी रहा है कि और गहरा होगा, समझ में आएगा, योग भी लगेगा, दिन भर क्या होगा फिर?
1: अब एक बार हमने मॉर्निंग में अपनी तैयारी कर दी तो हमें साथ साथ ये भी थोड़ा सा अटेंशन रखना पड़ेगा कि दिन भर हमें वो स्टेज को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि एक है प्रेपरेशन। जैसे अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज तो कर आएंगे लेकिन फिर सारा दिन में भी तो ध्यान रखेंगे ना कि आप क्या खाते हैं,
0: राइट?
1: अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया सारा दिन तो वो मॉर्निंग की एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं देगी। वो आपको फिटनेस देगी, सारा दिन में फिर जंक खाएंगे, या वो आपके वेट को कम करेगी, सारा दिन में फिर अगर बहुत ज्यादा फैटनिंग खाना खाएंगे तो फिर वेट बढ़ जाएगा, तो मोर और लेस फिर उधर ही पहुंच जाएंगे। और अगर सारा दिन में ध्यान नहीं दिया तो कुछ दिनों के बाद लगता है कि कोई परिवर्तन तो आ ही नहीं रहा, मेरे अंदर तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसलिए प्रोसेस ठीक है लेकिन फिर मुझे उसके ऊपर सारा दिन में भी ध्यान देना है कि यहां से चार्ज किया तो सारा दिन उस चार्ज को मेंटेन करके रखना, ये नहीं कि छोटी छोटी बातों में उसको गवा देना, लीकेज नहीं होनी चाहिए बार बार। जब हम इस स्थिति में आ जाते हैं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं या मैं एक आत्मा हूं, प्योरिटी, वो जब आ जाती है तो डिस्टर्बेंस खत्म हो जाती है, इमोशनल डिस्टर्बेंस, क्योंकि डिस्टर्बेंस इसी वजह से थी, ये भूल गया कि मैं कौन हूं, तो हर्ट बहुत जल्दी हो जाते थे। और जब ये स्थिति बन जाती है तो सारा दिन में कई ऐसे पहलू हैं जिस पर हमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, जिसमें हम अपने आप में पहले में और अभी में बहुत ज्यादा अंतर देख पाएंगे। सारा दिन में जो भी सिचुएशंस आती या जितने भी लोगों से हम मिलते हैं तो हम उनको जिस तरह से देखते हैं या जिस तरह से उनकी बात को सुनते हैं और समझते हैं, तो हमारे सुनने और समझने के लिए या हमारे देखने के लिए एक फिल्टर बीच में आ जाता है जिसको हम कहेंगे हमारा परसेप्शन, मेरा दृष्टिकोण, और मैं हरेक को उसी दृष्टिकोण से देखती हूँ। है ना, आप चाहे कैसे भी हो लेकिन मेरे अंदर जो आपका इमेज क्रिएट होगा वो इस फिल्टर को पास करके होगा, विच इज माई परसेप्शन। एंड मेरा परसेप्शन किस आधार पर बना है? मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस और मेरा बिलीफ सिस्टम, मेरी मान्यताएं क्या है और मैंने पास्ट में आपके बारे में क्या क्या सुना है।
0: तो मैं ये सोचती ही हूँ आपके बारे में कि आप एक बहुत गुस्से वाली हैं या आप एक यू नो हर तरह से ऐसी बात सिचुएशन क्रिएट करती हैं या आप हमेशा नाराज ही होंगे, सो वही परिपेक्ष,
1: राइट? तो अब क्या होगा कि क्योंकि ये फिल्टर बीच में आ जाता है और क्योंकि ये फिल्टर बना है पास्ट एक्सपीरियंसेस से और बिलीफ से, मतलब कहीं ना कहीं ये फिल्टर का आधार पास्ट है, बीती हुई बातें। अब मुझे जो इवैल्यूएट करना है और कर्म करना है, डिसीशन लेना है, वो मेरा अभी का प्रेजेंट और मेरा भविष्य बनाएगा। लेकिन ये प्रेजेंट और भविष्य, फ्यूचर, इस पास्ट से कलर्ड होने लग जाता है क्योंकि वो इस फिल्टर के थ्रू हरेक को देख रहा है। तो आप मेरा परसेप्शन इज लाइक ग्लासेस जो मैंने पहने हैं, तो अगर मैंने ग्रीन कलर के ग्लासेस पहने हैं तो इरिस्पेक्टिव ऑफ आपने कोई भी कलर की ड्रेस पहनी हो, मुझे उसमें ग्रीनिश शेड ही दिखाई देगा। ईच वन ऑफ अस इज गोइंग थ्रू चेंज, हम हर रोज परिवर्तन हो रहे हैं। लेट्स से आपके अंदर अगर गुस्सा करने की आदत है लेकिन नाउ यू आर ऑन अ जर्नी, आप एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, आप रोज मेडिटेशन कर रहे हैं, आपके संस्कारों में इतना परिवर्तन आ रहा है, लेकिन मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये है कि आप गुस्से वाले हैं। अब इफ आई एम नॉट एबल टू लुक एट यू हाउ यू आर नाउ, then even though you have changed, for me you have not changed. Mm. And that's very damaging for me.
0: Mm. Because you haven't even understood the right thing.
1: Absolutely. I am not looking at you as you are. I'm looking at you through that filter of my perception. And my perception says, ki aap gusse wale. To usse kya hoga? Ki bhale aapke andar change aaya hai, lekin mera drishtikon wahi hai nahi. Ye to gusse wale hai. To aaj aap kuch bhi kare, मैं फिर भी आपको उसी दृष्टिकोण से देखूं, मैं आगे के भविष्य के बारे में जो सोचूं उसी दृष्टिकोण से अगर सोचूं तो कितना डैमेजिंग है, क्योंकि आप तो वो है ही नहीं.
0: बिल्कुल. और सबसे बड़ी बात ये कि सिर्फ व्यक्तियों के साथ ही नहीं, इवन सिचुएशंस के साथ हम ऐसा करते हैं. ये सिचुएशन आएगी तो उसको ऐसे ही हैंडल करना, इसमें कहीं ना कहीं हमारी इनोवेशन भी खत्म हो रही है,
1: क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है. वो फिल्टर लगाने के कारण हम हर सिचुएशन को अपने बिलीफ सिस्टम के अनुसार ले लेते थे. तो बाहर परिस्थिति चाहे कैसी भी हो या व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, हम उसको मोल्ड करके अपने बिलीफ सिस्टम के अनुसार अंदर फिट कर लेते थे कि नहीं, इन्होंने तो ऐसा ही किया होगा या ये तो है ही ऐसे, भले वो चेंज हो गया है. तो अब जब मैं वो स्थिति मेंटेन कर सकती हूँ कि आई एम अ पीसफुल सोल, देन दैट परसेप्शन, दैट फिल्टर विच इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ पास्ट बिलीव्स, दैट ड्रॉप्स. एंड मैं हरेक को, जो आपने कहा क्लैरिटी, वो क्लैरिटी क्यों आएगी? क्योंकि वो डिस्टोर्शन खत्म हो गई है. जब इमोशनल डिस्टर्बेंस है अंदर तो वो डिस्टोर्शन है, वो सब वो परसेप्शन से क्रिएट हो रहा, लेकिन अब एकदम क्लैरिटी. तो आप जो हैं, जैसे हैं, मुझे वैसे ही दिखाई देंगे. मैं अपने पास्ट को अपने फ्यूचर पर इन्फ्लुएंस नहीं हो रही.
0: बट हम हमेशा ये कहते हैं कि मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है, सो मेनी टाइम्स एक्चुअली वी,
1: इसीलिए हमारे साथ कुछ नया नहीं होता. क्योंकि हमने ऑलरेडी ये थॉट अंदर डाल दिया कि मेरे साथ तो ऐसा ही होने वाला है, या मेरे साथ तो होता ही नहीं है कुछ ठीक से, या मुझे तो जॉब मिलती ही नहीं है, या मेरे से तो वो ठीक से बात करते ही नहीं है. तो व्हाट हैव आई डन, आई हैव फिक्स्ड कि पास्ट में ऐसा हुआ था तो फ्यूचर भी ऐसा ही होगा. तो उसके लिए यहाँ के डिस्टर्बेंस को फिनिश करें एक दिन के लिए सिर्फ. जस्ट ट्राई दिस आउट फॉर वन डे. हर एक को सिर्फ एक दिन के लिए एक्सपेरिमेंट करना है कि अपने माइंड और इंटेलेक्ट को इस पीसफुल स्थिति में रखना है. और उसके लिए क्या करना है, अगेन द सेम थिंग, नो जजमेंट, नो क्रिटिसिज्म. हर एक जो है, जैसा है, जो कर रहा है, उसको उस एक दिन के लिए जैसा है वैसे स्वीकार कर ले.
0: इट्स एक्चुअली वेरी, इट्स वंडरफुल. वाई? बिकॉज एक नया एंथुसियास्म, जो न्यूनेस की हम तलाश करते हैं, तो उन्हीं लोगों के साथ हर सिचुएशन, हर मीटिंग एक नया एक्सपीरियंस है.
1: एक्चुअली
0: दैट्स गुड, कीप ऑन लुकिंग फॉर दैट न्यूनेस.
1: एंड इट इज न्यू, बिकॉज हर बार जब हम मिल रहे हैं, वी आर न्यू, वी आर न्यू. हम कल में और आज में सेम नहीं हो सकते हैं कोई भी. इट्स नॉट नेसेसरी कि जो सिर्फ मेडिटेशन कर रहे हैं या जो, हर एक व्यक्ति के अंदर हर रोज हर क्षण परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि हर सोच एक परिवर्तन है. मेरी कोई भी दो थॉट सेम नहीं है. तो विद इन दिस मोमेंट एंड द नेक्स्ट मोमेंट आई हैव चेंज्ड.
0: ओके सिस्टर शिवानी, अगर हम एक इसी पे एक बात ही करते हैं कि जब ये हमने एग्जांपल कई बार लिया है, बट नाउ इट कैन बी एक्चुअली लुक्ड इनटू अ डिफरेंट, इवन अगर अपने प्रोग्राम में फिर देखें तो हर बार हम उसी मुद्दे को अगर उठाते हैं तो एक डिफरेंट परसेप्शन हमारे सामने आ जाते हैं. तो जैसे एक जब प्रमोशन के लिए जाता है और एक किसी व्यक्ति का प्रमोशन नहीं हो पाता है, कोई भी वजह रही हो या जो उसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है, तो पहला थॉट ये आता है कि मेरे बॉस ने, क्योंकि वो बॉस हमेशा ही करता है तो ऐसा ही किया है,
1: तो उनकी वजह से मुझे नहीं मिला होगा. कारण और कई हो सकते हैं, और हो सकता है थोड़े बाद में आपको कारण पता चले कि कारण कुछ और था, कि उस टाइम किसी को नहीं दिया या कुछ भी. लेकिन मैं ना बिलीफ सिस्टम में मैं उसको फिट कर लूंगी कि नहीं, मुझे क्यों नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने बीच में कोई ऑब्स्टिकल डाला होगा. तो हम हर सिचुएशन को अपने बिलीफ के साथ मोल्ड कर लेते हैं.
0: इनफैक्ट मदर इन लॉ सिस्टर, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का बहुत बड़ा ये इशू हो सकता है, बिकॉज देयर इज अ माइंड सेट, यू नो, जब भी कोई सिचुएशन आती है, मेरे मदर इन लॉ तो ये करना ही था, उन्होंने तो ऐसा ही बिहेव करना था.
1: Absolutely.
0: और जबकि अल्टीमेटली बाद में जाके अगर हमें रियलाइज हुई हो कि ऐसा नहीं था, यू नो, सो समवेयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इट.
1: वो तब हो सकेगा व्हेन आई एम एबल टू मेंटेन दैट स्टेबिलिटी, क्योंकि वो इनर पीस और स्टेबिलिटी होगी, तो जो चीज जैसी चल रही है आई विल बी एबल टू सी इट जस्ट लाइक दैट. और इसको हम सारा दिन में एक दिन के लिए प्रैक्टिस जरूर करके देखें, आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा. कि किसी व्यक्ति पे और किसी सिचुएशन पर जजमेंट नहीं पास करना,
0: और अपने पास्ट एक्सपीरियंस को हावी ना होने,
1: वो होगा नहीं, वो ऑटोमेटिकली

0: होगा, क्योंकि जब इसको अनडिस्टर्ब रखेंगे तो वो जैसा है वैसा ही दिखाई देगा। यहाँ जब डिस्टर्बेंस आने शुरू करती है तो जजमेंट और क्रिटिसिज्म भी पास्ट से इन्फ्लुएंस होकर आते हैं, तो जजमेंट नहीं तो वो पास्ट भी हावी नहीं होगा, एंड अभी जैसा है आई बी एबल टू सी इट इन द राइट पर्सपेक्टिव। तो उससे क्या होगा, मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर ये चेंज होता जाएगा, ये चेंज हो जाएगा और ये एक्यूरेट हो जाएगा। फिर हमारी परखने की शक्ति, हमारे निर्णय करने की शक्ति ये बहुत बढ़ती जाएगी। तो पावर ऑफ पीस जो है, दैट गिव्स मी द पावर टू लुक एट थिंग्स एज दे आर एंड नॉट कलर्ड बाय माय पास्ट। दूसरी चीज जो इस स्थिति में रहने से मुझे मिलती है वो है पावर टू इन्फ्लुएंस। हर एक व्यक्ति आज सारा दिन ट्राई कर रहा है कंट्रोल करने के, दूसरे को कंट्रोल करने के लिए, दूसरे को चेंज करने के लिए, लेकिन हमने वो तो अब समझ लिया कि आई कैन नॉट चेंज एनीबडी, लेकिन फिर भी हम सारा दिन रिलेशनशिप्स में है, संबंध संपर्क में है, तो हर संबंध में होता ही क्या है, किसी का किसी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, एक का दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो जितना हम ये इनर स्टेबिलिटी में होंगे, इस स्थिति को मेंटेन करके रखेंगे, तो हमारी जो वाइब्रेशन है वो प्रभाव जो डालेगी दूसरों के ऊपर, तो जो हम परिवर्तन चाहते हैं उनसे वो परिवर्तन वो बहुत इजीली कर पाएंगे, क्योंकि हम उनको वो पावर दे रहे हैं। सो आई डू नॉट हैव टू ऑर्डर, आई डू नॉट हैव टू डिक्टेट, बट आई जस्ट हैव टू बी दैट। वो स्थिति अपनी मेंटेन करें, वो ऑटोमेटिकली वो करते जाएंगे जो मुझे चाहिए या जो मैं चाहती हूँ कि उनके लिए बहुत अच्छा है। कई बार लोग कहते हैं कि लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो उनके लिए बहुत अच्छा है। यस, बट दे नीड द पावर टू डू इट, एंड वो पावर आई विल बी एबल टू गिव फ्रॉम हियर, नॉट फ्रॉम हियर।
1: ओके, सो वंस वी गेट गॉट एम्पावर्ड बाय द पीस, वी आर एबल टू एम्पावर द अदर पर्सन।
0: एब्सोल्युटली, क्योंकि दूसरे को परिवर्तन करने के लिए शक्ति चाहिए। उसको समझ मिल गई है उसके पास शक्ति नहीं है। लीडर्स जो हम देखते हैं, जो आज दिन तक हमने इतने सारे लीडर्स देखे, या एक कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हम लीडर देखते हैं, तो वो इन्फ्लुएंस क्यों कर पाते हैं, क्यों लोगों से वो मोटिवेट कर पाते हैं, क्योंकि वो अपनी इनर स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। जहां उन्होंने वो खो दिया तो वो किसी को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, और जब हमारी वो स्टेबिलिटी होती है तो हमारी कम्युनिकेशन वो भी बहुत अच्छी हो जाती है,
1: स्ट्रांग हो जाती है, किसी क्लैरिटी के
0: क्लैरिटी कन्फ्यूजन नहीं।
1: यहाँ पे वो जो सवाल उठता था कि बिना एंगर के काम नहीं होता, बिना भय दिए काम नहीं हो सकता, सबॉर्डिनेट से जो काम करवाने वाली बात है,
0: क्योंकि तब हमें काम करवाना था, अब हमें काम करवाना नहीं है, हम जो है वो बन रहना है अंदर, काम ऑटोमेटिकली होता जाएगा, अपने आप होता जाएगा, एंड जो उसकी क्वालिटी निकलेगी, दैट्स नॉट कि सिर्फ काम अच्छा होगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स। क्योंकि अगर हम वो पीसफुल स्टेट मेंटेन कर सकते हैं तो जिसके भी कॉन्टेक्ट में हम आएंगे उनको भी ऑटोमेटिकली वो पीसफुल वाइब्रेशन।
1: और यहाँ आई थिंक एक और अंडरलाइन जो बात ये होती है कि वो कम्प्लीटली समझ ले, तो वो जितना समझ पा रहा है उतनी पेशेंस और उतना मुझे लगता है उतनी एक वो रखना बहुत जरूरी है कि ओके दिस मच इज इन्फ्लुएंस्ड, ये एक्सेप्टेंस, ये हम क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरी तरह से क्योंकि ये उसके लिए बहुत अच्छा है इसलिए वो पूरी तरह से समझ ले, लेकिन वो अपनी अपनी समझ से ही समझ पाएंगे, ये भी एक
0: एक्सेप्टेंस अपने आप मिलती जाएगी जब अंदर यहाँ स्टेबिलिटी आएगी। तो हम इसको भी सारा दिन में करके देखें, जैसे इमेजिन करें कि जब कोई अगर परिस्थिति आ जाती है, क्राइसिस जिसको हम कहते हैं, ऑफिस में या घर में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जहां आपको दिखाई दे कि सारे चारों तरफ बहुत हलचल सी मच गई है, और जिस टाइम समझा जाए कि ये तो स्वाभाविक है, बात ही ऐसी थी, सिचुएशन ऐसी थी कि सब लोग डिस्टर्ब हो गए, जस्ट रिमेम्बर कि मैं कौन हूं, एंड उस स्थिति को मेंटेन करते, इमेजिन योर सेल्फ जैसे एक शिप होती है, एक तूफान में जा रही है, लेकिन तूफान आ गया तो वो अपना एंकर डालकर रुक जाएगी। अब तो एंकर क्या होगा, हमारा जो लंगर डालेंगे हम, वो क्या है, वो हमारी अवेयरनेस की स्थिति। उस लंगर को नीचे फेंकते हैं तो वो जाकर हिट करता है उसको, क्योंकि एक फाउंडेशन चाहिए, एक पकड़ चाहिए, वो पकड़ क्या होगी, मेरी अंदर की स्टेज वो ऑलरेडी स्टेबल हो गई कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैंने वो अवेयरनेस क्रिएट की कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, और उस कॉन्शियसनेस से वो पीस और पावर की वाइब्रेशंस जैसे कि उस एंकर से होती हुई यहाँ ऊपर आ जाती हैं, और यहाँ से आकर वो ऑटोमेटिकली चारों तरफ फैल जाएंगे। तो उस समय क्या कि सब लोग थोड़ा सा डिस्टर्बेंस में है, सब लोगों का बात करने का तरीका चेंज हो गया है, लैंग्वेज चेंज हो गई है, काम करने का तरीका चेंज हो गया है, एंड देयर आई एम।

0: should say stable. तो उससे फायदा क्या होगा? I will to remain stable, लेकिन everyone else around me will get the power to become stable. That is a leader. किसी भी एक दिन इसको प्रैक्टिस करें कि कोई एक ऐसी जब सिचुएशन आएगी तो प्रभाव में ना आ जाए सिचुएशन के, अपने आप को जस्टिफिकेशन ना दे, नहीं नहीं सब लोग डिस्टर्ब्ड है, मैं इमिजिएटली आई हैव टू बी द लीडर, आई हैव टू बी द वन जिसने सबको एम्पावर करना है. साक्षी, नॉर्मली क्या होता है जब कोई परिस्थिति या डिस्टर्बेंस आती है तो हम बहुत ज्यादा वाचा में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा कर्मण में आ जाते हैं कि नहीं नहीं क्या करना है, भाग दौड़. उस समय लगता है टाइम भी नहीं है एक मिनट के लिए, लेकिन वो एक मिनट निकालने से बहुत सारी टाइम और एनर्जी बच जाती है,
1: कंटेन हो जाती है. इनफैक्ट अगर हम एक एग्जांपल लें जो अगर मदर और टीनेज जो चिल्ड्रन है उनका जो क्योस होता है और उसमें जब होता है कि मेरे बात नहीं समझ रहा, मैं उसी के लिए कह रही हूँ, वो जो क्योस और वो जो इन्फ्लुएंस की बात है, यहाँ ये जो स्थिति में आई थिंक वो
0: एब्सोल्युटली पेरेंट चाइल्ड के इन्फ्लुएंस में, टीचर और स्टूडेंट, नॉर्मली टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप में भी ये बहुत आता है क्योंकि टीचर्स ये समझते कि हमारी जिम्मेवारी है इनको चेंज करना, इनको परिवर्तन करना, और फिर वो अंदर फ्रस्ट्रेशन हो जाता है क्योंकि वो हो नहीं रहे. तो वो अंदर एक बहुत
1: समझ क्यों नहीं रहे, वो समझते क्यों नहीं है, अगेन
0: तो आई विल हैव टू मेंटेन दैट स्टेबिलिटी. एंड वो स्टेबिलिटी अपने आप औरों को इंस्पायर करती है उन जैसा बनने के लिए. और उस समय जब वो सिचुएशन ऐसी हो, अगर दूसरे लोग कोई हमें प्रवोक भी करना चाहें कि आपको टेंशन नहीं हो रही है या आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है, ऐसा बी केयरफुल डोंट थिंक क्योंकि कई बार लोग समझते हैं कि अगर हम उस समय वो टेंशन के वायुमंडल में नहीं जाएंगे तो लोग समझेंगे कि हमें कोई ध्यान
1: हम कंसर्न नहीं है.
0: अब हमें अंडरस्टैंडिंग है कंसर्न क्या है. ये कंसर्न नहीं है, ये क्योस कंसर्न नहीं है. तो अगर कोई हमें उस वायुमंडल में खींचने की भी कोशिश करे, ये है साक्षी. कई बार लोग डरते कि हम डिटैच हो जाएंगे, हम दुनिया से नहीं डिटैच हो जाते, लेकिन ये सिचुएशन से इस तरह की क्राइसिस में अपने आप को डिटैच्ड रख सकते हैं और वो डिटैचमेंट से उस क्राइसिस को बाहर निकाल सकते. अभी दिन तक हम सोचते थे कि जैसी परिस्थिति वैसी मेरी मन की स्थिति, तो परिस्थिति डिस्टर्ब्ड मन डिस्टर्ब्ड. परमात्मा ने हमें आकर सिखाया जैसी स्थिति वैसी परिस्थिति, क्योंकि आपकी स्थिति, आप आत्मा हो, आप शक्तिशाली हो, परिस्थिति है क्या चीज. तो अभी तक हमने अपने आप को बहुत कमजोर समझा तो परिस्थिति का स्थिति पर प्रभाव, लेकिन एक्चुअली होता है स्थिति का परिस्थिति पर प्रभाव. स्थिति डिस्टर्ब्ड होती है तो परिस्थिति भी सारी डिस्टर्ब दिखाई देती है. स्थिति स्टेबल होगी वो बड़ा से बड़ा क्राइसिस ऐसे हो जाएगा, एकदम स्टेबल आ जाएगा. तो डोंट लूज योर काम दैट टाइम. तो वो जो सुबह में किया होगा मेडिटेशन और वो स्थिति की प्रैक्टिस और सारा दिन में अटेंशन, उसको ऐसे टाइम पे यूज करना है. डोंट फॉरगेट इट एट दैट टाइम.
1: सिस्टर शिवानी, इसमें बात करते करते मुझे एक बात सामने आई है कि व्हेन आज के अगर दौर में देखते हैं तो वी आर ऑल लुकिंग फॉर मिरेकल्स.
0: दिस इज
1: मिरेकल्स. हम देखें तो कि परिस्थिति के ऊपर हम हावी होंगे, स्थिति हावी हो जाती है, हम किस स्थिति में है, क्योंकि परिस्थितियां तो फिर अपने उस हिसाब से बदल जाएंगे. इट्स वंडरफुल एक्चुअली.
0: एंड तब क्या होगा, हमें दिखाई देने लगेगा धीरे धीरे कि हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में है. अभी ऐसे लगता है कि कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज आई गेट स्वेड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, आई गेट कैरिड अवे अकॉर्डिंग टू द पीपल. बट व्हेन आई एम एबल टू मेंटेन दैट एंकर इनसाइड, then I have that master of the situation. And ये है स्वराज्य फिर. और ये इतना सहज है और इसकी टेक्निक जब सीख ले तो इसको कभी भी कहीं भी कितनी भी बार दिन में यूज कर सकते हैं. तो लाइफ कैसी होती जाएगी, वेरी स्ट्रीम लाइंड होती जाएगी, बहुत स्मूथ होती जाएगी. और तीसरा जो हमें ये स्थिति हेल्प करती है वो है प्रोटेक्शन. आई एम अ पीसफुल सोल. इसको जब हम इस स्थिति में अनुभव कर लेते और इसको स्टेबलाइज कर लेते हैं तो ये हमारे लिए एक प्रोटेक्शन का बहुत बड़ा काम करती है. आज दिन तक क्या होता था कि जब भी हमें कोई क्रिटिसाइज करता, हम तो लोगों को क्रिटिसाइज करते थे, जजमेंट पास करते, लेकिन लोग भी तो हमें क्रिटिसाइज करते. अब हम तो शायद बंद कर दें, लेकिन सब लोग तो नहीं बंद करने वाले हैं,
1: और वो हर्ट हम लेते जाते हैं.
0: तो किसी ने हमें क्रिटिसाइज कर दिया, किसी ने हमें इंसल्ट कर दिया, किसी ने सबके सामने कुछ ऐसा कह दिया, तो नेचुरल संस्कार बन गया था हर्ट का. तो हर्ट मतलब कि मेरे आसपास

0: हो सकती हैं जो आपके पास हों, आपको खुला निमंत्रण देते हैं। आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं।
1: हमारे फोन नंबर है 09999934555, 09999934666, 09873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com।
0: अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी का ये सफर यूं ही चलता रहेगा। आने वाली कड़ियों में फॉरगिवनेस पे बात करेंगे कि सचमुच क्षमा को सही परिप्रेक्ष्य में कैसे देखें। अब दीजिए इजाजत, ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिड़के बोलना है, कुछ भी हुआ चिड़के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।
3: दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपके हाथ में जो मोबाइल है या लैपटॉप आप इस्तेमाल करते हैं या टैबलेट यूज करते हैं, उसके पीछे कितने लोगों का हाथ होता होगा? और उन सभी हाथों में सबसे ज्यादा कीमती हाथ किसका है? मैं समझता हूँ उसका, जिसने उस तकनीक को, उस टेक्नोलॉजी को आम इंसान तक पहुँचाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, सस्ते दाम पर, आम इंसान के हित को सोचकर। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं एक ऐसे ही खास मेहमान से हमारे आज के एपिसोड में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM और ये कार्यक्रम है यशस्वी भारत। मैं आरजे शांतनु आज मिलूंगा एक ऐसे खास मेहमान से। ये मेहमान है प्रोफेसर दीपक पाटिल, जिन्हें भारत सरकार ने वर्ष 2013 में उनके तकनीक और विज्ञान के प्रति समर्पित जीवन के लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। पद्मश्री दीपक पाठक जी एक शिक्षक रहे हैं और वो अपने जीवन को एक छात्र की तरह जीते हैं। आइए जानते हैं उनसे कैसे उन्होंने तैयार किया देश का सबसे सस्ता टैबलेट आकाश, और भी कई सारी जुड़ी हुई बातें उनसे जानेंगे आज के इस एपिसोड में। सबसे पहले करते हैं हम उनका स्वागत। रेडियो मधुबन के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर पाठक जी, नमस्कार। सबसे पहले हमारे श्रोता साथियों की तरफ से और हमारे पूरे रेडियो मधुबन टीम की तरफ से आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने हमारे लिए समय निकाला कि हमसे आप बातचीत करें, हमारे श्रोताओं से रूबरू हों और कुछ ऐसी बातें जानने का

0: हमें अवसर दे रहे हैं जो कि आम तौर पे शायद हम लोग इतना सोचते नहीं है। एक लैपटॉप हाथ में होता है, गैजेट हाथ में होता है और हम उसमें बिजी हो जाते हैं, बट उस गैजेट का हमारे पास तक पहुंचाने के पीछे किसी व्यक्ति का क्या सोच चलता है, क्या वो बिगनिंग फ्यू स्टेप्स होते हैं जो कि किसी को इंस्पायर करता है कि मैं कुछ नया तैयार करूं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर है कि आज हम आपसे बातें करेंगे और बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कैसे हैं आप।
1: मैं एकदम ठीक हूँ, धन्यवाद। लेकिन सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा कि ये अवसर आपके लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण मेरे लिए भी है। ब्रह्म कुमारी का काम पूरे देश में, पूरे संसार में काफी प्रसिद्ध है और मैं तो एक शिक्षक हूँ खाली, तो असल में मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए कि मुझे आपने एक अवसर दिया यहाँ आके कुछ मेरे बारे में बोलने के लिए।
0: डॉक्टर पाठक जी, आपसे बात करने का तो एक सौभाग्य ही है। हम ये चाहेंगे कि केवल ये एक टॉक शो न रहे, लेकिन आप कई हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने और बार बार हमसे मिले। लेकिन आज के इस एपिसोड की हम शुरुआत करना चाहेंगे एक कहानी से, आपकी कहानी से। आपकी कहानी, आपकी जुबानी। क्या था सफर, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? वी वुड बी रियली हैप्पी टू नो दैट।
1: थैंक यू सो मच। मेरी कहानी तो जैसे साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में होती है वैसी रही है। मेरे पिताजी आर्मी में थे, दूसरे विश्व युद्ध के बाद उन्होंने आर्मी छोड़ी, डॉक्टर थे वो, और सिविलियन सर्विस ज्वाइन की मध्य प्रदेश में। उन्होंने बस एक गलती करी कि आर्मी का जो डिसिप्लिन और एथिक्स होता है उसको संजोने का प्रयत्न किया, तो जब भी वे किसी के विरुद्ध एक्शन लेते थे तो उनका तबादला हो जाता। इसलिए मुझे ये बड़ा सौभाग्य मिला कि मेरी 11 वर्षों की शिक्षा 11 अलग अलग शालाओं में हुई, अलग अलग शहरों में हुई, क्योंकि और बहुत ही मतलब एक तरह से अच्छा भी हुआ, क्योंकि बाकी लोगों को क्या है, औरों से दोस्ती करने के लिए 2-3 साल 4 साल मिल जाते हैं, क्योंकि 10-12 साल साथ में रहना होता है। मुझे ये पहले से पता था कि इतना समय मेरे पास नहीं होगा, तो मुझे मित्रता करने में 2 या 4 दिन से अधिक वक्त नहीं लगना चाहिए, ऐसा मैंने ठान लिया था और वो सफल भी हुआ। मेरे काफी मित्र सब दूर उस समय में हुए। जब मैं, मेरी माताजी गोवा से है, तो मेरा ननिहाल गोवा है, मेरी मदर टंग टेक्निकली कोंकणी है, हालांकि मैं कोंकणी समझ सकता हूँ, बोल नहीं सकता। मेरे पिताजी के माँ बाप बचपन में उनके 1.5 साल के थे तो गुजर गए थे, तो उनकी परवरिश वडोदरा में रिश्तेदारों के साथ हुई थी, तो उनकी मातृभाषा गुजराती रही। मेरे माँ की मातृभाषा कोंकणी थी। मैं 11 स्कूलों में जो पढ़ा मध्य प्रदेश में, वहां सब हिंदी में पढ़ाई करी, शुरू के कुछ वर्षों में मराठी में पढ़ाई करी थी। तो मैं कहाँ से आता हूँ, इसका जवाब यही है कि मैं शायद पूरे हिन्दुस्तान में हूँ, क्योंकि इंदौर में इंजीनियरिंग करने के बाद मैं जब IIT में आया 1969 में, तब से आज तक मैं यही हूँ।
0: मेरे को लगता है सबसे ज्यादा इस बात का फख्र आपको ही होगा कि आपने पूरे देश में पढ़ाई की है। कोई हम जैसे लोग होते हैं जो एक स्कूल में पढ़ते हैं या ज्यादा से 2-3 स्कूल में पढ़ते हैं।
1: हाँ सही है। तो बचपन में जो मैं बड़ा हो रहा था, तो उस समय जैसा कि स्वाभाविक था, स्वतंत्रता जस्ट मिली थी देश को, और माहौल यह था कि हम लोग बचपन में महाराणा प्रताप और शिवाजी और लक्ष्मीबाई की कहानियां सुन के बड़े हुए, तो मेरे मन में यह विचार आया कि अगर देश के लिए कुछ करना है तो या तो मैं सिपाही बनूं या शिक्षक बनूं। तो ये मैंने बहुत पहले तय कर लिया था कि आगे जीवन में या तो मैं सिपाही बनूंगा या शिक्षक बनूंगा। उस समय जो बचपन में विचार होते हैं, ऐसा मुझे लगा कि अगर मैं शिक्षक या सिपाही बनता हूं तो देश की अधिकतर सेवा कर सकूंगा। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, स्कूल की शिक्षा खत्म करके इंदौर में इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने पढ़ाई करी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पास हुआ, तो उस समय मैं तृतीय वर्ष में आर्मी नेवी एयरफोर्स के लोग आपके सिलेक्शन करते थे ग्रेजुएट इंजीनियर्स का, मैं तीनों जगह सिलेक्ट हुआ था। लेकिन जब SSB का इंटरव्यू देने की बात आई तो पिताजी ने कहा कि नहीं, तुमने पोस्ट ग्रेजुएशन करे बगैर कोई

सर सावड़ा, हम दोनों उनके सलाहकार थे और वो भी काम काफी अच्छा हुआ। उसके बाद कुछ ऐसा माहौल बना कि फाइनेंशियल सेक्टर में लोग आकर मुझे पकड़ते थे, उनको लगता था कि मैं उनकी सिस्टम में कुछ अच्छा बदलाव ला सकता हूं। रिजर्व बैंक के गवर्नर थे उस समय डॉक्टर रंगराजन, उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा काम किया बैंक कंप्यूटराइजेशन के लिए, तो उन्होंने भी मुझे आरबीआई कुछ कमिटीज में पकड़ा। तो इस तरह से मैं फाइनेंशियल सेक्टर में काफी काम करता। शिक्षक तो मैं पहले से था ही, रिसर्च भी ठीक ठाक करता था, लेकिन मेरा जो रिसर्च है वो हमेशा अप्लाइड रिसर्च रहा है। थ्योरेटिकल रिसर्च में मेरी कोई रुचि ज्यादा नहीं थी। और शिक्षा के मामले में मेरी यह धारणा है कि विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, यही शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मैंने ये बहुत पहले पाया था कि अगर कक्षा में मेरे 60-65-70 विद्यार्थी हों तो मेरे लिए वो कभी स्टैटिस्टिक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उनमें से हर एक विद्यार्थी के लिए मैं केवल एक ही शिक्षक हूं। तो ये मुझे हमेशा याद रखना चाहिए और मुझे हर विद्यार्थी को प्रेरणा देने की कोशिश करना चाहिए। तो इस सिलसिले में कुछ एक दो मजेदार एक्सपेरिमेंट मैंने किए थे। जब शुरू में मुझे नया क्लास लेना होता है तो मैं दो दिन उस कक्षा में सबके रोल नंबर और नाम याद करता हूं और कक्षा में जाके लोगों को नाम से बुलाता हूं। छोटी सी चीज है, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि अगर कोई विद्यार्थी ये देखे कि शिक्षक उसे नाम से पुकार रहा है तो विद्यार्थी को लगता है कि हाँ, दिस फेलो केयर्स फॉर मी, और उससे कुछ तबन्ना ज्यादा बढ़ती है काम। देखिए, सीखने और पढ़ाने में मेरे हिसाब से सीखने में एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि कोई भी विद्यार्थी तभी सीखता है जब वो विद्यार्थी किसी लेक्चर को सुनता है या कोई किताब पढ़ता है या प्रश्न हल करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, उसके बारे में डिस्कशन करता है, ये सब कुछ गलतियां करता है, सुधारता है। जब ये सब करता है तभी वो सीखता है। वो केवल किसी शिक्षक ने अच्छा लेक्चर दिया इसलिए नहीं सीखता, उसने अगर वो सुन के उसके ऊपर विचार किया तो ही सीखता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर विद्यार्थी स्वयंभू है और हर विद्यार्थी जितना ज्यादा काम करेगा उस विषय पर उतना वो अधिक सीखेगा। तो मेरा ये हमेशा से ये सोच रही है कि शिक्षक का मुख्य काम जो है वो केवल लेक्चर देना या लैब कंडक्ट करना या परीक्षा लेना नहीं है। शिक्षक का मुख्य काम है कि कक्षा के हर विद्यार्थी को इतना प्रोत्साहित करें कि वो विद्यार्थी जितना ज्यादा पढ़ सकता है उतना पढ़े। सभी विद्यार्थी तो कोई एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होंगे, लेकिन अगर वो मैक्सिमम पढ़ सके तो मेरे ख्याल से शिक्षक ने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। यही कोशिश मैं जिंदगी भर करता रहा हूं। जब मुझे ये मैंने अपने कार्यकाल में कंप्यूटर साइंस का हेड भी था मैं, बीच में एक साल के लिए मैं इंदौर गया था वापस। इंदौर के जो उस समय के प्रिंसिपल थे प्रोफेसर एस एम दासगुप्ता, जो मेरे मेंटर थे जब मैं पढ़ रहा था, तो उनको ये चाह थी कि जैसे IIT में कंप्यूटर साइंस शुरू हुआ है उसी तरह से इंदौर में भी शुरू किया था। तो उन्होंने मुझे पूछा वहां कि एक साल के लिए आ जाओगे, तो 1984-85 में एक साल में जाके गुरु दक्षिणा दे के आया, एक साल भर काम किया, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस बनाया, उसके बाद यूनिवर्सिटी में भी एस्टैब्लिश किया और फिर वापस आ गया मैं। और तब से इंदौर जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में कंप्यूटर साइंस का अग्रणी माना जाता है, अच्छा काम कर रहे हैं लोग अभी। IIT की बात बताओ तो जैसे मैंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर में मैं काम कर रहा था, 1994 में सरकार ने एक निर्णय लिया, अचानक अच्छा निर्णय था कि इसके आगे सरकार अपने पैसे खर्च नहीं करेगी उच्च शिक्षण व्यवस्था में ज्यादा, जो नया कोई किसी को करना है तो अपने पैसे से करे। तो उस समय पहली बार सभी IITs को यह महसूस हुआ कि अब आगे से हम सरकार पर अवलंब नहीं कर सकते ज्यादा, तो कुछ करना पड़ेगा। तो जिस तरह और IITs ने कोशिश की, हमारे IIT में उस समय के डायरेक्टर थे प्रोफेसर सुखात ने, उन्होंने एक नई पोजीशन बनाई डीन ऑफ रिसोर्स डेवलप और मुझे वो काम सौंपा दिया। तो मैंने उनसे कहा कि डीन का काम

0: प्रोसेस जनरेशन जो है वो इंडस्ट्री और आरएनडी के तहत होता है, वो तो हो रहा है, लेकिन हमारे जो पूर्व विद्यार्थी हैं उनसे हमारा बराबर रिश्ता जितना बनना चाहिए उतना नहीं बना। तो मैं मेरे टर्म के जो 3 साल हैं वो पूरे मैं अलुमनाय रिलेशनशिप बिल्ड करने में व्यतीत करूँ। उन्होंने कहा ठीक है। तो मेरा सौभाग्य था कि उस समय हमारे विद्यार्थी तो दुनिया भर में फैले हुए हैं, उसी समय में अमेरिका में जो हमारे विद्यार्थी थे वो एक हेरिटेज फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं उनके साथ जुड़ गया। उसी तरह आईआईटी में भी कई आईआईटी बॉम्बे अलुमनाय एसोसिएशन के चैप्टर्स वगैरह शुरू करे, और चूंकि मैंने जो अनेक विषय पढ़ा उनमें सबसे ज्यादा विषय जो मुझे प्रिय है वो है प्रथम वर्ष का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्लास, क्योंकि प्रथम वर्ष में 16 साल के बेटे बेटियां आते हैं, अत्यंत उत्साह रहता है, और मुझे लगता है कि जब मैं उनके साथ समय गुजारता हूं तो मेरी उम्र कम हो जाती है उनके बराबर, तो इसलिए वो कोर्स मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि वो कोर्स कंपल्सरी होता था सबके लिए, तो इसलिए ऐसा हो गया और मेरा कोर्स अच्छा भी लगा कई लोगों को। तो मेरे इतने मित्र जो दुनिया में बने हैं उनमें से 80% से अधिक उस प्रथम वर्ष के कोर्स के कारण बने, जो मुझे अभी भी याद करते हैं कि आपने जो कोर्स प्रोग्रामिंग का पढ़ाया था। परसों ही एक हमारा मित्र, मैंने तो उसका नाम भी भूल गया था, प्रशांत जोशी करके, वो उसने एक मुझे चिट्ठी लिखी कि सर 43 वर्ष पहले आपने मुझे पढ़ाया था सीएस कोर्बन, और जिस तरह से आपने पढ़ाया था मैं अभी भी उसका, मैं जब पढ़ाता हूँ, टेक्सास में प्रोफेसर है, मैं जब पढ़ाता हूँ तो वो चीजें याद रखता हूँ। उसने एक बात मुझे याद दिलाई जो मुझे मैं कहता हूँ लेकिन ये भूल गया था कि वो अभी तक याद रखे। वो क्या करता है, उसने एक स्लाइड बनाई है और पहली स्लाइड क्लास में जाने से पहले वो बोलता है, आई एम नॉट हियर टू टीच यू दिस सब्जेक्ट, आई एम हियर टू मेक श्योर दैट यू फॉल इन लव विद दिस सब्जेक्ट।
1: बहुत सुंदर बात है,
0: कितनी सुंदर बात है, सर आपसे ही सीखी।
1: उस विषय से अगर प्यार हो जाए तो व्यक्ति उसमें खुद ही पढ़ना शुरू करेगा, इंटरेस्ट लेके उसमें। जी जी,
0: इस तरह की मेरी जो जर्नी है वो मेरे सीनियर से प्रभावित हुई है, सीनियर टीचर से, और मेरे विद्यार्थियों से सबसे ज्यादा, और उनकी लगन देख के मुझे ऐसा बार बार लगता है कि अपन जो काम कर रहे हैं उसे और काम करना चाहिए, और काम करना।
1: और इस लगन ने ही आपको आज इस मुकाम पर पहुंचाया कि आपकी लगन ने, आपके शोध ने, आपके कार्य ने न केवल कुछ विद्यार्थियों का भविष्य बदला है लेकिन मैं समझता हूँ एक बहुत बड़े वर्ग का, भारत के बहुत बड़े वर्ग में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है, एक वैचारिक क्रांति लाई है, और साथ ही साथ मैं समझता हूँ एक रास्ता खोल दिया है कई ऐसे गरीब बच्चों के लिए भी जो जिनके परिवार वाले सोचते हैं कि भाई ये कंप्यूटर और ये सब चीजें तो महंगी पढ़ाई है और इसमें केवल वही लोग जा सकते हैं जिनके पास कुछ संसाधन पहले से हैं। लेकिन आपने जो कार्य किया है मैं समझता हूँ उसके बारे में भी थोड़ा बताइए हमें कि कैसे गरीब बच्चों को इस पढ़ाई की तरफ रुझान लाने में आपने कितना बड़ा योगदान दिया है, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं।
0: असल में शुरू में क्या होता था कि मैं चूंकि प्रथम वर्ष की क्लासेस लेता था तो उसमें मुझे हर साल ये देखने को मिलता था कि करीब करीब 40-50 बच्चे एक 300-350 के कक्षा में होते थे कि जो बहुत ही गरीब तबके से आए हुए होते थे, उनको अंग्रेजी ठीक से नहीं आती थी, अधिकांश लोग हिंदी बेल्ट से होते थे। तो ये जब मुझे पता चला तो हर साल मैं पहले ही पूछता था पहले दिन कि आप में से कितनों को अंग्रेजी में कमजोरी है, तो 40-50 हाथ उठ जाते। देखिए ये बच्चे जो आईआईटी में एडमिशन मिलती है वो सभी होनहार रहते हैं, होशियार रहते हैं, और 2-3 महीने में अंग्रेजी काम चलाओ सीख लेते हैं, लेकिन शुरू के दिनों में अगर अंग्रेजी का लेक्चर समझ में नहीं आया तो परेशानी हो सकती है, उनके आत्मविश्वास को घातक होगा। तो मैं क्या करता था कि इन बच्चों को लेके शनिवार और रविवार को हिंदी में लेक्चर देता था, और ऐसा पहले 2 हफ्ते करता था ताकि वो अपनी लाइन पे आए। लेकिन जब मैंने ये सोचा कि ये तो आईआईटी में है फिर भी इतने हाल है, तो बाकी जगह क्या हाल होगा, मेरे खुद के कॉलेज का ख्याल आया कि वहां तो मध्य प्रदेश के छोटे छोटे गांव से लोग आते और ऐसे कितने कॉलेजेस हैं। तो मैंने सन 2001 या 2002 में एक साल की सेबेटिकल छुट्टी ली और पूरे देश का दौरा किया। मैं छोटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाके वहां की समस्याएं समझना चाहता, तो मैं 100 जगह जाना चाहता था, नहीं जा पाया। लेकिन आई विजिटेड 67 कॉलेजेस। हर कॉलेज में मैं 2 दिन व्यतीत करता था। एक दिन में उनकी लैब्स और ये सब देखता था, शिक्षकों से बातें करता था। दूसरे दिन उनकी जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी रहते थे, जो प्रोजेक्ट करते थे कंप्यूटर साइंस में, उसका प्रेजेंटेशन मैं लेता था। और जैसा आप जानते हैं, कई कॉलेजों में ये प्रोजेक्ट्स वगैरह में काफी धांधली होती है, बीटेक प्रोजेक्ट ठीक से नहीं करते लोग। लेकिन हर कॉलेज में मुझे एक या दो बैचेस ऐसे मिले, 3-4 विद्यार्थी, 6 विद्यार्थी, 3-3 विद्यार्थी का गुड जो इतना उन्होंने बढ़िया काम किया था। उनको अंग्रेजी ज्यादा अच्छी नहीं बोल सकते, लेकिन काम जो किया था वो किसी भी IIT या विश्व स्तर से कम नहीं था। पूरा दिमाग लगा के पूरा प्रॉब्लम को स्टडी करके किया। तो मैंने सोचा कि अरे ये तो एकलव्य हिन्दुस्तान भर फैले हुए, इनके लिए कुछ करना जरूरी। उसी तरह मुझे हर जगह 2 या 4 शिक्षक ऐसे मिले जो उन दिनों में जो शिक्षकों में सोचता उनसे अलग सोचते। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, ओडिशा में
1: जब आप शिक्षक की बात करें तो ये आपका वो जो प्रोजेक्ट है 10,000 टीचर,
0: वो उसका ही मैं शुरुआत कैसे हुई है बता रहा हूँ।
1: जी बिल्कुल, ये थोड़ा सा उस प्रोजेक्ट के बारे में भी बताइएगा। जी
0: तो ये बहरामपुर ब्रह्मपुर जगह है उड़ीसा में, वहाँ पे एक NIST करके कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, अंडर ग्रेजुएट कॉलेज। मैं वहाँ गया था और जैसा भी 1-2 दिन बिताया, तो उसके बाद मैं जब शिक्षकों से मिल रहा था तो मैं हमेशा की तरह सवाल पूछा, ये तो आप लैब लेते हैं, लेक्चर लेते हैं, तो और कुछ अलग कुछ करते हैं? तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शिक्षक था, उसने हाथ ऊंचा करके धीरे से बोला कि सर मैं संडे लैब करता हूँ। संडे लैब क्या है भाई? तो बोले कि हर इतवार को मैं जब कक्षा प्रारंभ होती है तो एक कोई तो भी प्रॉब्लम रहता हूँ सर्किट डिजाइन करने के लिए, और बच्चों को बोलता हूँ कि आप अपने तरफ से डिजाइन करो। वो डिजाइन करते हैं, फिर वो फैब्रिकेशन करते हैं, कुछ कंपोनेंट लैब से मिलते हैं, कुछ अपने पैसे से लाते हैं, और ऐसा हर इतवार को आते रहते हैं, 6 या 8 हफ्ते तक आते हैं, और बाद में जो सर्किट बनाते हैं वो कंपेयर करते हैं। तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया काम है, क्या सब बच्चे आते हैं? नहीं, बोले 15-20 बच्चे आते हैं। तो मैंने कहा फिर भी अगर 20 बच्चे हर रविवार को अपना काम छोड़ के आपके यहाँ आते हैं, जबकि उन्हें पता है कि कोई परीक्षा या मार्क्स नहीं मिलने वाले, ग्रेड नहीं मिलने वाले, तो इसका मतलब आपने उनके मन में सीखने की इतनी चाह निर्माण की है कि वो आपके पढ़ते हैं, आप तो बहुत बढ़िया काम कर। तो उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया हंस के, बोले सर आप पहले आदमी है जो मुझे कह रहे हैं कि मैं कुछ काम की चीज कर रहा हूँ। खुद मेरे साथी मुझ पर हंसते हैं कि पागल है, सिलेबस छोड़ के बाहर का पढ़ा। तब मुझे ये बात समझ में आई कि हर इंजीनियरिंग कॉलेज में या कोई भी कॉलेज ले लें, कोई भी ले लें, तो 2-4 शिक्षक तो ऐसे होंगे ही जो कुछ अलग सोचेंगे, कुछ अलग करेंगे। तो फिर मुझे फर्क नजर आया कि IIT में ऐसे शिक्षक बहुसंख्यक, इसलिए जो 2-4 पीछे भी रह जाते हैं तो रहने नहीं दिए जाते, वो साथ में आगे बढ़ जाते। लेकिन दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये शिक्षक अल्पमत में, तो उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए? उनके अच्छे विद्यार्थी है, उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए? तो इसलिए मैंने फिर प्रोजेक्ट शुरू किया, एक डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम बनाया। तो उस समय इंटरनेट नहीं था, VSAT बनाए थे। मेरा विचार यह था कि ऐसे सेंटर्स हों हर जगह और IIT से इंटरएक्टिव लेक्चर दिए जाए, जो बच्चे सुने या टीचर सुने और सवाल पूछे बात करें। तो शुरू में हमने VSAT लगाए थे, महंगे थे वो, लेकिन उसके बाद इंटरनेट पे काम करना शुरू किया। एक हमारी एक शिक्षण संस्था है अमृता विश्वविद्यापीठ, तो अमृता विश्वविद्यालय के लोगों ने एक AVU करके एक टूल बनाया था इंटरेक्शन के लिए। आजकल तो जूम मीटिंग होती है, उस समय नहीं था जूम, लेकिन उससे हमने जो काफी काम किया। और उसके बाद मैंने फिर 2005 या 2006 में सरकार को एक प्रस्ताव दिया कि मैं 1,000 शिक्षकों को एक समय में ट्रेन करना चाहता। उस समय में 30-40-50 लोगों को ही ट्रेनिंग करने का प्रावधान होता था। तो मैंने कहा इससे उनको ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा, अपनी जगह पे वो रह के काम कर सकते हैं। तो प्रस्ताव मंजूर हुआ और उस प्रस्ताव के तहत हमने 1,000-1,000 टीचर्स के 15-20-25 रिमोट

0: दस से बना के ये अच्छा काम हुआ। 15,000 शिक्षक जो हमने 3 साल में ट्रेन किए, उस समय 2011 या 12 के समय में एक बड़ा ही ड्रीमी आईएएस ऑफिसर था एमके सिन्हा करके मिनिस्ट्री में, तो उन्होंने कहा फाटक इसको आप स्केल कर सकते हैं क्या, 1,000 की जगह आप 10,000 शिक्षकों को एक साथ पढ़ा सकते हैं। मैंने कहा ये मॉडल जो है वो स्केलेबल है, लेकिन ये बड़ा काम होगा, इसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। तो बोले आप प्रपोजल बना के बताओ। तो सरकार ने प्रपोजल, उस समय का बहुत बड़ा प्रपोजल था, 190 करोड़ रूपये करीब करीब सरकार ने हमें दिए थे और 1.5 लाख शिक्षकों को ट्रेनिंग करना था हिन्दुस्तान भर के कॉलेज। तो हमने ये पेपर में इश्तिहार देके कॉलेजेस से एप्लीकेशन मंगवाई, रिमोट सेंटर किसे बनना है, रिमोट सेंटर ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं बन सकता, उस रिमोट सेंटर में कॉलेज में कुछ अच्छे लोग होने चाहिए, उनकी लैब अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उस रिमोट सेंटर में 40-50 शिक्षक आएंगे और वहां बैठेंगे और कोर्स अटेंड करेंगे। तो 2 हफ्ते के कोर्स में हम लेक्चर्स तो IIT बॉम्बे से देंगे, लेकिन जो दोपहर को ट्यूटोरियल्स करना है, लैब करना है, वो तो उनको उस रिमोट सेंटर में करना पड़ेगा। तो हमें लोगों ने पूछा कि भाई IIT जैसे कैसे आप क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे, तो मैंने एक उसमें ट्विस्ट ये डाला कि हर रिमोट सेंटर में जो भी विषय पढ़ाना है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का है या मैकेनिकल का है, कोई भी उस विषय का जो एक्सपर्ट है उसको वर्कशॉप कोऑर्डिनेटर करके हम अपॉइंट करते, और ऐसे 200-250-300 वर्कशॉप कोऑर्डिनेटर्स को हम 2 महीने पहले IIT में बुला के 1 हफ्ते का ट्रेनिंग देते, उनसे वही सब एक्सपेरिमेंट्स करवाते थे जो उन्होंने बाद में करवाने लोगों।
1: मतलब आपने ये किया कि जो बड़ा एक एम था उसको पहले छोटे छोटे एम्स में डिवाइड किया।
0: हाँ।
1: और सबसे बेहतरीन काम जो मुझे आपके इस कहानी में लगता है वो ये कि आपने एक नहीं कई लीडर्स तैयार किए, जिन लीडर्स पे ये जिम्मेवारी थी कि अपने जैसे आपको और इट्स लाइक अ डोमिनो इफेक्ट, आपने एक को टच किया, वो जो 100 टीचर्स है उन्होंने 1,000 को किया, और इस तरीके से जो है आपने एक बहुत बड़ा एक संख्या 1.5 लाख टीचर्स का, शिक्षकों का, उनको आपने शिक्षित किया, ट्रेन किया ताकि वो बच्चों को शिक्षित कर सके। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि क्या आपको ही दिखता है कि वो जो 1.5 लाख टीचर्स निकले उसमें से, क्या वो सारे सक्सेसफुल टीचर्स आपके पैमाने में सक्सेसफुल रहे या कुछ कम भी हुए हैं उसमें?
0: ये सवाल मुझे बहुत पहले जब मैं प्रोजेक्ट कर रहा था उसी समय कईयों ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि जो 10,000 शिक्षक आपके किसी कोर्स में अटेंड करते हैं तो पूरे 10 के 10,000 शिक्षक IIT शिक्षकों जैसे बन जाएंगे
1: जी?
0: तो मेरा जवाब उस समय जो था वो ही आज भी है कि नहीं, 10,000 शिक्षकों को जब मैं पढ़ाता हूं तो शायद 10% 1,000 शिक्षक के दिमाग में बदलाव आएगा, लेकिन चूंकि मुझे ये पता नहीं कि कौन से 1,000, इसलिए मुझे 10,000 शिक्षकों के पास जाना पड़ेगा।
1: बहुत बढ़िया जी।
0: तो उनमें से जो भी अपने मन में इस तरह के, जैसे वो मुझे ब्रह्मपुर में मिला था शिक्षक, वैसे जो जो शिक्षक होंगे वो इतने मन से काम करेंगे, अपने आप को तब्दील करेंगे, एक अच्छा शिक्षक बनेंगे।
1: और एक बात मैं यहाँ पर आपको ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने बहरामपुर के उस एक इंजीनियरिंग कॉलेज के एक शिक्षक से सीखा और आप खुद IIT के एक बहुत ऊंचे दर्जे के शिक्षक हैं, तो अहम कहीं आया बीच में? डेफिनेटली आपके केस में तो नहीं आया, तभी आप उससे भी सीख पाए, लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है कि जब कोई शिक्षक पढ़ा रहा होता है और कई लंबे समय तक अपने काम में वो उत्तीर्ण हो चुका होता है, वो लगभग एक सीनियर प्रोफेसर हो जाता है, वो अपने अंदर कभी ये सोचना शुरू कर देते कि मैं तो कंफर्टेबल पोजीशन पे पहुंच गया, अभी मुझे और क्या सीखना है, मेरी गाड़ी तो अच्छी चल ही रही है। तो इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का क्या रास्ता है? व्हाट शुड बी देयर थॉट प्रोसेस? उन्हें क्या सोचना चाहिए कि वो आगे और भी सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं?
0: कंफर्ट जोन से निकलने का एक ही तरीका है कि कंफर्ट जोन में कभी भी प्रवेश ही न करें। जिस दिन आप कंफर्ट जोन में चले गए तो उससे बाद उस जोन से किसी भी दशा में लीजिए, आप पैसों का कंफर्ट जोन लीजिए, आप दुनिया में किसी भी और चीज का, आप अपने नाम और काम बढ़ गए तो इसका लीजिए, कोई भी लीजिए, एक बार आप कंफर्ट जोन में चले गए तो उससे बाहर नहीं निकल। इसलिए आपका दिमाग भले ही 7वें आसमान में सपने देखे, लेकिन पैर हमेशा जमीन पे होना चाहिए। दूसरा, आपने ये बोला कि क्या अहम कहीं आया है?

0: मैंने अहम को भगवान की दया से आज तक अपने आसपास पटकने नहीं दिया। मेरी यह मान्यता है कि मैं जिस किसी से भी मिलता हूं, जिस किसी से भी बात करता हूं, उसे जब तक मैं एक इंसान के रूप में देखता हूं और उसी तरह से उसी सभ्यता से उनके साथ पेश आता हूं, भले ही वो अटेंडेंट हो या डायरेक्टर हो या चेयरमैन हो किसी कंपनी का, मुझे शिक्षक के रूप में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे हर इंसान को इंसान की दृष्टि से देख के उसे वो मान देना ही चाहिए जिसकी मुझे अपेक्षा है लोगों से। तो ये भगवान की दया से मेरे मन में मेरे माता पिता ने और लोगों ने बचपन से जो बात बैठाई है वो अभी तक बैठी है, और शायद ये एक कारण है कि मैं सभी से जल्दी रिश्ता तय कर पाता हूं, अच्छा रिश्ता तय कर पाता हूं। मुझसे लोग आराम से बात कर सकते हैं, अपनी मन की बात बोल सकते हैं, मैं उनसे अपनी बात कर सकता हूं।
1: इसमें भगवान की दया तो अवश्य है ही, आपके माता पिता के संस्कार भी हैं, लेकिन मैं समझता हूं इसमें ये कहने को दुर्घटनाएं होंगी कि एक बच्चे को 11 स्कूल में जाना पड़े, लेकिन ये इन 11 स्कूलों का कमाल भी हो सकता है कि आपने इतने जल्दी जल्दी लोगों से घुलना मिलना सीख लिया और लोगों के एक एक अभुलनसार व्यक्तित्व में तब्दील हो गए। तो मैं समझता हूँ उसका भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें कि आप लोगों से जल्दी घुल मिल जाते हैं। और ये जो आपका पिछला है जिसमें आपने इतने स्कूलों में पढ़ाई की और आगे बढ़ते गए, ये आपने अपने काम में भी अपनाया है। जैसे आपने बताया कि आप किसी भी कक्षा में जब जाते थे पढ़ाने के लिए तो आप पहले हर बच्चे का नाम रोल नंबर के साथ याद रखते थे और उनको उनके नाम से जब आप पूछते हैं या बोलते हैं उनसे तो उन पे गहरा प्रभाव पड़ता है कि मेरा शिक्षक जो है वो मुझे केवल एक छात्र की तरह नहीं बट एक इंसान की तरह, एक इंडिविजुअल व्यक्तित्व की तरह मुझे देखता है। ये कितना जरूरी है शिक्षण में स्टूडेंट्स को उनके नाम या उनके व्यक्तित्व के साथ समझना, जानना, पहचानना, ये कितना जरूरी है, क्योंकि मैं समझता हूँ आज का हमारा एपिसोड कई शिक्षक भी सुन रहे होंगे, कई स्टूडेंट भी सुन रहे होंगे तो, या अभिभावक भी सुनते हैं, तो क्या कितना आवश्यक है एक स्टूडेंट को नाम से जानना शिक्षक के लिए?
0: केवल नाम से जानना नहीं, उस नाम से जानने के पीछे जो प्रवृत्ति है वो विशेष रूप से आवश्यक। जैसे हम विद्यार्थियों के साथ ज्यादा समय देते थे, आजकल टेक्नोलॉजी होती है तो मैं शिक्षकों से हमेशा ये सवाल पूछता हूँ कि क्या कक्षा के हर विद्यार्थी को आपने पूरे सेमेस्टर में जो कोर्स पढ़ाया कम से कम एक ईमेल लिखी? ईमेल जो जनरली पूरे क्लास को दी जाती है, भाई ये असाइनमेंट है सबमिट करना है, लेकिन किसी अगर बच्चे ने कोई अच्छी असाइनमेंट करी है तो उसका आपने कुछ सबके सामने कुछ वैशिष्ट्य उसके बारे में लोगों को बताया कि देखो भाई इस बच्चे ने अच्छा काम किया? किसी बच्चे ने अगर कोई गलत काम किया है तो उसको अलग से बुला के आपने क्या 5 मिनट उसके ऊपर व्यतीत किए उसको डांटने के लिए कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो ठीक करो? मेरे ख्याल से शिक्षक की ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी। और मैं जिसे मैंने पहले भी कहा था कि मेरा मोटो जो है जिंदगी में कनेक्ट रिलेट एंड मोटिवेट। विद्यार्थी कितने भी कक्षा में लेकिन उनमें से हर एक के लिए केवल मैं ही एक शिक्षक, तो अगर मैं उनके ऊपर समय व्यतीत नहीं करूंगा तो कौन करे? तो ये करना चाहिए हमेशा। ये मैं सक्सेसफुली कर पाता हूं ये जरूरी नहीं है, लेकिन कोशिश रहती हूं। और पूरे मैं 50-55 साल से जो नौकरी कर रहा हूं तब से हर मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि कोशिश मैंने पूरी की है। शायद इसीलिए मुझे हजारों विद्यार्थियों के नाम आज भी याद है और हजारों विद्यार्थी मेरे से मित्रतापूर्ण व्यवहार इसलिए करते हैं शायद कि मैं उनसे कनेक्ट हो पाया, उनसे जुड़ पाया जब मैं शिक्षक।
1: जी आपने जो पहली बात भी कही कि इंसान को इंसान के रूप में देखना ये बहुत जरूरी है, इससे पहले कि वो क्या करते हैं या क्या रोल निभा रहे हैं, इन सब चीजों से पहले जरूरी है कि उन्हें इंसान के रूप में देखना, तभी आप उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, उनकी बातों को समझ पाते हैं या उन तक कुछ एक जरिया बन जाते हैं उनकी बातों को बाहर लाने में, उनसे बातचीत करने में। विशेषकर उन विद्यार्थियों से, भले आपने कहा कि आप फर्स्ट ईयर वालों को ज्यादा करीब समझते थे, लेकिन आपके पढ़ाने के दौरान आप कई ऐसे विद्यार्थियों के भी नजदीक आए होंगे जिनको पढ़ाई में रुचि नहीं थी और कहीं न कहीं सामाजिक दबाव में या परिवार के दबाव में उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे, तो ऐसे विद्यार्थियों के साथ आप

0: क्या बातचीत करते थे कि उनको पढ़ने में रुचि आ जाए, ताकि उनके लिए भी वो सब्जेक्ट जो है प्रियकर सब्जेक्ट बन जाए, उस विषय से उनको भी प्यार हो जाए, ना कि उनको पढ़ना पड़े उस सब्जेक्ट को। तो कुछ एक किस्से अगर ऐसे याद हो आपको तो।
1: नहीं, ये बात आपने बहुत अच्छी बताई कि हो सकता है कि स्टूडेंट्स को रुचि ना हो सकता है उनके सामने कुछ और दिक्कतें हों। हर कोशिश कोई कामयाब होती है ऐसा नहीं, लेकिन मैंने ये प्रयत्न जरूर किया। ये एक किस्सा याद है, अच्छा विद्यार्थी था लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया कॉलेज में आते आते, पैर का उसका फ्रैक्चर हो गया था, तो क्लास में नहीं आ पाया। तो मुझे याद है मैं हॉस्टल गया था उससे मिलने, मैं भूल गया था इस वाक्य को। अभी कुछ साल पहले मुलाकात हुई, वो अभी बड़े सीनियर आईएएस ऑफिसर करके रिटायर हुए, तो उन्होंने मुझे कहा था कि सर आप मुझे मिलने आए थे, और मेरी ये टूटी हुई टांग देख के मैंने कहा कि सर मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा। तो आपने मुझे कहा था कि आईआईटी में भले आपको एक ग्रेड मिलना मुश्किल हो, लेकिन फेल होना बहुत मुश्किल है। फेल होने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। आप अगर रेगुलरली अपना काम करते रहे तो पास अवश्य होंगे। बस उस विषय में रुचि थोड़ी लीजिए, और वो बड़े अच्छे तरह से पास होके गए वहां से। तो ऐसे मतलब अनेक, मैं अब मेरे मेमोइर्स लिखने के लिए मुझे प्रतिभा ने मेरी कि आप कुछ लिखिए, तो मैं अभी इसी वर्ष त्रिपुरा की पूर्णिमा के दिन शुरू करने वाला हूं मेरे मेमोइर्स लिखने का काम। 2 साल लगेंगे उसमें, लेकिन इतनी घटनाएं घटी हैं, अब क्या बताऊं। मतलब मेरा जीवन उन घटनाओं के कारण बहुत ही परिपूर्ण हो गया है, समझे। बहुत ही अच्छे अच्छे सीखने को मिली है
0: जी। कुछ सही समय पर सही वाक्य अगर किसी के कानों को छू जाए तो वो उनके जीवन को बदल सकता है। टूटे टांग को लेकर के जब स्टूडेंट हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा हो और वो उदास हो, मायूस हो, उस समय अगर कोई जाकर के उसे ये बात सुना दे कि भाई फेल होने के लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा पास होने के लिए, तो मैं समझता हूँ उसके सोचने का तरीका ही पूरा बदल जाता है। उसको हर समस्या बड़ी आसान लगने लगती है और परीक्षाएं महज खेल लगने लगती हैं, तो वो उसे एंजॉय करता है। ऐसा एक वही व्यक्ति कर सकता है जिसने स्वयं इस चीज को जिया है, जिसने अपने परीक्षाओं को खेल के रूप में देखा है। मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि आप जब पढ़ाई कर रहे थे और आप जब अपने विषय को चुन रहे थे कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, आपने कंप्यूटर साइंस चुना जो कि उस समय के लिए बहुत ही एक उभरता हुआ सब्जेक्ट था, लेकिन आपने शिक्षण चुना अपने व्यवसाय के लिए। आप कंप्यूटर साइंस चुन करके आप किसी ऐसे फील्ड में जा सकते थे जहां पर आप, मैं समझता हूँ, लाखों कमा सकते थे, लेकिन आपने एक कम आय वाले व्यवसाय को चुना जहां पर सम्मान बहुत अधिक है लेकिन सामान बहुत कम है। तो आपने इसे क्यों चुना? क्या किसी शिक्षक ने आपको प्रेरित किया, आपके लाइफ के किसी शिक्षक ने, या किस कारण ने?
1: नहीं, ये तो मैंने जैसे शुरू में कहा था कि बचपन में ही मैंने यह तय कर लिया था कि अगर मुझे देश की कुछ थोड़ी बहुत सेवा करनी है तो उसके लिए सबसे अच्छा होगा अगर मैं या तो सिपाही बनूं या शिक्षक बनूं। तो ये तो मैंने बचपन में ही तय कर लिया था, और मेरे पिताजी के कारण उन्होंने कहा पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए, तो मैंने उनसे उस समय ही कहा था कि अब मैं फिर शिक्षक बनूंगा, और उन्होंने कहा वो ठीक है। तो शिक्षक में जब बना तो उस समय मेरे दिमाग में ऐसी कोई भी धारणा नहीं थी कि कंप्यूटर साइंस पढ़ाए तो इंडस्ट्री में जाए या अमेरिका जाए, कहीं जाए। मैं तो मैंने 2-3 प्रण किए थे जब मैंने शिक्षा में अपना पहला शिक्षक बना था कि जब तक 20 साल मैं देश की सेवा नहीं करता मैं देश के बाहर नहीं जाऊंगा। दूसरा प्रण मैंने ये किया था कि जिंदगी में कभी भी आई विल नेवर सर्व ए फॉरेन फ्लैग। मैं तिरंगे के नीचे पैदा हुआ हूं, तिरंगे के नीचे ही आखिरी सांस लूंगा, दूसरे झंडे का मैं, हां कि मैं सब दुनिया में सबका सम्मान करता हूं, सब झंडों का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरे लिए तिरंगे की नौकरी है। और तीसरा प्रण मैंने ये किया था कि आई शैल रिटायर और डाई फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे व्हिच एवर हैपेंस। आईआईटी बॉम्बे छोड़ने वाला नहीं, और अभी भगवान की दया से मैं जिंदा हूं, अभी भी रिटायर, अब तो प्रोफेसर एमेरिटस लाइफ लॉन्ग होता है। तो शिक्षक बनने में मुझे कोई दूसरा विचार कभी मन को छुआ ही नहीं, शिक्षक ही बनना। और शिक्षक होते हुए भी क्योंकि उस समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का इतना प्रादुर्भाव बढ़ रहा था, सब जगह लोगों को सलाह की जरूरत थी, और शायद मैं और मेरे कुछ और अन्य

0: हर आईआईटी बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन आईआईटी बॉम्बे कुछ विशेष खूबसूरत है। बड़ा सुंदर कैंपस है उसका, प्रकृति वहाँ बहुत सुंदर तरीके से पनप रही है, तो स्टूडेंट्स का पढ़ने में तो जी जान लगेगा ही जरूर, लेकिन शिक्षक को भी पढ़ाने में कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो आईआईटी की खासियत है। लेकिन ये जो बात आपने कही कि तिरंगे के नीचे ही रहना है, तिरंगे के साथ ही जीना है, तिरंगे के लिए कुछ करना है, ये जो है एक अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रण है। जैसे मैं कहूंगा भीष्म पितामह का प्रण है कि भाई पैसा भी नहीं खींच सकता मुझे, कोई देश भी नहीं खींच सकता, कोई सम्मान और भी नहीं खींच सकता, जो भी करना है देश के लिए करना है। ये जो देशभक्ति की भावना है, ये आप अपने स्टूडेंट्स में कैसे पहुंचाते हैं?
1: देखिए, देशभक्ति मैं न अपनी देशभक्ति की किसी और के देशभक्ति से तुलना कभी नहीं करता। मेरी यह मान्यता है कि देश में रहने वाला हर नागरिक देशप्रेमी होता है। प्रेम व्यक्त करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, किसी का ज्यादा दिखता है, किसी का कम दिखता है, लेकिन देश प्रेम मेरे विचार में हरेक में होता। लेकिन मेरे लिए, मेरे स्वयं के लिए देश केवल एक कल्पना नहीं, देश के जो करोड़ों लोग हैं, और चूंकि शिक्षक हूं इसलिए उनमें से पढ़ने वालों के साथ इतना जुड़ा हुआ हूं कि मैं देखता हूं, मैं देख रहा हूं पिछले 50 साल, और पिछले 10-15 वर्षों में जो प्रगति हुई है वो इतनी बढ़िया है, मन को लुभाने वाली, जिनके लिए मैं प्रयत्न करता था बचपन से, वो अब दिख रहा है कि कुछ हो रहा है। तो ये मेरा देश प्रेम अपनी जगह है। हाँ, ये सही है कि मैं देश के ऊपर कुछ नहीं मानता। देश के करोड़ों लोग जो हैं वो मेरे लिए भगवान है। मुझे एक बार पंढरपुर में, हमारा एक रिमोट सेंटर है वहां पे, लोगों ने मुझे, अब 300 जगह तो मैं जा नहीं पाया, कई जगह गया, तो यहाँ जाना था, तो वहां पे 3-4 स्कूलों में उस समय आकाश प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, तो वो बच्चे बच्चों को हमने 9वीं कक्षा के आकाश टैबलेट दिए थे, और एक प्रोफेसर रोंगे करके वहां के इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रिंसिपल था, उसने जो वाईफाई सेटअप किया था, बड़ा अच्छा काम, और बड़ा अच्छा लगा। 9वीं कक्षा के जो बालक बालिकाएं हैं वो टैबलेट यूज कर रही हैं, काम कर रहे हैं, तो देखने के लिए। तो मुझे बुलाते समय एक ने कहा कि आपको पंढरपुर का दर्शन करवा दे, पंढरपुर में तो भगवान विठोबा जी विराजमान। तो मैंने हंसको उनको कहा कि विठ्ठल रखुमाई आपके लिए पंढरपुर के देवालय में होंगे, लेकिन मेरे लिए जो 4 स्कूल के बच्चे और बच्चियां हैं वही मेरे लिए विठ्ठल और रखुमाई हैं, मैं उनसे मिलकर वापिस आ जाऊंगा, मुझे क्षमा करें, मैं मंदिरों में विश्वास नहीं रखती।
0: तो मेरी जो आपने कर्म को पूजा बनाया और जिसके प्रति वो कर्म कर रहे हैं उसको अपना अपना इष्ट बनाया, ये एक बहुत बड़ी श्रेष्ठ भावना है। लेकिन मुझे जो बात बहुत अच्छी लगी आपके इस उत्तर में कि आप किसी के भी देश प्रेम का कंपैरिजन नहीं करते हैं, और रही बात स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने की, वो शायद आपको देख करके इंस्पायर होते हैं। एक एग्जाम्पल से व्यक्ति इंस्पिरेशन लेता है, उदाहरण से व्यक्ति इंस्पिरेशन ले सकता है, बजाय इसके कि कोई उनको बताए, जब वो देखते हैं तो देख करके अपने अंदर खुद ब खुद ही धारण करने का उनको मन करता है। एक सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जैसे आपने आकाश टैबलेट के लिए इतना मेहनत किया कि वो देश का सबसे किफायती और सबसे कम खर्च वाला टैबलेट है, और जो कि इतने हाथों लोगों तक पहुंच गया। आज मोबाइल भी आ गया है और टेक्नोलॉजी सस्ते सस्ते और सस्ते होते होते होते एकदम फ्री ही होती जा रही है। इसका कुछ नेगेटिव प्रभाव तो पड़ता है, थोड़ा सा इस विषय पे आप बताएं कि इस नेगेटिव प्रभाव से कैसे बचा जाए, पहले तो इसको कैसे पहचाना जाए। जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है टेक्नोलॉजी का या गैजेट्स का, कई लोग ये कहते हैं कि युवा वर्ग है वो ज्यादा प्रभावित है, बट मैंने हर वर्ग को देखा है इसके प्रभाव में, तो इसलिए ये कहना तो मुश्किल है कि केवल युवा या बच्चे जो है इसके ज्यादा घातक या इसके ज्यादा क्षति में है, लेकिन अमूमन हर कोई ही है। कैसे पहचाने कि ये प्रभाव गलत है, और अगर पहचान लिया तो उस पर क्या किया जाए?
1: ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि ये समस्या जो है दिन प्रतिदिन ज्यादा ही उम्र होती जा रही है, और जिस तरह से पहले सेलफोन और अभी बच्चों के हाथ में टैबलेट और सेलफोन है, इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल है, और इंटरनेट पे तो अच्छा भी है बुरा भी है, तो किस तरह से ये करें, ये बहुत मुश्किल सवाल। इसके बारे में मेरा उत्तर एक यही है कि उन बच्चों को आप ऐसी सोच दें कि खुद वो विचार करें अच्छा क्या है बुरा क्या, ये संभव

0: है कि हर बच्चा जो है केवल अच्छी ही चीजें करे, ये संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कहीं बुराई दिखती ही नहीं। लेकिन अगर उनको सम्यक रूप से ये बता दिया जाए, आगाह किया जाए कि भाई आप इंटरनेट का वापर करो, लेकिन ये अच्छी अच्छी चीजें इनको भी दे। और मेरे विचार में अगर उनकी गति अच्छी चीजें करने के प्रति अगर आप शिक्षक के रूप में या बालक के रूप में बढ़ा सकते हैं, तो अपने आप ही वो ज्यादा समय उस पर व्यतीत करेंगे और कम समय खराब चीजों में व्यतीत करेंगे। लेकिन बच्चों को खुद होके सीखना पड़ेगा, पालकों को ध्यान देके सिखाना पड़ेगा, लेकिन जबरदस्ती किसी भी तरह की गई तो वो उचित नहीं होगी। क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं तो शिक्षक करके हमेशा जानता हूं कि अगर विद्यार्थियों को किसी चीज को आप मना करो तो वो वही चीज ज्यादा करने के लिए लालायित होते हैं। तो इसलिए मैं कंट्रोल पे भरोसा नहीं रखता हूं, लेकिन डिस्कशन पे भरोसा रखता हूं, अच्छे विचार देने में भरोसा रखता हूं। और मेरी ये उम्मीद है कि क्योंकि केवल इस देश का प्रश्न नहीं है, पूरे दुनिया भर के बच्चों का प्रश्न है, तो ये कठिन सवाल है। इसका जवाब मेरे ख्याल से कंसल्टेशन, एडवाइस एंड एप्रोप्रिएट हैंडलिंग विथ ए रैप ऑन द नकल वंस इन ए व्हाइल में वर्क। लेकिन किसी भी तरह की अगर बल से आप कोशिश करेंगे तो वो कामयाब नहीं होगी, ऐसा मेरा विचार।
1: सो एक है शिक्षित करना, अवेयरनेस, दूसरा है संस्कार जो कि बहुत आवश्यक है, जो कि परिवार से भी मिलता है, शिक्षकों से भी मिलता है, और तीसरी चीज जो आपने बताई वो कि एक स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। बिफोर द टेक्नोलॉजी इज पास्ड इनटू द मार्केट, लोगों के हाथों में पहुंचाने के पहले एक स्ट्रेटेजी, एक सरकारी तौर पे, एक उस लेवल पे भी सोच होनी चाहिए।
0: मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, अभी पिछले कुछ 2-3 वर्षों से गुजरात के अमरेली जिले में एक प्रयोग चल रहा है। मेरा एक मित्र है भरत देसाई, उसने सिंटल नाम की कंपनी बनाई थी, सिंटल बेच के उसने पैसे कुछ बनाए, अमेरिका में रहता है वो। लेकिन अमरेली जिला उसका पुश्तैनी जिला है, तो वहां पे स्कूलों में वो 7वीं-8वीं कक्षा के बच्चों के लिए कुछ करना चाहता था। तो चूंकि मैंने टैबलेट पे काम किया था इसलिए मैं उनके साथ जुड़ गया। हर साल 2500 बच्चे 80 स्कूलों के सिलेक्ट किए जाते हैं, उनको हम लोग टैबलेट देते हैं। उस टैबलेट में हमने सिम कार्ड नहीं दिया किसी को, लेकिन जो 80 स्कूल है वहां पे इंटरनेट बनाया। और हमने क्या किया है, भारत सरकार ने एक दीक्षा प्लेटफॉर्म बनाया एनसीआर के लिए, और बहुत ही बढ़िया काम किया। केवल हिंदी में नहीं, अंग्रेजी, हर भाषा के, और गुजरात में जीसीईआरटी जो है उन्होंने भी बहुत काम किया। तो इसमें 7वीं-8वीं-9वीं-10वीं कक्षा के हर विषय की किताबें, वीडियो, ये सब उन्होंने भरमार करके रखे, सब ओपन सोर्स। तो हम लोग क्या करते हैं कि टैबलेट में उनको, बच्चों को देने से पहले ही, अगर 7वीं कक्षा का है तो 7वीं में जो हम 4 विषय पढ़ाते हैं, अंग्रेजी, मैथ्स, साइंस और सोशल स्टडीज, ये 4 विषयों के कंटेंट हम उसमें डाल देते हैं और वो पैक करके उनको देते हैं। और हमने एक यूटिलिटी डाली है कि वो जो भी डाउनलोड करेंगे उसको अगर वो घर जाके लॉगिन करके, लॉगिन है वहां पे, एक ऐप है, तो उससे जो भी काम करते हैं दूसरे दिन आके शिक्षक को पता चलता है कि उन्होंने 1 घंटा देखा, 2 घंटे देखे, क्या देखे। तो इंटरनेट का अवेलेबिलिटी तो उनको है, लेकिन इंटरनेट में अच्छी ही चीजें उनको देखने को मिले, क्योंकि वो शिक्षकों के साथ ही रहते हैं स्कूल में जब इंटरनेट रहते हैं। अब कुछ बच्चे अपना पिताजी का हॉटस्पॉट का यूज करके कोई इंटरनेट करे या कुछ सिम कार्ड डाल लें उसमें, तो उनकी मर्जी है। लेकिन इस तरह से अगर उनका रुझाव जो है वो अच्छे कामों में अगर शुरू से डेवलप हो गया तो हो सकता है कि आगे भी वो कायम।
1: जी, आपसे बात करते हुए समय का पता नहीं चलता है। जैसे आपने बताया आपको 2 साल लगेंगे आपके मेमोरीज लिखने में, मुझे लगता है मुझे भी 2 साल लगेंगे आपसे बातचीत करने में, और बातचीत का सिलसिला जारी रखने का जी तो करता है लेकिन समय नहीं दे रहा है हमें ये इजाजत, इसलिए मैं आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर खेलना चाहूंगा। पहला सवाल, कर्म क्या है?
0: जो करने में आनंद मिले वो कर्म।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। आनंद क्या है?
0: मन की भावना है जो शांति प्रदान करती है दिमाग को।
1: संतोष क्या है?
0: संतोष आनंद का ही एक रूप।
1: सच में जो संतुष्ट होता है वो खुश होता ही है, और जो खुश है उसको एक संतुष्टि होती ही है। बहुत बढ़िया। शिक्षा क्या है?
0: दुनिया के बारे में और अपने

0: बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करना और उस जानकारी का उपयोग करना, ये शिक्षा।
1: जानकारी और उसका उपयोग, बहुत सुंदर। शिक्षक कौन है?
0: हर व्यक्ति, क्योंकि
1: क्या बात है, हर व्यक्ति शिक्षक है। हर किसी से आप सीख सकते हैं,
0: और किसी भी आप सीख। मैंने तो जिंदगी में हर व्यक्ति को शिक्षक पाया।
1: तो छात्र कौन है?
0: जो दूसरे हर व्यक्ति से कुछ सीखे वो छात्र है।
1: विज्ञान क्या है?
0: ज्ञान की वो सीमा जिसके बारे में कुछ धारणाएं बनाई जा सकती हैं।
1: बहुत बढ़िया। भारत क्या है?
0: मेरा देश।
1: देश क्या है?
0: मेरा भारत।
1: बहुत सुंदर। अगर भारत को किसी इमेज में अगर आपको बांधना है तो क्या मेटाफर होगा भारत का आपके लिए? भारत आपके लिए क्या है?
0: ग्लोरियस शब्द का प्रयोग करूंगा, लेकिन ग्लोरियस शब्द जो है वो एकदम उचित नहीं है। भारत की जो परंपराएं हैं उनको पूरे विश्व में मान्यता दिलाना, ये एक भारत का काम।
1: बहुत सुंदर। और वो काम आप बखूबी कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, शुरू से करते आए हैं। इस वजह से भारत सरकार ने आपको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया, क्योंकि आप भारत का वो परिचय हैं, जो भारत का परिचय विश्व गुरु का है, उसका ही एक स्वरूप है आप। एक क्योंकि आप एक केवल शिक्षक नहीं है, क्योंकि शिक्षक का काम तो केवल सिलेबस पढ़ाने तक होता है, लेकिन एक गुरु का काम होता है बच्चों को उस राह पे चलाना जिस राह से वो अपने नहीं लेकिन पूरे देश का भविष्य बदलते हैं। इसलिए आप भारत का एक बहुत अच्छा स्वरूप है अपने आप में, और उस स्वरूप को भारत ने इज्जत दी है पद्मश्री सम्मान द्वारा। आखिरी सवाल, प्रोफेसर दीपक पाठक कौन है?
0: एक भारतीय है और अन्य सब भारतीयों के साथ दुनिया में आगे बढ़ना चाहते।
1: वाकई में आप देश के अलावा कुछ नहीं सोचते, ये बात तो एकदम पक्की साबित होती है कि देश ही आपके जहन में बैठा हुआ है, और इस वजह से भारत को यशस्वी बनाने में जो आपने योगदान निभाया है और निभा रहे हैं, वो मैं केवल ये नहीं समझता कि केवल पढ़ाने से किया है। आप जिन उसूलों से जीते हैं उन उसूलों की वजह से आपने भारत को यशस्वी बनाया है, वो बना रहे हैं। हम आपके लंबी उम्र, स्वस्थ जीवन एवं बहुत ही सुंदर एक किताब की कामना रखते हैं, जिसका मैं समझता हूँ आगे भी हम कभी चर्चा करेंगे। और आप रेडियो मधुबन से जुड़े रहे, हमारे श्रोताओं के बीच में आते रहे, इसका हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ समय बिताने के लिए, हमें अपने जीवन से रूबरू कराने में, आपके उसूलों से, आपके प्रिंसिपल से हमें परिचित कराने में आपने जो समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ऐसा मैंने शुरू में कहा कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपने इतनी बातें करी। जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मुझे कुछ और कथाएं याद आ गई जो मैं अपने मेमोरीज में लिखूंगा, तो उसके लिए आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मधुबन रेडियो के सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार, और बस यही संबंध आगे बना रहे ऐसी मैं भी कामना करता हूँ। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।
0: जय हिंद, जय भारत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पाठक जी आपका। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिनके जीवन में चारों तरफ केवल पॉजिटिविटी ही होती है, सकारात्मकता होती है, तो उनके साथ थोड़ा सा समय बिताने के बाद हमें भी अपने अंदर वो सकारात्मकता अनुभव होने लगती है। आपको भी हो रही होगी। प्रोफेसर दीपक पाठक जी ने अपने को एक शिक्षक तक ही सीमित नहीं रखा, शिक्षा उनके जीवन का धर्म है, लेकिन उन्होंने अपना कर्म एक छात्र के रूप में किया। एक IIT के उच्चतम प्रोफेसर होने के बावजूद भी उन्होंने एक दूसरे क्षेत्रीय कॉलेज के एक टीचर से सीखने में कभी भी पीछे अपने कदम नहीं हटाए। हम हमेशा किसी न किसी से सीख सकते हैं, कुछ न कुछ सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, और हमसे कोई व्यक्ति कुछ सीख सकता है। इसलिए हमें हमेशा बहुत ही सावधान होकर के अपने जीवन को जीना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं हमें देख रहा है, सुन रहा है और हमसे सीख रहा है। अच्छी बातें ही सीखे, इसकी हम उम्मीद रखते हैं। और जब हम कुछ अच्छी बातें सीखते हैं तो वो अच्छी बातें न केवल हमारे लिए एट एन इंडिविजुअल लेवल बड़े काम की होती हैं, बहुत कारगर होती हैं, लेकिन वो पूरे देश के लिए बहुत यूजफुल होती है। यशस्वी भारत कार्यक्रम में ऐसे ही हम मेहमानों से मिलते हैं।

0: उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, अपने को सकारात्मक भावनाओं से, शक्तियों से भर लेते हैं और भर के उसे वापस इस्तेमाल करते अपने रोज के जीवन में। उम्मीद करेंगे कि आप भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। प्रोफेसर दीपक पाठक ने जैसे कहा, देश के लिए ही जीना है, देश के लिए ही मरना है, सब कुछ देश के प्रति करना है। और ये देशभक्ति कभी किसी को सिखाई नहीं जा सकती, ये एक प्राकृतिक प्रेम है देश के प्रति, एक आभार की भावना है देश के प्रति, जो मैं समझता हूँ आपके दिल में भी है। उम्मीद करेंगे कि आप हमसे दोबारा जुड़ेंगे एक और एपिसोड में हमारे साथ। तब तक के लिए सुनते रहिएगा 107.8 रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कुछ न कुछ सीखते जरूर रहिए। जय हिंद, जय भारत।
1: नमस्कार पुणे। अगर आपके रक्तदान से किसी की जिंदगी बच सकती है तो इससे बड़ा सेवा का अवसर और क्या हो सकता है। आप सभी से एक विशेष अपील है, रविवार 23 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एक विशेष रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। ये शिविर ब्रह्मा कुमारीज सौंदर्या कॉलोनी नखाते बस्ती राहटनी में आयोजित होगा। अगर आप स्वस्थ हैं और रक्तदान करने के योग्य हैं तो जरूर आइए और इस नेक कार्य में अपना योगदान दीजिए। रक्तदान के लिए आप पहले से अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए जाएं www.bksocialwing.org पर और रजिस्टर एज डोनर लिंक पर क्लिक करके अपना पंजीकरण करें। याद रखिए, आपका थोड़ा सा रक्त किसी के लिए जीवन की नई उम्मीद बन सकता है। तो आइए रविवार 23 अगस्त को रक्तदान करें और जीवन बचाने की इस मुहिम का हिस्सा बनें। धन्यवाद।
2: रक्तदान करें

सौदाई पागल को दुनिया में समझा है कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ ढोल।

0: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.1। आपका हार्दिक स्वागत है ज्ञान चिंतन में, एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम जहां हम विचारों की गहराई में उतरकर ज्ञान, जीवन, समाज, संस्कृति और आध्यात्म से जुड़े विषयों पर सार्थक संवाद करते हैं। यह कार्यक्रम न केवल जानकारी देता है बल्कि सोच को नई दिशा भी प्रदान करता है। तो आइए आत्ममंथन और बौद्धिक समृद्धि की इस प्रेरक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और चिंतन को जीवन का हिस्सा बनाइए। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन। रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM के इस ज्ञान चिंतन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करने जा रहे हैं जो हर इंसान के जीवन से जुड़ा है और हर मन में कभी न कभी प्रश्न बनकर उभरता है, कर्म और भाग्य आखिर हमारे हाथ में क्या है।
1: अक्सर जीवन में जब कुछ अच्छा होता है तो हम कहते हैं मेरे अच्छे भाग्य है, और जब कुछ विपरीत हो जाता है तो तुरंत कह देते हैं शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन क्या सच में हमारे जीवन केवल भाग्य के भरोसे चलता है या फिर हमारे कर्म भी इसमें कोई भूमिका निभाते हैं?
0: भारतीय संस्कृति और दर्शन हमें एक बहुत गहरी और सुंदर बात सिखाती है, वह है भाग्य और कर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक है। भाग्य वह है जो हमें आज की परिस्थितियों के रूप में मिला है, और कर्म वह है जो हम इन परिस्थितियों में सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो आज जो हमारे पास है वह बीते हुए कर्मों का फल है, और आज हम जो कर रहे हैं वही आने वाले कल का भाग्य बनेगा। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है, हम हर परिस्थिति को अपने अनुसार नहीं बदल सकते लेकिन हर परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बदल सकते हैं। मान लीजिए रास्ते में अचानक बारिश आ जाए, बारिश हमारे हाथ में नहीं है लेकिन उस बारिश में हम गुस्सा करें, शिकायत करें या शांति से छाता खोलकर आगे बढ़ें, यह पूरी तरह हमारे कर्म पर निर्भर करता है। यही अंतर है भाग्य और कर्म के बीच। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें फल नहीं मिलेगा बल्कि इसका अर्थ यह है कि फल की चिंता

0: छोड़कर जब हम सही कर्म करते हैं तो कर्म की गुणवत्ता बढ़ जाती है और मन तनाव मुक्त हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ फिर भी सफलता नहीं मिलती। यहाँ समझने की आवश्यकता है कि कर्म केवल शारीरिक प्रयास नहीं है, हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारी नियत, ये सब भी कर्म का ही रूप है। अगर कर्म डर, क्रोध, अहंकार या स्वार्थ से किया गया है तो उसका फल भी वैसा ही होगा, लेकिन यदि कर्म सकारात्मक सोच, सच्ची भावना और सेवा भाव से किया गया है तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी कभी उसका फल तुरंत नहीं मिलता लेकिन सही समय पर अवश्य मिलता है। श्रोताओं, भाग्य हमें अवसर देता है लेकिन उस अवसर का उपयोग कैसे करना है यह हमारे कर्म तय करते हैं। भाग्य हमें मंच देता है लेकिन उस मंच पर हम कैसा अभिनय करेंगे यह हमारे हाथ में है। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए तो स्वयं से यह मत पूछिए कि मेरा साथी ऐसा क्यों हुआ, बल्कि यह पूछिए इस परिस्थिति में मुझे क्या श्रेष्ठ कर्म करना है। यह प्रश्न हमें कमजोर नहीं बल्कि सशक्त बनाता है। आइए आज से यह निश्चय करें कि हम भाग्य को दोष देने के बजाय हर परिस्थिति में श्रेष्ठ कर्म करने का अभ्यास करेंगे, क्योंकि अंततः कर्म हमारे हाथ में है और वही कर्म हमारे भाग्य का निर्माण करता है। इसी चिंतन के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ और सुनते रहें इसी तरह प्यार से, खुश रहें, खुशियां बांटें। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि आज की चर्चा ने आपके मन में नए विचारों को जन्म दिया होगा और सोच को एक नई दिशा प्रदान की होगी। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है, फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं। खुश रहें, खुशियां बांटें।
1: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
2: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस, सो नाउ इट्स योर चॉइस। आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ऐतिहासिक सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झक्कास रेडिओ स्टेशन पुणेरी आवाज ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा.
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विथ ब्रह्मकुमारीज. सिस्टर शिवानी, वेलकम टू बीइंग शक्ति.
2: ओम शांति. थैंक यू सो मच.
1: मैं आज फिर से कुछ पढ़ के शुरू करना चाहूंगा.
2: जरूर.
1: ये कहता है, अ वाइज मैन मेक्स हिज ओन डिसीशंस, एन इग्नोरेंट मैन फॉलोज पब्लिक ओपिनियन. पब्लिक ओपिनियन इज नो मोर देन दिस, व्हाट people think that the other people think.
2: ज्ञानी आत्मा मतलब जिसके अंदर ज्ञान है, जो अपनी सोच अपनी चॉइस से क्रिएट करता है, चाहे आसपास लोग कुछ भी कह रहे हैं, चाहे मेजोरिटी

0: मिट्टी कुछ भी सोचते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी सही समझती है, लेकिन आत्मा मुझे क्या कहती है, व्हाट इज राइट फॉर मी, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या कंफर्टेबल है, जो मेरी ओरिजिनलिटी से कनेक्टेड है। कई बार ये भी हो सकता है कि दुनिया सब कुछ एक अलग सोचती है और हम कुछ अलग ही बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बट व्हाट इज राइट फॉर मी द बीइंग, जो सही है, जो मेरे लिए कंफर्टेबल है। एंड समटाइम्स कोई भी और उस बात से अग्री नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ हम फील करेंगे कि वो हमारे लिए सही है, एंड फिर हम डिसीजन लेंगे वो वाइज। एंड इग्नोरेंट मैन कहा, जो सिर्फ फॉलोज पब्लिक ओपिनियन, मतलब निर्णय लेने के टाइम उनका जो क्राइटेरिया है वो ज्यादातर ये होगा कि सब लोग क्या कहते हैं, सब लोग मेजोरिटी लोग क्या करते हैं, सबको सही क्या लगता है, सब किस बात को अप्रिशिएट या अप्रूव करते हैं, दुनिया में सही किसको माना जाता है।
1: ऑल द टाइम दुनिया को खुश करना या दुनिया क्या कहेगी?
0: दुनिया को खुश करने के प्रोसेस में कई बार हमारी अपनी खुशी गायब हो जाती है। दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। जरूरी नहीं है कि मेजोरिटी जो कर रहे हैं वो सही हो, जरूरी नहीं है। आज अगर मेजोरिटी लोग नाराज होते हैं तो नाराजगी सही नहीं है, सही नहीं है बाय नॉट बाय एनी मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, बट सही नहीं है बिकॉज आई फील इट कि ये मेरे लिए सही नहीं है। अगर मेजोरिटी लोग आज इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन मुझे फील हो जाएगा इरिटेट होते समय ये मेरे लिए सही नहीं है, बट वेन आई गिव अ जस्टिफिकेशन आई सेड इट्स ओके, एवरीबडी गेट्स इरिटेटेड, इफ एवरीबडी गेट्स इरिटेटेड इट्स फाइन इफ आई गेट इरिटेटेड। तो हम अपने जीवन को पब्लिक क्या सही समझते हैं, मतलब लोग क्या सही समझते हैं, उन बिलीफ सिस्टम्स को अपना बिलीफ सिस्टम बना के, अपनी जीवन जीने की मान्यता उसको बनाकर उसी के थ्रू चलना शुरू कर देते हैं, इवन इफ इट्स राइट फॉर मी और नो। खाने पीने में, कपड़े पहनने के तरीके में, जो भाषा हम बोलते हैं उसमें भी कि लोग कौन सी लैंग्वेज अप्रूव करते हैं।
1: हेलो बोलते थे, नमस्ते बोलते, नहीं नहीं हाय निकला आजकल।
0: हम ज्यादा सोचते भी नहीं है कि ये सही है या नहीं है, सब कर रहे हैं तो इसलिए सही होगा। आई हैव टू डू व्हाट एवरीवन इज डूइंग, आई हैव टू बी लाइक एवरीबडी एल्स। इवन टुडे कितनी चीजें जो एक बच्चे को भी पता है कि वो उसके लिए सही नहीं है, चाहे अल्कोहल लेना, छोटी यंग एज में आजकल स्कूल की पार्टीज में उसके अलग अलग रूप से उसको ले रहे हैं, बट सब लेते हैं ना सिस्टर, तो हम कैसे नहीं लेंगे। फिर
1: कॉलेज में, स्कूल में सिस्टर सबके सब लंच में, इंटरवल में, कैंटीन में बैठते हैं, जब साथ बैठते तो ऐसे बंदे को बायकॉट करते हैं, ये हमारा टाइप का नहीं है।
0: हमें उस क्षण भी तो अपनी प्रायोरिटीज को चेक करना पड़ेगा ना कि क्या पब्लिक अप्रूवल ज्यादा इम्पोर्टेंट है या मेरी विल पावर, मेरी खुशी और मेरी सेहत, इस केस में कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कुछ दिनों के लिए मुझे अकेला रहना भी पड़ जाए, क्या वो ज्यादा डिफिकल्ट है, या अपनी विल पावर्स को ही हम छोड़ दें, अपनी खुशी को ही हम छोड़ दें और हमें अंदर यहाँ अकेला रहना पड़ जाए।
1: इतना ह्यूमिलिएशन होता है, यू फील सो लोनली।
0: ह्यूमिलिएशन तब नहीं होता जब हमारी आदत बन जाती है वो चीज और हम उसको छोड़ नहीं पाते, हमारा अपने ऊपर संयम नहीं रह रहा, हम खुद की सेहत को खराब कर रहे हैं सिर्फ ताकि लोग हमें अप्रूव करेंगे।
1: दूसरा अल्टरनेटिव है कि कोई ऐसे स्कूल कॉलेज में चले जाएं छोड़ के जहां ये नहीं।
0: समटाइम्स इट माइट नॉट बी ओनली अबाउट अ स्कूल और अ कॉलेज, इट कुड बी इन सोसाइटी यू आर स्टैंडिंग। आप सोसाइटी से दूर होकर दूसरे समाज में कौन से चले जाएंगे कि आप कोई एक ऐसा निर्णय लेते हैं, आप कोई ऐसी चीज को सही समझते हैं जो लोग अभी मेजोरिटी उसको सही नहीं समझ रहे, तो भी अपने डिसीशन पर चलना वो एक पावर है ना। लेकिन इजीली लोगों की बातों में आकर बह जाना, लोगों को क्या सही लगता है सिर्फ उसको करते जाना, मेजोरिटी उसको करते करते एक किस डायरेक्शन में चले गए हैं आज, तो भी उनको फॉलो करना।
1: जब मैं नया नया बॉम्बे आया था तो मुझे मेरे साथी सिखाने लगे कि यार घर भर क्यों तू पहले ले रहा है, वो कौन देखने आ रहा है तुझे कि तेरे घर में क्या है, कैसा रहता है, क्या है, गाड़ी अच्छी ले, जैसे उतरती सलाम पड़े। मैंने बोला भाई मुझे अपना घर बनाए दो।

0: मेरे काम को सलाम पड़े तो पड़े.
1: हैविंग द पावर टू बी एबल टू स्टैंड ऑन माई डेफिनेशन ऑफ राइट इवन इफ समटाइम्स इट डज नॉट अग्री विद एनीवन एल्स.
0: हमारे टाइम पे मर्सिडीज का बड़ा फैशन था तो लोग उसे कहते थे कमाल है आप 1956 की फिएट में आते हो, लोग क्या कहेंगे कि तुम इतने बड़े एक्टर हो तो आगे कोई पिक्चर में आपको लेगा नहीं. मैं बोला मेरे काम पे काम से लेंगे.
1: स्पिरिचुअली हम समझते हैं कि मैं इंसान कैसा हूं, मैं आत्मा कैसी हूं. स्किल्ड ऑफकोर्स मैच करता है, टैलेंट मैटर करता है, और उससे भी ज्यादा डीपर एक लेवल पर जब हम जाएं, आई द सोल हाउ एम आई गोइंग टू बी.
0: तो लेकिन देखिए जब 10 आदमी एक चीज बोलते हैं
1: बिल्कुल
0: यू नो दिस इज शो बिजनेस.
1: What is public opinion? So it says, what people think, that other people think. तो मेरे लिए public opinion क्या चीज है जो मैं सोचती हूँ कि लोग ऐसा सोचते हैं. Which also need not be true. That is very important.
0: वो मैं सोचता हूँ कि फलाना बंदा मेरे बारे में शायद ऐसा सोच रहा हो.
1: तो मैं क्या सोचती हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो सोचकर उस आधार से फिर डिसीशन लेना. तो अपनी सही और गलत से तो कई बार हम बहुत दूर हैं. ये हमारे लिए हर स्टेप पे, क्योंकि आप अगर आज हम एक लिस्ट बनानी शुरू करें ना कि हम सारा दिन में कितनी बार इस आधार से डिसीजन लेते हैं. कितनी बार मींस इट विल बी एंड समटाइम्स इट्स नॉट इवन अबाउट टेकिंग अ डिसीजन, इट्स अबाउट लिविंग योर लाइफ दैट वे. हम रोज डिसीजन नहीं लेते कि हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे चलना है, क्या बोलना है, जैसे आपने कहा ग्रीट कैसे करना है. हम रोज डिसीजन नहीं लेते, लेकिन हमारा जीवन जीने के तरीके का जो डिसीजन है वो ही उस बेसिस पे है कि मेजोरिटी क्या कर रहे हैं, सब लोग क्या कर रहे हैं. वही हमारा डिसीजन उस आधार से बन चुका है. उसको अब रुक रुक के थोड़ा सा चेक करके चेंज करना होगा कि दिस राइट फॉर मी, एंड देन वी कैन गो वन स्टेप हायर ऑन दैट कि वैल्यू सिस्टम, हमारा काम करने का तरीका, हमारा एक दूसरे के साथ व्यवहार करने का तरीका. जस्ट बिकॉज सब लोग करते हैं नहीं, इज इट राइट फॉर मी. पब्लिक ओपिनियन का टैग अगर हम निकाल देना और सिर्फ अपने तरह से जीवन जीना शुरू कर दें जो हमारे लिए सही होगा, शायद हमारी जीवन की क्वालिटी प्रेजेंट से बहुत बहुत बदल जाएगी.
0: मैं जीन्स का भी पसंद नहीं किया था, वो फटी भी नहीं, नॉर्मल. मैंने कहा मुझे जीन्स पसंद नहीं, मैं अपने इंडिया के अच्छे ऑर्डिनरी कपड़े पहनूंगा. नहीं, आपको एक जीन्स तो लेनी है, दुनिया क्या बोलेगी. हर चीज में अगर कोई जा रहा है ऐसा तो करो, वो पहना तो करो.
1: अब इसी को और एक स्टेप ऊपर उठाना है. हर लोग जिस तरह से व्यवहार करते हैं, जिस तरह से उनका काम करने का तरीका है, जिस तरह से उनके रिश्ते निभाने का तरीका है, क्या मुझे भी उसी तरह से करना है. जो लोगों की डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट है, क्या मेरी भी वही डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट होने वाली है. जो लोगों की डेफिनेशन ऑफ प्यार है, खुशी है, क्या मेरी भी डेफिनेशन वही होने वाली है, या इज देयर गोइंग टू बी अनदर वे ऑफ लिविंग. कुछ दिन पहले आपने एक एपिसोड में कहा था, मैं किसी के घर गया, उन्होंने बड़ी गाड़ी मुझे नहीं भेजी, छोटी गाड़ी भेजी, तो मैं हॉट हो गया या गुस्सा हो गया, नाराज हो गया.
0: नहीं, मैंने ये कहा था कि उनके पास घर पे थी,
1: भले थी,
0: और जब मेरे आने के बाद उन्होंने बोला मैं थोड़े काम पे अभी आता हूँ बैठिए,
1: right.
0: और वो मर्सिडीज में बैठे.
1: वी फेल्ट डिसरिस्पेक्टेड. डिसरिस्पेक्टेड क्यों? क्योंकि हमारी डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट क्या बनी हुई थी. हमारी डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट क्या बनी
0: हुई, घर पे कोई मेहमान आए तो गिव हिम द बेस्ट,
1: ये डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट हमारी बनी.
0: आपके घर में, आपके घर में मैं आऊं और आप बोले दो ग्लास पानी लाओ और स्टाफ आपके लिए चांदी के ग्लास में लाए, मेरे लिए कांच के, अजीब सा नहीं लगता?
1: अजीब सा भले लगे, क्यों अजीब सा लग रहा है? क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म कंडीशनिंग के हिसाब के अनुसार अलग था.
0: मैंने ये नहीं बोला कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो भी लाओ,
1: विच इज ओके, बट स्टिल उसको अगर हम अभी चेक करें.
0: बुलाया क्यों?
1: हर्ट ये क्यों डीप हो रहा है
0: बताइए.
1: ये हर्ट डीप इसलिए हो रहा है क्योंकि लेयर्स ऑफ लेयर्स ऑफ लेयर्स ऑफ कंडीशनिंग की
0: लेयर्स ऑफ गुड मैनर्स एंड बड़ा
1: गुड मैनर्स भी कहा.

0: वाइब्रेशन फॉर देम, सब कुछ सही है। हम उस जीवन जीने को उस तरह से चलते गए, राइट उस कंडीशनिंग से हम चलते गए। फिर सडनली हमारे सामने एक सिचुएशन आई, एक परिस्थिति आई जहां किसी ने हमें उस तरह से ट्रीट नहीं किया। यही हुआ ना एक्चुअली, हमें उस तरह से नहीं ट्रीट किया। जैसे हमें उस तरह से नहीं ट्रीट किया, हमारा डिसीजन किस आधार पर बेस्ड था कि वो पब्लिक ओपिनियन के जो मेहमान है उसको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, आज वो नहीं हुआ मेरे साथ, वो नहीं हुआ आज मेरे साथ, तो फिर मेरा डिस्टर्ब होना नेचुरल था। मैं उस क्षण भी बिल्कुल उस पुरानी अपनी पब्लिक ओपिनियन की कंडीशनिंग के थ्रू ही चल रहा था।
1: अंडरस्टैंडेबल, राइट आपकी बात
0: अंडरस्टैंडेबल, इसलिए अगेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम, सी यू आर टॉकिंग अबाउट देम।
1: नो, आई एम स्टिल टॉकिंग अबाउट वन थिंग कि यू हैड, जब आप इनवाइट करने के टाइम पे आपने पब्लिक,
0: आप उनके बारे में बात कर रहे हैं,
1: क्यों नहीं कर रहे
0: आप बार बार उनके बारे में?
1: सिचुएशन तो समझाऊं,
0: हमें सिर्फ किस पर फोकस करना होता है, मेरा रिस्पांस क्या होना चाहिए था। आप देखो क्यों, कितना पुराना ये डीप संस्कार है, हम बार बार उस पर स्लिप होकर जाते हैं। ये हर एक के साथ हो रहा है, वी हैव टू, दैट्स व्हाई वर्क सो हार्ड ऑन आवर सेल्फ, क्योंकि एवरी टाइम योर थिंकिंग इज ओनली गोइंग टूवर्ड्स, लेकिन उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, लेकिन उन्होंने क्यों पब्लिक ओपिनियन के थ्रू मुझे बुलाया, लेकिन उन्होंने, मैंने क्या किया, मेरे पास क्या चॉइस थी, मैं क्या कर सकता था, उस पर नहीं फोकस आ रहा अभी तक। सी हाउ द ग्रोव इज गोइंग, हमारी रिस्पेक्ट इसमें नहीं है कि लोग हमें कैसा ट्रीट करते हैं, ये भी तो कंडीशनिंग है कि लोग हमें जैसा ट्रीट करते हैं वो रिस्पेक्ट है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट, आप अपने को रिस्पेक्ट करें, इसकी क्या डेफिनेशन है कि लोग आपको कैसा ट्रीट करते हैं, क्या ये डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट है? अगर ये डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट होगी तो हम सेल्फ रिस्पेक्ट में ज्यादा समय टिक नहीं पाएंगे पूरे दिन के अंदर।
1: क्यों?
0: लोग हमें कैसा ट्रीट करें, दैट डिसाइड्स दैट वेदर आई एम रिस्पेक्टेड बाय पीपल, विच मीन्स फिर हम एक इमेज बनाएंगे अपने मन में कि ऐसे ऐसे लोग ट्रीट करें तभी वो मुझे रिस्पेक्ट करते हैं। सब लोग उस अनुसार चलेंगे नहीं, और जैसे ही कोई उस अनुसार चलेगा नहीं, इमीडिएटली आई विल फील डिसरिस्पेक्टेड हो जाएगा ये। क्यों? एंड फिर सारा दिन में कितनी बार फील डिसरिस्पेक्टेड, फील डिजेक्टेड, फील रिजेक्टेड, सारा दिन में कितनी बार? क्योंकि हम उस कंडीशनिंग को चेंज नहीं कर पा रहे। वो कंडीशनिंग बनाई किसने थी? हम सब ने मिलकर बनाई थी, सबने मिलकर बनाई, लेकिन अभी कोई भी रुक कर चेक नहीं कर रहा क्या ये कंडीशनिंग मेरे लिए सही है, क्या ये कंडीशनिंग मेरे लिए कंफर्टेबल है, क्या ये मुझे एट ईज रहने देती है।
1: अभी तक तो नहीं हुई इस पे,
0: दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम।
1: उस दिन से लेके आज तक याद है वो,
0: उस दिन से? हाँ, बिकॉज वो कंडीशनिंग सेटिस्फाई
1: तो
0: नहीं हुई थी,
1: तो नहीं
0: एट ईज नहीं है ना, और उस दिन से आज तक याद है भी वो बात नहीं है, उसके बाद और कितनी सारी बातें हो गई, और हर बार हमने वो कंडीशनिंग नहीं चेंज की कि रिस्पेक्ट मीन्स दिस इज दिस दिस दिस द वे पीपल ट्रीट मी, दैट इज रिस्पेक्ट। ये किसने बनाया फॉर्मूला? ये दुनिया ने बनाया, दुनिया ने फॉर्मूला बनाया, मैंने उस फॉर्मूला को एक्सेप्ट कर लिया, उसको अपना जीवन जीने का तरीका बना लिया, और उस फॉर्मूला ने मुझे सारा दिन में कितनी बार तंग किया, कितनी बार अनकंफर्टेबल किया, तो मुझे उस फॉर्मूला को वापस चेक करने की जरूरत है। एनी फॉर्मूला, एनी कंडीशनिंग, एनी इक्वेशन क्रिएटेड बाय द वर्ल्ड विच इज नॉट कंफर्टेबल फॉर मी राइट नाउ, इफ इट्स कंफर्टेबल इट्स फाइन, लेकिन अगर वो मुझे एट ईज नहीं रखती है तो मुझे रुककर चेक करना चाहिए कि मेरा मन क्या कहता है, सही डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट क्या है। सिर्फ दो मिनट भी आप साइलेंस में बैठ गए ना किसी दिन और इस डेफिनेशन को चेक करें, सम्मान, किसी को रिस्पेक्ट देना, इसकी सही डेफिनेशन क्या है? जब सही डेफिनेशन समझ में आ गई, फिर सेकेंड चीज हम अपने आप से पूछेंगे कि ये सम्मान क्या लोगों ने मुझे देना है या मैंने पहले अपने आप को देना है।

0: जब भी मन अनकंफर्टेबल हो, हिला हुआ हो, स्टॉप, क्यों डिस्टर्ब है, कुछ ऐसा हुआ, किसी ने कुछ ऐसा किया, कोई बात ऐसी आई जो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगी, वो मुझे कंफर्टेबल क्यों नहीं लगी, बिकॉज इट वॉज नॉट फिटिंग विद द वे आई थिंक थिंग्स शुड बी, मेरी कंडीशनिंग, उस कंडीशनिंग को, उस थिंकिंग प्रोसेस को अगर रुके, दिस इज व्हाट मेडिटेशन डज, यही तो मेडिटेशन में करना है। जब हम पॉज नहीं लेते, हम स्टॉप नहीं करते, तो पुराने ही तरीके से चलते जाएंगे, लेकिन दिस इज रिस्पेक्ट, नहीं, लेकिन उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की, लेकिन उन्होंने सही नहीं किया, लेकिन उनके मैनर्स ठीक नहीं थे, वो मेरे मैनर्स। गुड मैनर्स की डेफिनेशन भी किसने डिसाइड की? लोगों ने डिसाइड की, मैं अपनी क्रिएट करता हूँ। फॉर मी गुड मैनर्स विल बी, आपके लिए गुड मैनर्स की डेफिनेशन क्या होगी?
1: अच्छी तरह से नमस्ते करना, वेलकम करना, प्यार से किसको बिठाना,
0: और अगर कोई हमारे से ठीक से जैसा हमने सोचा था व्यवहार करेंगे वो नहीं करेंगे, तो फिर हमारे लिए गुड मैनर्स कौन सी होंगी?
1: प्लीज गेट आउट।
0: ऐसा गुड मैनर्स नहीं होगा ये।
1: क्यों
0: नहीं? हम कहेंगे अगर गेट आउट, तो इसको कहेंगे कि यहाँ जो हर्ट और एंगर और ईगो आएगा ना, उसको कहेंगे दिस विल बी गुड मैनर्स, क्योंकि ये करके यू विल बी कम्फर्टेबल, ये करके आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, ये लोगों को हटाना, डांटना, ऐसे करना, ये हमने दुनिया से सीखा है, ये आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी नहीं है। हमने सीखा, किसी न किसी को देखते करते हुए सीखा है ये सारा कुछ। हमने देखा कि किसी ने किसी को डांटा, सामने वाला डर गया, उसको हमने सोचा वो रिस्पेक्ट है, हमने भी करना शुरू कर दिया।
1: छोटे बच्चे पैदा होते रो के डराते हैं, जाके इस दुकान में रोने लगते हैं, डरा देते कि फिर देखो और जोर से रोऊंगा, हाँ। अगर ये खिलौना नहीं मिलेगा तो मैं और जमीन पे लेट के रोऊंगा,
0: और फिर उस टाइम पेरेंट्स तो, मान लेते हैं।
1: नहीं, वो बात नहीं कर रहा, बच्चे की मैं नेचर की बात कर रहा हूँ, कि आपने बोले देख के किया,
0: हाँ।
1: उसको डांट के डराना नहीं आता है,
0: हाँ।
1: रो के डराता है।
0: वो डराता नहीं है, वो रो के अपनी बात कहता है,
1: बात मनवाता है ना,
0: मनवाता नहीं है, बात कहता है, ठीक है। पेरेंट्स उस टाइम मान जाते हैं, और फिर बच्चे की कंडीशनिंग क्या हो जाती है कि रोने से लोग मेरा कहना मान लेते हैं। आज वो बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन मन ने अभी भी कौन सी कंडीशनिंग रखी हुई है कि रोने से, मतलब शोर मचाने से, चिल्लाने से लोग मेरा कहना मान लेते हैं। फिर उस आत्मा ने और तरफ, चारों तरफ भी ये होते हुए देखा कि रो, शोर मचाओ, चिल्लाओ, काम हो जाता है, काम हो जाता है, कंडीशनिंग बन गई। दूसरों ने भी कहा ऐसे ही तो काम होता है, प्यार से कभी काम होता है किसी का? प्यार से बोल के तो लोग सिर पे चढ़ जाते हैं। हमने मान लिया पब्लिक ओपिनियन।
1: मैंने तो खुद देखा सिस्टर, वाइफ जो है रो के अपने काम करवा लेती पति से, पति डांट के अपने पत्नी से काम करा लेता है, दोनों के बजाय
0: इतना सही अगर ले लें कि हमने ये देखा है, लोग ये करते हैं, हमने भी करना शुरू कर दिया, और जब हमने ये करना शुरू कर दिया, हमने ये नहीं चेक किया कि क्या ये रोना मेरे लिए कंफर्टेबल था, क्या ये रोना सामने वाले को अच्छी वाइब्रेशन दे रहा है, और हस्बैंड ने ये भी नहीं चेक किया कि क्या ये गुस्सा करना मेरे लिए और मेरी वाइफ के लिए कंफर्टेबल था। हमने सिर्फ देख लिया कि हस्बैंड डांटते हैं तो वाइफ कहना मानती है, वाइफ ने देख लिया कि वाइफ रोती है तो हस्बैंड कहना मानते हैं, देख लिया, करने लग गए। दिस इज दैट गैप इन बिटवीन वॉज नॉट यूज, दिस इज वॉट इट सेज, द वाइज मैन चूजेज हिज ओन डिसीजन, एन इग्नोरेंट मैन फॉलोज वॉट पीपल हैव बीन डूइंग। कि हर जगह सब ऐसे ही होता है ना, रो लो तो कहना मान लेते हैं, गुस्सा कर लो तो कहना मान लेते हैं, मेरा नुकसान,
1: चलो ये इसका पहले कर दो, ये नाराज हो जाएगा,
0: हाँ
1: चलो पहले इसको दे दो, ये नाराज हो जाता है।
0: तो वो हमारी कंडीशनिंग नहीं बनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स वाई दैट लाइन इज सो ब्यूटिफुल। और अब जब हम पढ़ेंगे ना ये लाइन, तो हमें लगता है हाँ हम तो अपने डिसीजन लेते हैं खुद, आई टेक माई ओन डिसीजन।
1: कहाँ लेते हैं डिसीजन? हमको तो बचपन से सिखाया गया बड़ों से पूछ पूछ के करो, उसको पूछ पूछ के करो।
0: पूछना वो तो एक अलग बात है, वो तो राय लेना है, वो तो कंफर्टेबल है, राय लेना, एडवाइस लेना, ओपिनियन लेना, डिसीशन, फाइनल डिसीशन टू डू एनीथिंग।

0: नमस्कार पुणे। अगर आपके रक्तदान से किसी की जिंदगी बच सकती है तो इससे बड़ा सेवा का अवसर और क्या हो सकता है। आप सभी से एक विशेष अपील है, रविवार 23 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एक विशेष रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। ये शिविर ब्रह्मा कुमारीज सौंदर्या कॉलोनी नखाते बस्ती राहटनी में आयोजित होगा। अगर आप स्वस्थ हैं और रक्तदान करने के योग्य हैं तो जरूर आइए और इस नेक कार्य में अपना योगदान दीजिए। रक्तदान के लिए आप पहले से अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए जाएं www.bksocialwing.org पर और रजिस्टर एज डोनर लिंक पर क्लिक करके अपना पंजीकरण करें। याद रखिए, आपका थोड़ा सा रक्त किसी के लिए जीवन की नई उम्मीद बन सकता है। तो आइए रविवार 23 अगस्त को रक्तदान करें और जीवन बचाने की इस मुहिम का हिस्सा बनें। धन्यवाद।
1: रक्तदान करें, जीवन दान करें।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो। कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार हैं गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुणेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले.
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा आनंद लुटा.
2: अजी सुनते हो?
3: हाँ सुनी तो रहा हूँ.
2: क्या सुन रहे हो?
3: रेडिओ पुणेरी आवाज.
2: ओ रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियाँ बांटो.
4: नमस्कार. ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना एमपी छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूं और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ज्ञान की कुछ बातें. आशा करती हूं आप हेल्दी वेल्दी होंगे. तो आज हम चर्चा करते हैं चिंता और भय रूपी दो दुश्मन की. कहा गया है कि चिंता रावण की बेटी है प्रथम दृष्टि में. यह बात पूरी तरह से सही प्रतीत होती है क्योंकि चिंता बहुत कुरूप होती है परंतु फिर भी मनुष्य इसे छोड़ नहीं पाते. इसी से तंग होते हैं और इसी में उलझे भी रहते हैं. चिंता मनुष्य को रावण मनोविकारों और दुर्बलताओं का बंदी बनाकर रखती है. उसी तरह देखते हैं कि भय पर विजय अनिवार्य है. अगर रावण का एक सर्वशक्तिमान इसका बेटा भी है जिसका नाम है भय, अगर कोई चिंता के चंगुल से निकलने की ठान भी लेता है तो फिर उसका यह भाई उसके आगे आ खड़ा होता है. चिंता और भय ये दोनों मिलकर मनुष्य को रावण का गुलाम बनाकर रखते हैं.

निरंतर उसका शोषण करते हैं। भय कुरूप है जिसका मुख कभी मनुष्य देखना भी नहीं चाहता है। यह छुपकर वार करता है और इसके बारे में इसकी वार को बड़े बड़े योद्धा बुद्धिमान भी पहचानने में चूक जाते हैं। इसका सांकेतिक चित्रण रामायण में रावण के सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद के रूप में दिखाया गया है, जो अपनी गर्जन से सभी को भयभीत कर देता था। जीवन में सफलता पाने और रावण की जेल से छूटने के लिए भय पर विजय अनिवार्य है। भय का वार बाहर भी और अंदर भी होता है। भय दोनों ही तरफ से वार करता है, बाहर से भी और अंदर से भी। बाहरी रूप है असफलता का, पराजित होने का, प्रतिष्ठा और पोजीशन को खो देने का, आर्थिक नुकसान का, दुश्मनों और ईर्ष्या करने वालों का, दुर्घटना, अनहोनी, बीमारी या मृत्यु आदि का। आंतरिक भय का रूप होता है अपने पर विश्वास न होने का, जैसे अपनी कार्य क्षमता पर संदेह का भय, जिसे नर्वसनेस भी कहते हैं। अपने किए गए गलत कर्मों या पापों की आत्मग्लानि से उत्पन्न भय, अज्ञात भय, अनुमान एवं आशंका जनित भय, इच्छाओं के अपूर्ण रह जाने का भय, अपनों की उपेक्षा का भय, भविष्य की अज्ञात गति का भय, काल्पनिक भय और अंधविश्वास जनित भय इत्यादि। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपसे फिर आकर मिलती हूँ और अपनी चर्चा इसी तरह जारी रखते हुए। आइए सुनते हैं इसकी

तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और आगे की चर्चा हम जारी रखते हैं। चिंता भय रूपी दो दुश्मन। भयभीत व्यक्ति जो होता है आशंकित रहता है। डर की बीमारी लोभ मोह आलस्य या अहंकार की तरह हमेशा प्रकट नहीं होती। यह परिस्थिति आने या कुछ भी अनचाहा होने की प्रकट हो जाती है। यह डर मनुष्य के मन में कई सीमाएं बना देता है जिनमें मनुष्य सीमित होकर ही रह जाता है और बाहर निकलने की कोशिश करते ही भय का नागफन फैला लेता है। जैसे कि यह विचार कि मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरी ताकत ही नहीं, मेरा भाग्य बस यहाँ तक ही मेरा साथ देगा, इससे आगे नहीं, इससे ज्यादा का सोचते ही असफलता या अनिष्ट का अज्ञात भय प्रकट हो जाता है। समस्या हो या अवसर, दोनों ही हालात में या जो भय भयभीत जो व्यक्ति आशंकित ही रहता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मन में जो बाहरी डर है उनके सच होने की कई संभावनाएं उसे नजर आने लगती है। उदाहरण के तौर पर घर से बाहर निकलने पर कोई भी व्यक्ति किसी दुर्घटना से घायल हो सकता है, लेकिन ऐसा सोचकर लोग घर से बाहर निकलना नहीं छोड़ देते लेकिन सावधानी के संस्कारों को विकसित करते हैं।

एक होता है, परंतु क्या होता है भयभीत व्यक्ति का ध्यान, जो है सावधानी और समाधानों की जगह केवल अशुभ संभावनाओं की ओर टिका रहता है। भय नकारात्मकता की ऊंची दशा की ओर बढ़ने का नाम है, और इस स्थिति में चाहे व्यापार या व्यवहार हो अथवा पद प्रतिष्ठा या जीवन के समाप्त होने की कोई भी संभावना भयभीत व्यक्ति को वही कई प्रकार से दिखाई देती है। यदि यह कमजोरी ज्यादा बढ़ जाए तो मानसिक रोगी में बदल जाती है। आंतरिक भय इच्छाओं की व्याकुलता, मनोविकारों से उत्पन्न दुर्बलता और आशाओं के पूरा होने न होने के अंदेशों द्वारा सताता है, जिनका स्वरूप होता है अनुमान, दुखद स्मृतियों और नकारात्मक ख्यालों की बेचैनी व घबराहट। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपसे फिर आकर मिलते हैं, और तब तक के लिए सुनते हैं इस गीत को।

तो स्वागत है आपका फिर से इस कार्यक्रम में और चर्चा हम अपनी जारी रखते हैं। इसी तरह चिंता व भय रूपी दो दुश्मन, हिम्मत का टूट जाना ही मूर्छा है। ये सारे एहसास मन बुद्धि के आगे धूम की तरह छा जाते हैं, जिससे बुद्धि को सोचने समझने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है और ऐसे में बुद्धि मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों का निदान नहीं कर पाती और व्यक्ति उन्हीं विचारों से घायल और निराश हो जाता है। इन्हें ही हम रावण के शक्तिशाली मायावी बेटे मेघनाद द्वारा बादलों में छिपकर किए गए गुप्त प्रहार कर सकते हैं। जो लक्ष्य में मन लगाए हुए लक्ष्मण को मूर्छित कर देते हैं। हिम्मत का टूट जाना ही मूर्छा है और ईश्वरीय ज्ञान की संजीवनी इस मूर्छा का उपचार। लेकिन उस संजीवनी को लाने वाले हनुमान समाप्त कर एक परमात्मा राम के निश्चय और बल के उमंग उत्साह में उड़ने वाले हनुमान ही हो सकते हैं। देखो तय भय के मूल में मुख्य दो बातों का अभाव, भय का समाधान, भय से भागना या उससे जूझते रहना। मतलब भय से भागना और मतलब उससे जूझते रहना होता है। नकारात्मकता से व्यक्ति जितना ही जूझता है उतना ही फंसता है, क्योंकि इस जूझने की प्रक्रिया में भी वह ध्यान तो नकारात्मकता की ओर ही देता है। इसीलिए सौ झूठ को गलत सिद्ध करने की मेहनत करने की बजाय एक सत्य को दृढ़ता से अपना लिया जाए तो सौ झूठों से युद्ध करने की हाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। भय के मूल में जो होता है मुख्य दो बातें हैं, इसमें मुख्य दो बातों का अभाव भी होता है। तो या तो ज्ञान का अभाव या फिर अपनी शक्तियों का वो भूल जाना होता है। यदि ज्ञान की जागृति है तो यह वह जो भय है वो भय को उत्पन्न ही नहीं होने देती, और शक्ति है तो भय विचलित नहीं कर सकता। आत्मा उस परिस्थिति या समस्या को जीत लेती है। परमात्मा की शिक्षाएं ज्ञान और शक्तियों का महासागर है। जब मनन चिंतन द्वारा इस सागर का मंथन किया जाता है तब ज्ञान गुणों के अनेक रत्न एवं संजीवनी प्राप्त होती है एवं ज्ञान के गुह्य अनुभव आत्मा को भूली हुई शक्तियों को जगा देती है। यही अनुभव आत्म स्थिति को अचल बना देते हैं। यही अचलता वास्तविक अमरता है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत।

आपका स्वागत है आपका फिर से इस कार्यक्रम में और हम अपनी आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। तो हमारा आज का विषय है चिंता को भय रूपी दो दुश्मन। परमात्मा के संग का रंग एक होता है, परमात्मा के संग का रंग आत्मा को निर्भय और साक्षी बना देता है। अर्जुन की भांति सर्वशक्तिमान परमात्मा को सदा अपने सारथी यानी कि मार्गदर्शक के रूप में याद रखने वाले निर्भय हो जाते हैं। अंगद की तरह परमात्मा के एक बल एक भरोसे पर अपने संकल्प का कदम जमा लेने वाले भी सर्व संदेहों से मुक्त हो जाते हैं। हनुमान की तरह एक बार राम नाम

संबंध जोड़ लिया जाता है तो उसके संग का रंग आत्मा को निर्भय और साक्षी बना देता है। आत्मा की अनुभूति जो होती है, आत्म अनुभूति और परमात्मा के साथ जो होता है, परमात्मा की अनुभूति चित्त को उन विकारों से मुक्त कर देती है जो अशुद्ध कामनाओं के अपूर्ण रह जाने का भय पैदा करते हैं। परमात्मा प्रेम की लगन अंतरात्मा को पवित्र कर देती है और पवित्रता आत्मा को सुखी और संतुष्ट कर देती है। फिर आत्मा स्वयं में ही इतना संपन्न अनुभव करती है कि ना तो उसे कुछ बाहर से पाने की लालसा ही बांध सकती है और ना ही कुछ खो जाने का भय भयभीत कर सकता है। इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान आत्म अनुभूति योग के निराले अनुभव परमात्मा प्यार और संबंध की अनुभूति एवं दिव्य संस्कारों की पवित्रता आत्मा को ऐसा समर्थ बना देती है जो रावण का कोई भी रूप या विघ्न आत्मा को भयभीत नहीं कर सकता। और यही वो अमोद शास्त्र है जो हमें सदा काल के लिए विजयी बना देते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए। ओम शांति।

0: नमस्कार पुणे। अगर आपके रक्तदान से किसी की जिंदगी बच सकती है तो इससे बड़ा सेवा का अवसर और क्या हो सकता है। आप सभी से एक विशेष अपील है, रविवार 23 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एक विशेष रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। ये शिविर ब्रह्मा कुमारीज सौंदर्या कॉलोनी नखाते बस्ती राहटनी में आयोजित होगा। अगर आप स्वस्थ हैं और रक्तदान करने के योग्य हैं तो जरूर आइए और इस नेक कार्य में अपना योगदान दीजिए। रक्तदान के लिए आप पहले से अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए जाएं www.bksocialwing.org पर और रजिस्टर एज डोनर लिंक पर क्लिक करके अपना पंजीकरण करें। याद रखिए, आपका थोड़ा सा रक्त किसी के लिए जीवन की नई उम्मीद बन सकता है। तो आइए रविवार 23 अगस्त को रक्तदान करें और जीवन बचाने की इस मुहिम का हिस्सा बनें। धन्यवाद।
1: रक्तदान करें, जीवन दान करें।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

गली गली लिए तेरा प्यार अरे हे कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे यार बड़ी मुश्किल से तुझे पाया मेरी जान अब न कहना के जाती हूँ मैं गली गली लिए तेरा प्यार अरे हे कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे यार बड़ी

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड न्यूज स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माय कार इज इन माय कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती है उस रोड के ऊपर? ब्यूटीफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: का सफर आरजी सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर ख्वाबों का सफर। भाई बहनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका हम सफर सनी। हमारे साथ आज के इस शो को एपिसोड को सजाने के लिए विभा जी भी आई है, तो विभा जी के लिए स्वागत में ये चंद तालियां।
2: थैंक यू सनी, थैंक यू सो मच। आपको और हमारे बहुत ही प्यारे से लिसनर्स को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: जी जी जी, बहुत ही प्यारा सा जो आवाज है आपका, हमारे सभी श्रोताओं को बहुत अच्छा लगता है और आप प्यार से जब गाने सुनाते हैं तो और अच्छा लगता है। तो पहला गाना आप हमारे श्रोताओं को कौन सा सुनाना चाहेंगे आज?
2: पहला गाना मैं लेके आई हूँ, मुझे गले से लगा लो बहुत उदास हूँ। ये थोड़ा उत्ती वाला गाना है।
1: जी जी,
2: इसमें दुनिया के सितमों और शिकायतों को बहुत खूबसूरती से बोलों में डाला गया है। इसमें अकेलेपन का जिक्र है और एक कंधे की फरियाद है इसमें। कंधा भी इनकी उस कंधे पे सिर रख के रोने के लिए वो नंदा कह रही है, मुझे गले से लगा लो बहुत उदास हूँ। महबूब अपनी महबूबा को दिलासा दिलाते हुए कह रहे हैं, सितम के हाथ की तार टूट जाएगी, ये ऊंच नीच की दीवार टूट जाएगी, तुझे कसम है मेरी उदास न हो, बहुत सही गमे दुनिया उदास न हो।
1: जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है। वसंत जोगलेकर साहब ने इसको डायरेक्ट किया था, रवि साहब ने संगीत से सजाया था। हिंदी भाषी फिल्म जो 1963 में भारत में रिलीज हुई थी और इसमें कलाकार के रूप में अगर देखा जाए तो अशोक कुमार, सुनील दत्त, तनुजा और नंदा ने काम किया था। इस फिल्म का ये गाना जो आप बता रही है उसे साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा है, आशा भोसले और मोहम्मद रफी साहब ने गाया है। रवि साहब का बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक है। जिंदगी बड़ी कश्मकश से भरी है लेकिन कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जिंदगी की ये जो बातें हैं, जब हम लोग कर्म पर डिपेंड हो जाता है, कर्म पर निर्भर हो जाते हैं, तो कर्म हमें अच्छी तरह से करना होता है। ऐसा भी कहा जाता है, जितना गहरा अधिक हो कुआ उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर मुश्किल प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। तो आइए आगे बढ़ते हुए ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए कार्यक्रम की शुरुआत में, आज और कल का। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। विभा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पास?
2: अगला गाना है ये, जब सनी को कंधा मिल जाता है तो प्यार हो ही जाता है। तो इस मुझे अगला गाना मैं लेके आई हूँ, मुझे किसी से प्यार हो गया।
1: क्या बात है, क्या बात है।
2: तथा बाहर हिट जोड़ी के ऊपर फिल्माया गया गाना है, नरगिस और राज कपूर। सुनने वालों के लिए मजबूर करता है और बहुत प्यारा, आप झलकने लगते इसको सुनते हुए ही, जैसे कि रियली प्यार और एक मस्ती की भावना इसमें आती है। इसमें नरगिस की एक्टिंग बहुत खूबसूरत है और लड़कपन और नजाकत के साथ खुशी झलक रही है उनके एक्टिंग और गाने में।
1: जी हाँ, आपने याद कराया, बरसात इस एल्बम से जो 1949 में रिलीज हुई थी। जलाल महलाबादी ने इस गाने को लिखा था, लता मंगेशकर ने गाया था, शंकर जयकिशन साहब ने अपनी खूबसूरत संगीत दी है इस गाने को। और ये जो है फिल्म बरसात 1949 में जो रिलीज हुई थी, एक कहानी है एक लड़के की। और यहाँ पर जो है छुट्टियों के दौरान, जैसे हम लोग बचपन में गांव जाया करते थे, वैसे ही गांव जाते हैं तो वहां पर फिर कुछ अलग चीजें हो जाती हैं। और जैसे कि शहर से एक लड़का जब

चला जाता है, तो गांव की लड़की से उसका प्यार हो जाता है और फिर वापस छुट्टियां खत्म हो जाती है, परिवार के साथ लड़का वो अपने गांव छोड़कर शहर आ जाता है, तो शहर में आने के बाद फिर उनकी जो तनहा है वो यहाँ पर शुरू हो जाती है। तो चलिए कहानी को आगे हम लोग नहीं सुनाएंगे, अब सीधे मैं आपको गाने की तरफ ले चलता हूँ। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज खाबो का सफर। जी हाँ, आशा करता हूँ आप सभी को बड़े प्यारे प्यारे गाने 50s एंड 60s के सुनने को मिल रहा है। और विभा जी ने बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन अपने साथ लाई है और हम एक एक करके उन गानों का लुत्फ उठा रहे हैं। और कहते हैं, इंसान ने एक बार वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूँ? वक्त ने बड़े प्यार से कहा, धूप हो या छाव हो, काली रात हो या बरसात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसीलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा।
1: वेरी नाइस
0: जी। विभा जी, अगला गाना कौन सा है हमारे श्रोताओं के लिए?
1: ये अगला गाना मैं लेके आई हूँ, जब प्यार हो गया तो उसका इजहार भी जरूरी है और ये उसको पूछना भी जरूरी है, और इसलिए इसमें मुझे कितना प्यार है तुमसे अपने ही दिल से पूछो तो। इसमें शमी कपूर, माला सिन्हा दो दीवाने दुनिया की भीड़ से दूर एक मस्ती में गा रहे हैं और एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं, और इसको सुनकर दिल में प्यार का एहसास होता है। वो बहुत खूबसूरत है। दिल तगन हो सच्ची, फिर क्यों न रंग लाए, मेरे थे तुम सदा पर अब करीब आ रहे।
0: जी, ये बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है। दिल तेरा दीवाना, ये 1962 का फिल्म है जिसमें ये गाना है। और ये फिल्म जो है बीआर पंतुलु साहब ने खास करके निर्देश किया था, डायरेक्शन दिया था उन्हें, और इंदिरा राज आनंद साहब ने इसकी कहानी लिखी थी, शंकर जयकिशन ने संगीत से संवारा था इस फिल्म को। तो इस फिल्म का जो गाना आपने याद कराया है, मुझे कितना प्यार है तुमसे, शमी कपूर, माला सिन्हा, मोहम्मद अली, महमूद अली, प्राण प्रतिचराइज किया गया ये खूबसूरत गाना दिल तेरा दीवाना इस एल्बम का, अभी हमारे श्रोताओं के लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, खाबो का सफर इस कार्यक्रम को आप सुनाए हैं और बहुत ही प्यारे गाने आप सुनाए हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये गाना जो अभी आपने सुना दिल तेरा दीवाना का बहुत ही पसंद आया होगा। और इस फिल्म की कहानी तो एक मोहन नाम के लड़के की कहानी इसमें बताया गया है, और उसके पिता बड़े ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे मोहन को ये सारी चीजें पसंद कुछ समय आती, कुछ समय नहीं आती हैं, तो फिर वो जुड़ा मुश्किल जो है उसके इस इन बातों को देखकर उनको कुछ मुश्किलें आती हैं, क्योंकि अपने सभी दोस्तों को देखते हैं तो चीजें वहां पर अलग होती हैं और यहाँ पर घर में उसके लिए कुछ अलग माहौल बनता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत गीत की तरफ मैं आपको ले चलूंगा। विभा जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, और प्यार मोहब्बत वाले गाने मुझे और भी अच्छा कर रहे हैं।
0: चलिए, आप भी दीवानी बनती जा रही है मुझे लगता है गाने सुन सुनकर। अब अगला गाना कौन सा है हमारे श्रोताओं के लिए?
1: इसमें प्यार मोहब्बत के साथ जहाँ प्यार मोहब्बत है वहाँ वफा और बेवफाई की भी बात होती है, इसमें फुल वफा है
0: जी,
1: और
0: जी।
1: इस गाने में शर्मिला टैगोर और जय मुखर्जी हैं, और इस गाने के बोल हैं, मुझे मेरा प्यार दे दो, तुझे आजमा लिया है, तेरी वफा के आगे मैंने सर झुका लिया है। इसमें दो प्रेमी पूरी मस्ती के साथ एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं, और पाने और खोने की बात के साथ साथ घर को सजाने की बातें कर रहे हैं। तो प्यार का पूरा खुमार है, दोनों प्रेमी प्यार में डूबे हुए गाते जा रहे हैं।
0: ये हम साया 1968 में शायद आई थी, उस फिल्म का गाना आपने याद कराया है। जॉय मुखर्जी, शर्मिला टैगोर, माला सिन्हा, सप्रू पर पिक्चराइज किया गया ये फिल्म था हमसाया, जो 1968 में रिलीज हुआ था। तो इस फिल्म की कहानी जो है थोड़ी सी अलग बताया गया है, एक मिलिट्री की कहानी इसमें है, देश सेवा की जो सैन्य बल है उस पर आधारित ये फिल्म बताई गई है। भारत और दूसरे चीन राज्य के बीच में जो छोटे मोटे युद्ध जो बताए गए हैं इस फिल्म के अंदर। तो आइए, इस फिल्म का एक गीत जो आपने अभी याद कराया है, जिसे खास शेवन रिजवी साहब ने लिखा है, आशा भोसले, मोहम्मद रफी साहब ने गाया है, ओपी नैयर का खूबसूरत संगीत से सजा ये गाना अभी आपके लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे हम साया इस एल्बम से। अब आगे बढ़ते हैं, कहते हैं परिंदे रुक मत तुझ में जान बाकी है, मंजिल दूर है बहुत उड़ान बाकी है, आज या कल तेरी मुट्ठी में होगी दुनिया, लक्ष्य पर अगर तेरा ध्यान बाकी है, लक्ष्य पर अगर तेरा ध्यान बाकी है, यूं ही नहीं मिलती किसी को रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है, जिंदगी की जंग में है हौसला जरूरी, जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। विभा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पास हमारे श्रोताओं के लिए?
2: एक और प्यार और मस्ती भरा गाना है, और इसमें महबूबा को महबूब से मिलने का जो एक खुशी मिल रही है उसका इजहार है। मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, कैसी खुशी लेके आया चांद, ईद का इसमें शाम है और भारत भूषण पर फिल्माया गया है। तो इसमें महबूब के चेहरे का दीदार हो जाना ही किसी ईद के चांद से कम नहीं होता। जो खुशी, जो प्यार और जो मस्ती है उसी का इजहार है इसमें। और सबसे एक थरकने वाला गाना है इसमें, खूब इसको सुनते ही जैसे पैर थरकने लगते हैं कि अब इंसान एंजॉय करता है इसको। इसके बुक में जो मुझे बड़े पसंद है, ऐसे कटी रात मेरी आँख में नाम नहीं नींद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का।
1: जी, भरत भूषण, मधुबाला, श्यामा और के एन सिंह पर पिक्चराइज किया गया ये फिल्म है जिसका नाम बरसात की रात है, जो 1960 में रिलीज की गई थी। और ये फिल्म में कहानी जो है बड़ा ही रोमांटिक कहानी है। बरसात की रात में युवा युवती मिलते हैं। अब बात बाद में ये हो जाता है कि सही पहचान युवती की करने से पहले ही वो चली

तो फिर यहाँ पर कश्मकश हो जाता है कि वो कौन थी, उसकी तलाश जो है जारी रहती है फिल्म में। तो आइए इस फिल्म का आपने जो गीत याद कराया है, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, साहिर रिद्दानी साहब ने लिखा है, लता मंगेशकर जी ने गाया है, रोशन साहब का संगीत, सिस्टर जा, ये गाना अभी आपके लिए, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विभा जी, अब अगला गाना कौन सा है आपके पास?
1: अगला गाना मेरे पास है मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम ना देना खुशी देने वाले। इनोसेंट सॉन्ग है।
0: जी जी जी।
1: और इसमें जैसे महबूबा को एक श्योरिटी चाहिए कि कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं जाओगे, उसके लिए अपनी महबूब से कह रही है कहीं तुम मुझे छोड़ तो ना दोगे। इतना प्यार देने के बाद इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है गाने में, बहुत एक चुलबुलापन भी है और एक सवाल है इसमें। तो इसमें जो बोल है, जमाने में तुमसे नहीं कोई प्यारा, ये जहाँ भी तुम्हारी ये दिल भी तुम्हारा, ये महबूबा का जवाब है और उससे संतुष्ट महबूब उसको संतुष्ट कर रहा है। भरोसा है हमको मोहब्बत पर तेरी, ये डर है जमाना जुदा कर न डाले। इस गाने को सुनने को बार बार मन जाता है। बड़ा लिरिक बड़े सुंदर है और इसके भाव बड़े अच्छे हैं। एक प्रॉमिस मांग रही है महबूबा महबूब से।
0: बहुत ही प्यारा संगीत आपने याद कराया है। ये जो गाना है प्यार का सागर, जो 1961 में फिल्म आई थी, और ये फिल्म जो है एक बहुत ही प्यारा सा फिल्म बनी थी। यहाँ पर एक युवक की कहानी बताई गई है। जब उनके माता पिता इस दुनिया से चल बसते हैं तो वो मुंबई आकर अपनी गुजारा करने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर जो सिचुएशन है मुंबई की वो बताई गई है। इस फिल्म को देवेंद्र गोयल साहब ने लिखा है और फिल्म के जो संगीतकार है वो रवि साहब है, और उनके जो कलाकार है राजेंद्र कुमार, मीना कुमारी, मदन पुरी, लीला मिश्रा। तो आइए, आपने जो गाना याद किया है प्यार का सागर इस एल्बम का, ये गाना जो है प्रेम धवन साहब का लिखा है, आशा भोसले मोहम्मद रफी साहब ने गाया है, रवि साहब की खूबसूरत संगीत से सजा ये अगला गाना अभी हमारे श्रोताओं के लिए। खुश रहो खुशियां बांटो।

0: उनके लिए सवेरे नहीं होते, जिंदगी में कुछ भी पाने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। उनके लिए सवेरे नहीं होते जो जिंदगी में कुछ भी पाने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। उजाला तो उनका होता है जो बार बार हारने के बाद कुछ पाने की उम्मीद रखे हैं। जिसके पास धैर्य है वो जो चाहे वो पा सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत लाइन ही लिखकर भेजा है हमारे दोस्त ने, सलाम उनको। और अब हबीबा जी कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ।
0: और बताइए अगला कौन सा गाना है हमारे श्रोताओं के लिए आपके पास?
1: अगला गाना थोड़ा सा उदासी भरा, इसलिए थोड़ी सी उदास भी हूँ, पर मुझे ये गाना भी सुनना है।
0: जी जी
1: जरूर। तो मेरे ख्याल है वो नजर से मुझको गिरा न दे, मेरी जिंदगी का दिया कहीं ये गमों की आंधी बुझा न दे। बहुत उदास गाना है, वीरानों पे फिल्माया गया है, पर ये भी जिंदगी का एक हिस्सा है। ज्यादा चीनी भी हो जाए तो थोड़ा सा नमक खाने को मन करता है, तो ये थोड़ी सी उदासी के साथ भी ये गाना दिल को भाता है, अच्छा लग रहा है।
0: चलिए, बहुत ही प्यारा सा जो भाव है आपने व्यक्त किया है, और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को आज के हमारे गाने बहुत ही अच्छे अच्छे गाने आपने सुनाए हैं। और जो गाना अभी आपने बताया 1961 में ये फिल्म आई थी उमर कैद, ये आसपी ईरानी ने फिल्म को डायरेक्ट किया था। मोहन छोटी, हेलन, शेख मुकद्दर का मुकद्दर जो है इस फिल्म के कलाकार रहे। और इसमें एक कहानी ऐसा बताया गया, एक व्यक्ति को जो है जेल में डाल दिया जाता है और काफी समय तक वो जेल में रहता है, और फिर भी बहुत कोशिश के बाद जब वो बाहर आता है तो वो फाइनली अपने आप को बेकसूर साबित कर ही देता है। तो इस तरह की ये कहानी बताई गई है उमर कैद, इस नाम से ही पता चल जाता है किसी एक कैदी की कहानी है। तो आइए आगे बढ़ते हुए इस फिल्म का ये गाना अभी आपके लिए, आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। खाबों के सफर में आगे बढ़ते बढ़ते अब आखिरी गाने की तरफ हम लोग जा रहे हैं, और जो गाना उमर कैद फिल्म का आपने सुना, जिसे हसरत जयपुरी साहब ने लिखा था, मुकेश साहब ने गाया था, इकबाल कुरैशी का संगीत से सजा गीत था उमर कैद का। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं, एक और गीत की तरफ हम लोग चलते हैं। और विभा जी, अगला गाना आप ही शायद होगा, कौन सा गाना है अभी आपके पास?
2: जी, ये आखिरी गाना मेरे पास है। इससे पहले आप बताएं, आप कैसे हैं? आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं इस गाने को?
1: बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत ही प्यारे प्यारे जो 50s 60s के ओल्ड मेलोडीज हैं, कहीं न कहीं ये दिल के अंदर हमारे जो है बस जाते हैं। शब्द इनके बहुत ही मीठे हैं, पहली लाइन जैसे कि गाने के हमें याद हो जाता है। दो तीन गाने जो है मेरे दिल के करीब हैं, जिन्हें आपने सुनाया है, जैसे मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, इसके साथ ही आपने एक गाना और सुनाया था, मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। ये जो गाने आपने सुनाए हैं, ये हकीकत में कहीं ना कहीं एक बार भी व्यक्ति सुन लेता है तो इसकी पहली वर्डिंग तो याद हो ही जाती है और बार बार सुनने का मन करता है। और एक गाना जो आपने सुनाया था, दूसरा गाना शायद

0: नमस्कार पुणे। अगर आपके रक्तदान से किसी की जिंदगी बच सकती है तो इससे बड़ा सेवा का अवसर और क्या हो सकता है। आप सभी से एक विशेष अपील है, रविवार 23 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एक विशेष रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। ये शिविर ब्रह्मा कुमारीज सौंदर्या कॉलोनी नखाते बस्ती रहाटनी में आयोजित होगा। अगर आप स्वस्थ हैं और रक्तदान करने के योग्य हैं तो जरूर आइए और इस नेक कार्य में अपना योगदान दीजिए। रक्तदान के लिए आप पहले से अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए जाएं www.bksocialwing.org पर और रजिस्टर एज डोनर लिंक पर क्लिक करके अपना पंजीकरण करें। याद रखिए, आपका थोड़ा सा रक्त किसी के लिए जीवन की नई उम्मीद बन सकता है। तो आइए रविवार 23 अगस्त को रक्तदान करें और जीवन बचाने की इस मुहिम का हिस्सा बनें। धन्यवाद।
1: रक्तदान करें, जीवन दान दें।
0: नमस्कार पुणे। अगर आपके रक्तदान से किसी की जिंदगी बच सकती है तो इससे बड़ा सेवा का अवसर और क्या हो सकता है। आप सभी से एक विशेष अपील है, रविवार 23 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एक विशेष रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। ये शिविर ब्रह्मा कुमारीज सौंदर्या कॉलोनी नखाते बस्ती रहाटनी में आयोजित होगा। अगर आप स्वस्थ हैं और रक्तदान करने के योग्य हैं तो जरूर आइए और इस नेक कार्य में अपना योगदान दीजिए।

0: रक्तदान के लिए आप पहले से अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए जाएं www.bksocialwing.org पर और रजिस्टर एज डोनर लिंक पर क्लिक करके अपना पंजीकरण करें। याद रखिए, आपका थोड़ा सा रक्त किसी के लिए जीवन की नई उम्मीद बन सकता है। तो आइए रविवार 23 अगस्त को रक्तदान करें और जीवन बचाने की इस मुहिम का हिस्सा बनें। धन्यवाद।
1: रक्तदान करें।

0: किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी, लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियाँ बांटो।
1: उजाले का सफर, लेखिका सुधापुरी, पात्र परिचय यश, पंकज, सैंडी, दृष्टि, रवि, विनोद, वेदांत, आकाश, उन्नति।
2: जब से बासु सर ने हमारी

0: क्लास लेना शुरू किया है। मेरी तो लिखाई भी सुंदर हो गई है।
1: वो तो होगी ही, लिखाई भी तो एक प्रकार के आर्ट की कला है।
2: कैलीग्राफी का नाम सुना है?
3: हाँ, आर्टिस्टिक तरीके से लिखना।
4: बस तो वही हुआ ना, अगर हम अपने हर एक अक्षर को सुंदर तरीके से लिखें।
5: जैसे मेरी मम्मी कहती है, बना बना के ऐसे लगे पन्ने पे मोती जड़े हो।
6: मेरी मम्मी भी कहती है, बना बना के लिख, ये तो सुलेख नहीं कुलेख कर रहा है।
0: ये कुलेख कोई हिंदी का शब्द है कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारी शानदार लिखाई देखकर कहा है?
7: आज बहुत मस्ती में हो, काम कब शुरू करोगे? आओ बच्चों, इधर आ जाओ, यहाँ पंखे की हवा अच्छे से लगेगी।
8: मैं आ रहा हूँ।
7: शुक्र है, आजकल बिजली जरा कम जा रही है।
3: हाँ, धीरे बोलो सर, कहीं नजर ना लग जाए।
4: नजर से क्या डरना, कल अखबार नहीं पढ़ा था?
0: तुम अखबार पढ़ते हो
4: रोज? हाँ, मैं तो रोज पढ़ता हूँ, हमारे घर हिंदी का आता है, आराम रहता है पढ़ने में।
5: पर कल का ही क्यों पूछ रहे हो, क्या खास बात थी?
4: सरकार ने विद्युत विनियामक आयोग का एक प्रस्ताव भेजा है उन डिस्कम्स को दंडित करने के लिए जो दिन में कई बार लोड शेडिंग करते हैं।
0: वेरी गुड।
2: अरे यही दूरदर्शन के समाचार चैनल पर भी एक कार्यक्रम में बताया गया था, 2019 तक प्रत्येक घर में 2400 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी है।
3: सुना है हमारे प्रधानमंत्री तो बिजली की बचत को देश सेवा मानते हैं और फिजूल में बिजली जाया करने के सख्त खिलाफ है।
9: बात सुनो तो, इसमें गलत क्या है? याद नहीं किस तरह हमारे बुजुर्ग जरा सी भी बिना बात पे पंखा या लाइट खुली रह जाए तो कितना गुस्सा करते थे? बल्कि हमें कहा जाता था, सब एक ही जगह बैठकर अपना अपना काम करो ताकि एक ही पंखा चले।
2: दीदी, ऐसे तो साथ साथ काम करने में मजा भी आता है ना?
9: दिल लगा रहता है सबका, प्यार बढ़ता है, हर उम्र का व्यक्ति एक साथ बैठता तो सहिष्णुता बढ़ती है।
0: मेरी मम्मी तो दिन में लाइट भी नहीं चलाने देती, कहती है जब तक सूर्य की प्राकृतिक रोशनी आ रही है तब तक घर की लाइट नहीं चलानी।
10: बिल्कुल ठीक कह रही है, सौर शक्ति का सही प्रयोग।
11: हमारे घर में तो सौर्य कुकर भी है।
10: वाह, फिर तो गैस की बहुत बचत हो जाती होगी।
11: सबसे अच्छी उसमें दाल बनती है जो कार कार के बनाई जाती है।
2: तो खीर, साग, गाजर का हलवा सभी कमाल के बनते होंगे।
11: पर कितने ही तरीकों से हम बिजली वेस्ट कर देते हैं। कभी कभी तो स्कूल के हॉल में या लाइब्रेरी में भी देखो, जब एक जगह दो बच्चे बैठे हैं तो पूरे हॉल की लाइट जली होती है।
2: मैं तो जाकर बंद कर देता हूँ हमेशा एक्स्ट्रा लाइट या पंखा।
3: मैं तो अपनी क्लास का इस बात का मॉनिटर भी हूँ, पंखे लाइट बंद करने का, ब्लैक बोर्ड हर समय साफ रखने का।
5: मैं भी इंचार्ज हूँ, खिड़कियाँ, दरवाजे, सेल, अलमारियाँ और पंखे लाइट को समय पर बंद करने का।
4: मेरे दादा बड़े स्ट्रिक्ट थे और आजकल तो कोई कमरे में हो ना हो बस एसी चलता रहता है।
5: अरे कई लोग तो सारा सारा दिन जो यूं ही टीवी, रेडियो और दिन में लाइट भी जलाए रखते।
6: हाँ, ये तो गलत है भाई।
7: हाँ हाँ, तुम्हारी इन बातों से तो मेरा दिल कर रहा है कि सारे घर का चक्कर लगा के देखूं कोई पंखा लाइट फालतू तो नहीं चल रहा।
0: और क्या, अरे छोटी छोटी बातों में कितनी लाइट की बचत हो सकती है।
11: हमारी सामाजिक अध्ययन की किताब में बिजली बचाने के कई तरीके लिखे हुए हैं। बताऊं?
2: हाँ हाँ बताओ।
11: अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पावर एक्सटेंशन कॉर्ड से जुड़कर इस्तेमाल में लाएं।
3: अच्छा, ये तो मुझे भी पता है, रात को सोते समय उसे बंद करके ही सोएं, नहीं तो कंप्यूटर, प्रिंटर, टीवी, डीवीडी प्लेयर बिजली के बिल को बढ़ा देंगे।
2: हाँ, ये मैंने भी पढ़ा था, बिजली बचाने के सबसे आसान तरीकों में से एक सामान्य बल्कि जगह पर

0: फ्लोरोसेंट लैंप यानी CFL का इस्तेमाल है।
1: पता है CFL बल्ब 80% कम बिजली का इस्तेमाल करता है, 10 से 15 गुना ज्यादा भी चल सकता है।
2: एक तरीका ये भी है कि आप पानी गर्म करने के लिए वाटर हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो अपने वाटर हीटर या हीटर का तापमान 48 डिग्री पर ही सेट करके रखें।
3: और फ्रिज को खाली न छोड़ें, फ्रिज को नॉर्मल मोड पर ही चलाएं।
0: अगली बार वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए डालें तो यह ध्यान रखना जरूरी है कि वॉशिंग मशीन की क्षमता के हिसाब से ही उसमें कपड़े हों, यानी कम कपड़े धोने के बजाय इकट्ठी धुलाई करें।
1: बत्ती जलती हुई कभी न छोड़ें।
4: या जब कभी कमरे से बाहर जाए तो पंखे और लाइट का स्विच बंद करके ही निकले।
5: कई लोग रात को लाइट जला के सोते हैं। रात को सोते समय ज्यादा लाइट बंद कर दें, इससे काफी बचत होगी।
2: वाह भाई वाह, कितनी अच्छी बातें हैं ये सब।
3: उस दिन अखबार में आया था ना, यही हाल पानी का है हमारे देश में। आधे से ज्यादा पानी तो टूटी हुई पाइपलाइन से ही जाया हो जाता है और लोग गर्मी से तरसते रहते हैं।
6: कहते हैं अब सरकार बड़ी सख्ती से इन कमियों को दूर करने में जुट गई है।
2: ऐसे तो देखा नहीं, सुबह सुबह दांत को साफ करते समय नल को चालू रखते हैं या अपनी गाड़ियों को पाइप से धोते हैं।
1: हाँ, और एक बाल्टी में थोड़ा सा पानी लेके गाड़ी साफ हो सकती है, ऐसे तो कितना पानी वेस्ट होता है।
5: तो नहाने के लिए भी तो कहते हैं ना, शावर में दुगना तिगना पानी लगता है और ऐसे एक बाल्टी में ही स्नान हो सकता है।
4: मेरी मम्मी तो बर्तन साफ करने के समय सिर्फ तभी नल चलाती है जब उन्हें धोना हो, साबुन लगाते समय नहीं चलता रहता नल, और नल धीरे भी चलाती है ताकि वेस्ट न हो पानी।
1: कहते हैं कि हर घर में 24 घंटे बिजली होना अब सरकार का लक्ष्य है।
3: बात तो कितने पते की है।
6: अरे अब तो सीधे ही देश की नब्ज को थामा गया है।
1: वो कैसे? सीधे ही देश के विद्यार्थियों और नवयुवकों को संबोधित किया है।
6: अच्छा। हाँ, और उन्हें संबोधित करते हुए कहा गया है कि अपने अपने घरों के मासिक बिजली के बिल को चेक करें और फिर परिवार से इसकी चर्चा करें कि कैसे इस बिल को घटाया जा सकता है।
2: पापा कहते हैं ऐसा करना हम सबका राष्ट्रीय कर्तव्य है।
4: मैं भी कहूँ, आजकल पापा और मम्मी मुझे फालतू लाइट जलाने पर क्यों टोकने लगे हैं।
5: हाँ, मेरी मम्मी भी कहती है फ्रिज से जो निकालना है या रखना है एक बारी सोच लो, बार बार फ्रिज खोलना बंद करना ठीक नहीं है।
4: हाँ हाँ, अब पता चला ये राष्ट्रीय प्रोग्राम घर से ही शुरू हो रहा है।
3: बात कितनी सही है। कहते हैं कि बिजली का और उत्पादन करने से बेहतर और सस्ता तरीका तो है बिजली बचाना।
0: बात तो वही है ना, बचत भी तो एक प्रकार की कमाई ही होती है,
7: और इससे तो देश में बिजली की उपलब्धता में भी काफी फर्क पड़ सकता है।
5: दीदी, हम भारतीयों का सब मुसीबतों के बावजूद भी कमाल का हौसला है,
4: और देखो ना आज जैसे कुछ उम्मीद सी है।
0: हाँ, हम सब हो रहे हैं।
8: ठहरो, एक मजेदार बात मैं भी बताता हूँ सबको।
6: क्या?
8: कितने ही गांवों में जहाँ सिर्फ 6 या 8 घंटे की बिजली रहती थी, अब एक पंखा और बल्ब हमेशा जल सकता है। इसे कहते हैं तरक्की।
0: वाह वाह
6: वाह वाह वाह।

0: बैटल फील्ड है, तो बिजली बचाओ देश बनाओ।
1: हमें तो ताली योग और हास्य योग करने के लिए थोड़ा सा ही प्रोत्साहन चाहिए, और यहाँ तो अपने देश की तरक्की की बात हो रही है।
2: बहुत मजा आया, बिजली के मामले में तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं, ये तो पक्का है।
3: और मुश्किलें कितनी ही हों, पर मन में है विश्वास,
4: पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन।
5: पूरा तो गाओ, जा कह रहे हो,
6: चलो चलो सब मिलकर पूरा गाना गाते हैं।
7: ठीक है।

0: नमस्कार पुणे। अगर आपके रक्तदान से किसी की जिंदगी बच सकती है तो इससे बड़ा सेवा का अवसर और क्या हो सकता है। आप सभी से एक विशेष अपील है, रविवार 23 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एक विशेष रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। ये शिविर ब्रह्मा कुमारीज सौंदर्य कॉलोनी नखाते बस्ती रहाटनी में आयोजित होगा। अगर आप स्वस्थ हैं और रक्तदान करने के योग्य हैं तो जरूर आइए और इस नेक कार्य में अपना योगदान दीजिए। रक्तदान के लिए आप पहले से अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए जाएं www.bksocialwing.org पर और रजिस्टर एज डोनर लिंक पर क्लिक करके अपना पंजीकरण करें। याद रखिए, आपका थोड़ा सा रक्त किसी के लिए जीवन की नई उम्मीद बन सकता है। तो आइए रविवार 23 अगस्त को रक्तदान करें और जीवन बचाने की इस मुहिम का हिस्सा बने। धन्यवाद।
1: रक्तदान करें, जीवन दान।
2: मित्रांशिवाय आयुष्य अपूर्ण, हसन भांडण आणि गाणं सगळं शेअर करायचं।
3: तेरे जैसा यार कहा, ऐसा यार आला।
2: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं।
4: लकडी की काठी, काठी पे घोडा।
2: मनात पीठ वाजल्या की शरीर आपोआप फिरकतं। त्याचसोबत
5: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध।
2: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा।
3: पहला नशा, पहला खुमार।
2: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM। आनंदी रहा, आनंद लुटा।
6: चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
7: चल चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल कटारा की।
8: नमस्कार श्रोतेहो, तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM आणि तुम्ही तुमच्या आवडीच्या शो मध्ये आहात, म्हणजेच हा खेळ शब्दांचा या कविता व चारण यांच्या शो मध्ये माझ्यासोबत म्हणजेच आरजे कैलास सोबत। आनंदी रहा, आनंद लुटा। श्रोते हो, आजच्या शो साठी आपण तू मी आणि पाऊस हा शब्द दिलेला होता। चला तर मग ठाव घेऊया हळव्या मनांचा, चला तर मग ठाव घेऊया हळव्या मनांचा, आनंद घेऊया जीवनातल्या प्रत्येक क्षणांचा।

जाम शराबी इनकी लज्जत।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

नमस्कार, मैं हूं पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टूडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूं, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण सरस्वती, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: सावित्री जी, आपके पति देव तो जरूर आए होंगे, उनसे मिलाएंगी नहीं?
2: आइए। क्या करती है, क्या मैं गा नहीं सकता?
3: सुनिए, इनसे मिलिए। ये है मिस्टर,
4: इनका परिचय तो सबके सामने हो चुका है। मेरा नाम सागर है और मैं इनका पति हूँ।
1: मैं इनका भक्त हूँ, इनके संगीत का।
4: ये मेरी छोटी बहन प्रेमा है।
3: नमस्ते।
4: मेरा छोटा भाई
2: किशन रघुवीर सिंह। और आपका नाम?
1: वैसे लोग मुझे मनोहर गाइड भी कहते हैं, चैंपियन भी बुलाते हैं, और कुछ के लिए मैं अंडे वाला हूँ।
4: अंडे वाला? अंडे वाला क्यों?
1: बात यह सागर साहब कि बचपन से मुझे उस मुर्गी की तलाश है जो मेरे लिए सोने के अंडे दे। मुर्गी तो नहीं मिली, हाँ अंडे वाले का खिताब जरूर मिल गया।
3: आप लोग बातें कीजिए, मैं जरा चंपा से मिलकर आती हूँ।
4: आप बैठिए ना।
1: माफ कीजिए, मैं आपकी शादी पे नहीं आ सका।
4: हाँ सर, आप होते तो शादी का मजा ही और था।
1: ये बात है, तो एक काम कीजिए साहब, एक शादी और कर लीजिए। आप कुछ खा नहीं रहे?
4: अजी साहब बहुत खाया, और ये फ्रूट क्रीम खाकर बहुत बढ़िया।
1: एक और खाइए।
4: अजी नहीं साहब।
1: अरे खाइए साहब, हमारे हाथों से खा के देखिए, मजा ही कुछ और होगा। एक मुझे दे दो, सागर को बहुत अच्छी लगी है।

0: क्या कर रहे हो?
1: सर, प्रोफेसर साहब की भविष्यवाणी सच नहीं तो सभी तुम नहीं जानती मैं तुम्हारे बिना कैसे जी रहा हूं। ये फ्रूट क्रीम का कप और बस काम खत्म। पार्टी में किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ,

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज

0: डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए, लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 करोड़ सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उससे हमें याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: पुस्तक प्रेमी रसिक श्रोते हो आणि शब्द प्रभु मित्र हो, तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज अर्थात 107.8 FM, आणि तुम्ही आज आरजी जगदीश सोबत ऐकत आहात आपल्या सभोवतरी असलेल्या शब्द प्रभूंच्या साहित्य कृतींची ओळख करून देण्यासाठी सुरू केलेला नवा कोरा करकरीत कार्यक्रम पाने चाळता चाळता। पुस्तक तुमचे, विश्लेषण आमचे। शब्द प्रभू मित्रांनो आणि वाचक श्रोते हो, जरी मी असं म्हटलं असतं नवा कोरा करकरीत कार्यक्रम, तरी आपला पाने चाळता चाळता कार्यक्रम सिल्वर जुबली झालेला आहे। अर्थात आज 23 ऑगस्ट 2026 रोजी आपण 25वा कार्यक्रम, 25वा प्रयोग सादर करत आहोत, आणि या कार्यक्रमात 25व्या रजत जयंतीच्या सिल्वर जुबलीच्या कार्यक्रमात पुढची कलाकृती आहे शब्द प्रभू रामदास गायधने यांचा काव्य संग्रह

107.8 FM World Renewal Spiritual Trust का सामुदायिक रेडियो स्टेशन, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा। कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलतं।
1: अश्विनी
0: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं।
2: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे।
0: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत। या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदी रहा, आनंद लुटा।
3: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। खुशी को जब हमने देखना शुरू किया तो हमने पास्ट में देखा, तो हमें पता चला कि जितना हम पास्ट को पकड़ते बैठेंगे खुशी उतनी छूटती जाएगी। फ्यूचर में जब हम जाते जाते हैं, प्लानिंग करते हैं या हर अचीवमेंट जो ऐसा होगा तो मुझे खुशी मिलेगी, तो डिपेंडेंसी वहां पहुंचती रहती है। और बार बार ये कहा भी जाता है कि पास्ट और फ्यूचर को छोड़कर प्रेजेंट में रहना चाहिए, यानी ये लम्हा, ये मोमेंट जब हम आपके साथ हैं या कोई भी जीवन में जब भी हम जहां हैं वो हमारा प्रेजेंट। कैसे उसको अगर हम सही तरीके से लें तो हमारी खुशी कायम रह सकती है और वो इंडेक्स बहुत स्ट्रेट रह सकता है। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
4: ओम शांति।
3: सिस्टर शिवानी, सब कुछ तो हमें समझ में आ गया, मतलब जिस जिस पर डिपेंड कर रहा था वो तो छूट गया हमसे, मतलब पास्ट भी छूटा और फ्यूचर पर भी हमें समझ में आया कि जहां प्लानिंग सही है, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर इज नॉट बैड, बट देन माई डिपेंडेंसी ऑफ बींग हैप्पी, वो अगर फ्यूचर पर डिपेंड होगी तो उसके साथ तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। प्रेजेंट पे आ जाते हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली मेंट बाय, मतलब हर बार बात ये की जाती है, प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट में रहना?
4: एक्चुअली क्यों पास्ट और फ्यूचर में क्या होता कि जब भी हम पास्ट का वर्णन करते या फ्यूचर का करते, वी आर इन द डूइंग मोड। यू नो, पास्ट के बारे में ऐसे व्हाट शुड हैव आई डन, एंड इन द फ्यूचर ऐसे व्हाट डू आई हैव टू डू। सो इट बिकम्स द डूइंग, यू नो, द ह्यूमन डूइंग। एंड इस प्रोसेस में हम क्या भूल जाते, द बीइंग पार्ट, व्हाट डू आई हैव टू बी। एंड आज हम अपनी वोकैबुलरी को भी देखें तो हमारी सारी वोकैबुलरी क्या है, व्हाट आई शुड हैव डन, व्हाट आई शुडंट हैव डू, व्हाट शुड
3: हाउ मच आई हैव बीन डूइंग,
4: तो सब कुछ डूइंग पर फोकस्ड है और इसीलिए हमारी हैप्पीनेस भी डूइंग पर फोकस्ड हो गई कि ये करेंगे, ये होगा तो खुशी होगी। तो राजयोग हमें सिखाता दैट यू आर नॉट ह्यूमन डूइंग, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। सो फर्स्ट बी हैप्पी, नॉट डू एनीथिंग so that happy. You can get happy, but just that being has to be happy. तो वो being तो present हर moment में हम उसको realize कर सकते। तो present में रहना मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ एक बातें ऐसी हम अगर ध्यान रखें तो फिर present में रहना बहुत easy हो जाएगा।
3: present में खुश रहना या present
4: में है तो खुश है।
3: हाँ, I know, amazing।
4: present में है तो stable है। disturbance कहाँ आ रहा था? past का कोई इमोशन, कोई हर्ट, या फ्यूचर का कोई यू नो फियर या एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन भी क्या होती, क्योंकि हमने कहा एक्सपेक्टेशन हमें डिस्टर्ब करती। एक्सपेक्टेशन मीन्स फ्यूचर में आपका बिहेवियर या कोई सिचुएशन उसको प्रिडिक्ट करना, दिस इज एक्सपेक्टेशन। सो वी आर नॉट इन द प्रेजेंट। अगर हम प्रेजेंट में होंगे तो एक्सपेक्टेशन हमारे खत्म होती जाएंगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन आर ऑलवेज सम काइंड ऑफ अ प्रिडिक्शन। तो प्रेजेंट ऑलवेज वुड मीन स्टेबिलिटी। तो इसमें कुछ एक बातों पर हम ध्यान देते। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात इज कि आई

0: myself, jo main hoon, I am already complete. I am already beautiful. I do not need to compete or compare with anyone. Jab hum future mein bhi apni happiness dhoondte hain, to hum dekhte hain, main inke jaisa ban jaun to, main is position par pahunch jaun to, inke paas jo hai wo mere paas bhi aa jaye to, then we shift into the future.
1: But I don't feel complete. So why, as even if I create, okay, I create this thought, then only I'll feel complete.
0: Because feeling is based on my what God. Thought I create.
1: Okay, so that is why I feel I'm incomplete, because I think that I'll only be complete if this is the thing will happen.
0: Yes. I think that I will only be happy. Suppose I am assistant manager, let's say, okay? So I create a thought ki I will be happy when I become senior manager. When I reach there, I create a thought ki main tab khush hongi when I become general manager. So ye thoughts kon create kar raha? Ye to main hi create kar rahi hu. Ya inke paas jo gaadi hai, jab ye gaadi mere paas bhi aa jayegi, then I will be happy. To ye jo self hai, ye energy hai, ye shakti hai. Ye shakti ko na koi vastu ki zarurat hai, na kisi position ki zarurat hai. Ye apne aap mein complete hai aur happiness iski nature hai. इसकी कोई वस्तु या कोई पोजिशन या कोई फिजिकल ब्यूटी इसको कम्प्लीट नहीं कर सकती, क्योंकि दिस इज एनर्जी. दिस डजेंट रिक्वायर एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट टू बी कम्प्लीट. दिस जस्ट रिक्वायर्स द राइट थॉट.
1: मेरी यू नो मी बींग दिस कम्प्लीट एनर्जी एंड मी एक्टिंग इन द प्रेजेंट ऑल्सो मे बी यू नो डूइंग थिंग्स और वट एवर मी बींग दिस पर्सन ऑल्सो. How does it relate?
0: I am this person only. What is this person? This person means main wo energy jo thoughts create karti, feelings create karti, is body, is costume ke dwara main apna role, apni responsibility nibha raha hu. Ab happiness kahan hai? Happiness meri thought hai. This I can create any time, any place, any moment, irrespective and independent of anything. Lekin maine hi wo thoughts create kiye कि मैं इस पोजीशन पर पहुंचूंगा, मैं इनके जैसा सुंदर हो जाऊंगा, मेरे पास इतना सैलरी आ जाएगा, देन आई विल बी हैप्पी. जो एनर्जी है ये धन से कैसे, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए होगा? सिर्फ राइट एनर्जी ही चाहिए होगी ना. फिजिकल चीज उसको कंप्लीट नहीं कर सकती. हाँ, ब्यूटी है. अगर कोई हम फिजिकल ब्यूटी की बात कर रहे हैं, अगर मेरा हाथ कट गया सपोज यहां, तो हाँ मैं फिजिकली इनकम्प्लीट हूं, क्योंकि ये फिजिकल है, इसका एक फिजिकल पार्ट ठीक नहीं है, तो आई विल से आई एम इनकम्प्लीट. सिमिलरली ये एनर्जी है, इट्स ओनली थॉट्स. सो ऑल दैट आई हैव टू डू टू फील कम्प्लीट, टू फील हैप्पी, इज टू क्रिएट राइट काइंड ऑफ थॉट्स. इवन अगर अब मेरा ये हाथ कट गया, यहां से दोनों हाथ कट गए, दोनों पांव कट, इट डजेंट मैटर, बिकॉज आई एम हियर. ये इनकम्प्लीट होगा, ये बॉडी इनकम्प्लीट होगी, लेकिन मैं फिर भी कहां हूं? आई एम हियर. तो अगर मैं यहां बैठकर आई कैन क्रिएट द राइट थॉट, इवन अगर
1: हो, तो अगर मैं वो राइट थॉट नहीं क्रिएट कर रही,
0: तो सब कुछ होते हुए
1: भी मैं इनकम्प्लीट हूं.
0: एंड तब मेरी वो डिजायर्स की लिस्ट इतनी लंबी होती, ये होगा देन आई फील कम्प्लीट, ये होगा देन आई फील कम्प्लीट, एंड द लिस्ट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन, एंड देन आई एम ईदर इन द पास्ट और इन द फ्यूचर, क्योंकि मैं सोचती हूँ ये सब मिलेगा देन आई बी कम्प्लीट. तो ये जो सेल्फ रियलाइज, इसीलिए कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन हो, कहते ना गो इनवर्ड्स. हम हमेशा गो इनवर्ड्स मतलब क्या, जस्ट रिमेम्बर कि मैं एक शक्ति.
1: एंड अगेन मेक इट अ बिलीफ सिस्टम, यू नो, मेक इट अ बिलीफ. एक्चुअली
0: यू मेक इट अ बिलीफ, फिर उसके साथ आप एक्सपेरिमेंट करो, और धीरे धीरे इट विल बिकम द ट्रूथ.
1: अगेन यू नो द मोमेंट विल स्टार्ट लुकिंग फॉर, जब भी हमें लगने लगे कि हमें कुछ और चाहिए खुद को कम्प्लीट करने के लिए, खुद को कितनी बार हम कहते हैं ओ माई गॉड आई कैन एक्चुअली रिमेम्बर कि आई वॉन्ट टू फील कम्प्लीट, यू नो आई फील सो इनकम्प्लीट, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अधूरी हूं.
0: जैसे अगर हमारे जीवन से कोई रिश्ता टूट जाए किसी के साथ, तो मैं लगता है हम उनके बिना हम अधूरे हैं. एंड दिस गोज एंड टेक्स मी इनटू अ वैक्यूम.
1: डोंट इवन क्रिएट दैट,
0: यू नो, इट्स नॉट ट्रू, इट विल ओनली कॉज मी पेन.
1: यस, यू नो, लाइक लेट्स ट्राई. ओ माई गॉड, अमेजिंग. द फर्स्ट थॉट टूडे इन द एपिसोड ओनली हैज मेड मी फील वेरी वेरी गुड, यू नो, बिकॉज समवेयर ये जो अधूरापन है यही हमसे बहुत कुछ करवा रहा है.
0: और ये अधूरापन को ही हम कहते हैं वैक्यूम. जो हम कहते हैं ना, अंदर पता नहीं हॉलो फील हो रहा है. हॉलो मतलब क्या? इनकम्प्लीट, अंदर खालीपन है. क्यों खालीपन है? क्योंकि हम बाहर ढूंढ रहे हैं और बाहर ढूंढने के प्रोसेस में सी है कंप्लीट, लेकिन थॉट्स क्या क्रिएट कर रहे हैं, ये होता तो, ये होता तो ये किस तरह की थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स है, ये मेरी एनर्जी को डिप्लीट करती है. आई ओनली हैव टू टेक केयर राइट काइंड ऑफ थॉट्स टू स्टे कंप्लीट एंड फुलफिल्ड. एंड ये जैसे ही हम क्रिएट करना शुरू करते, आई विल फील वेरी वेरी फ्री, लिबरेटेड, इंडिपेंडेंट. फिर होगा राइट मायने में इंडिपेंडेंस के आई एम फ्री. नहीं तो हम हमेशा किसी न किसी पर या किसी न पोजिशन पर, वस्तु पर, धन पर डिपेंडेंट ही रहते हैं. और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात आती है, जो हमने पिछली बार भी देखा, कि क्यों हम फ्यूचर में जाते हैं, क्योंकि वर्तमान में, प्रेजेंट में कोई ना कोई बाधा है, कोई ना कोई परिस्थिति है, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल है, और वो ऑब्स्टिकल मेरे अंदर दर्द क्रिएट कर रहा है. मैं ये समझती हूँ कि वो ऑब्स्टिकल आया तो मेरे अंदर दर्द है, तो मैं क्या करती हूँ, आगे के बारे में सोचना शुरू करती हूँ, तो एटलीस्ट आई विल बी पेन फ्री. बट आई हैव टू बी इन द प्रेजेंट. अब प्रेजेंट में ऑब्स्ट्रक्शन जो आई है उसको फेस करने के लिए मुझे क्या थॉट क्रिएट करना पड़ेगा कि ये एक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है.
1: अच्छा, फेस तो फिर भी करना ही पड़ेगा ना.
0: फेस करना है, फेस करना तो है मुझे, लेकिन फेस कैसे करना है, क्या मैं ऐसी थॉट क्रिएट करूं ताकि वो मेरे को एक ऑब्स्टिकल लगे ही नहीं. सो वी क्रिएट अ थॉट, व्हाट्स इन द वे इज एक्चुअली द वे, इट्स नॉट इन द वे. हम कहते हैं ये मेरे लिए
1: रास्ते में,
0: ये मेरे रास्ते में खड़ा है, ये एक्चुअली मेरे रास्ते में नहीं है, ये ही रास्ता है. व्हाट्स इन द वे इज एक्चुअली द वे. दिस परिस्थिति जो आई है, ये आई है ताकि मुझे एक ऐसा रास्ता लेना. सो लेट्स से दिस इज एन ऑब्स्टिकल, ठीक है. अब हम जा रहे हैं सड़क पे और बीच में एक बहुत बड़ा
1: पत्थर
0: है. अब हम पत्थर को कहकर कहें कि यही पत्थर मेरे रास्ते में खड़ा है और हम रुक जाएं, नहीं. रास्ता ही एक्चुअली कौन सा है, ऐसा है, रास्ता ही ये है.
1: ओह, तो वो पत्थर आया ही मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए.
0: रास्ता ही वो है. हम क्या करते हैं, हम रुक जाते हैं. सपोज रोड डिवाइडर आता, तो व्हाट इज अ रोड डिवाइडर, ऐसे एक रास्ते में बैरियर लगा है, तो हम वहां खड़े हो जाते हैं कि यहाँ बैरियर है, अब हम आगे नहीं जा सकते. नो, वी नो, वी सो वी से व्हाट इज द वे, द वे इज लाइक दिस. सो दैट्स व्हाई वी से इट्स नॉट इन द वे, इट्स देयर सो दैट वी सी द वे. और उससे क्या होता है, हमें रुकना नहीं है, हमें उसके अराउंड रास्ता ढूंढना है कि मेरा रास्ता क्या है. फाइनेंशियल क्राइसिस आया, इट्स नॉट एन ऑब्स्टिकल, इट्स जस्ट कम एंड आई हैव टू लुक फॉर द अदर वे, कि कौन सा रास्ता है आगे जाने का. उससे क्या होगा, मेरी थिंकिंग की क्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. इंस्टेड ऑफ नहीं अब मेरा क्या होगा,
1: यू नो, एक वो हताश होने वाला जो एहसास है वो खत्म हो जाएगा.
0: एब्सोल्युटली.
1: क्योंकि जैसे ही वो पहाड़ की तरह पत्थर आ जाता है सामने, हम फिर भी रास्ता ढूंढ लेते हैं, लेकिन क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा, इससे मुझे जूझना है, तो उसे तो मुझे इग्नोर ही कर सकती हूँ.
0: वो कुछ है ही नहीं, वो जो आया है परिस्थिति, वो तो वही आई ही, वो रहेगी, वो आई ही उसे लिए है ताकि मैं अपनी सोच को एक नई दिशा देकर, उसको एक ऑब्स्टिकल नहीं, उसको एक अपॉर्चुनिटी समझकर. लेकिन उसको अगर एक अपॉर्चुनिटी देखेंगे तब ना, जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी देखेंगे, कैसी थॉट्स चलेंगे, इट विल बी अ डिफरेंट क्वालिटी. एंड दैट्स व्हाई व्हेन लाइक यू से सिचुएशन हिट मी, यू नो दिस हैज हैपेंड टू मी, सो वी विल से नथिंग हैपेंस टू मी, इट हैपेंस फॉर मी. जो भी हुआ, जो भी परिस्थिति आई, छोटी से लेके बहुत बड़ी तक, इट्स नॉट दैट हैपेंड टू मी, इट हैपेंड फॉर मी. क्योंकि जैसे ही परिस्थिति आएगी, इट डिमांड्स अ रिस्पॉन्स, इट डिमांड्स अ रिस्पॉन्स. और ये परिस्थिति ही इसलिए आई है ताकि वो मेरे क्रिएटिव रिस्पॉन्स को और इन्हांस करती है. इस सिचुएशन को आप देखो कितनी परिस्थिति,
1: तो टेस्ट नहीं हो रहा है. हम जैसे जिंदगी को एक टेस्ट बना के रखते हैं ना, कि ये टेस्ट आते हैं, ये मतलब हर उससे गुजरना ही पड़ेगा. ऐसे लगता है कि हम पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन खेल रहे हैं, यू नो, हर्डल रेस.
0: इवन इफ यू लुक एट इट लाइक अ हर्डल रेस, लेट से हम जीवन को उस तरह की एक हर्डल रेस भी करें, तो हर्डल रेस होता है तो क्या आता है, जब वो बैरियर आता है, वो हर्डल आता है, तो हम क्या करते हैं,
1: कूद जाते हैं,
0: थोड़े उधर खड़े हो जाएंगे, ये आया ही मेरे रास्ते में, मेरे भाग्य में ही ये हर्डल है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता. डू वी इवन गिव इट अ थॉट देयर, जस्ट जंप. तो जीवन में हर्डल्स तो आने ही हैं, चाहे वो परिस्थितियों के रूप में आएंगे, कई बार लोगों के रूप में आ जाते हैं, कई बार रिश्तों के रूप में आ जाते हैं. बट अगर हम उस हर्डल को लेकर ही बैठ जाएं, जैसे ही हम उसको हर्डल समझते, सी व्हाट आर वी ट्राइंग टू चेक, वी आर ट्राइंग टू चेक हमारी थॉट्स कैसी चलती हैं, हमारी थॉट ये चलती है, अब मेरा क्या होगा, मेरे भाग्य में, उनका भाग्य तो बिल्कुल ठीक है, उनके साथ तो सब अच्छा।

0: और एंड वी गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग वो तो अच्छे नहीं है लेकिन उनके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो रहा है। मैंने तो जीवन में सब कुछ अच्छा किया, मेरे साथ फिर भी सब बुरा बुरा, क्योंकि मेरे साथ जो हो रहा है मैं उसको कैसा देख रही हूँ, मेरे साथ बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, मेरा भाग्य खराब है। सो व्हाट हैज हैपेंड, मैं हर्डल पर आकर वहां खड़ी हो गई और हर्डल को देखकर मैं गुस्सा करती जा रही हूँ, दर्द क्रिएट करती जा रही हूँ, और ये दर्द जब मैं क्रिएट करती मैं ड्रेन आउट हो जाती हूँ,
1: मैं देख ही नहीं रही, तो मुझ में हिम्मत ही नहीं रह जाती फिर कूदने की भी।
0: एब्सोल्युटली ताकत खत्म हो गई ना।
1: हाँ,
0: हर्डल आया तो उस टाइम एक्चुअली और क्या चाहिए, और भी ज्यादा ताकत चाहिए। अभी तो आप एक स्पीड पर भाग रहे थे, लेकिन जैसे ही हर्डल आया इट रिक्वायर्स एनर्जी टू जम्प, लेकिन जैसे ही ऐसी वाली थॉट्स क्रिएट की, कंपेरिजन की, कॉम्पिटिशन की, क्रिटिसिज्म की, ताकत सारी वहीं खत्म हो गए और हम वहां हर्डल के सामने आकर खड़े हो गए।
1: इनफैक्ट जब रेस एक्चुअली शुरू भी होती है, आई स्टिल रिमेम्बर, कहा जाता है हर पार्टिसिपेंट को कि फोकस ऑन योर यू नो पाथ। ये आई रिमेम्बर दैट यू नो कि हमें कोच क्या कहते थे, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना, जस्ट कॉन्सेंट्रेट यू नो कि आप कहाँ जा रहे हो और आपकी हर्डल्स को कैसे क्रॉस कर।
0: बस अगर आपने सिर्फ अपनी यात्रा पर देखा तो फिर हर्डल को क्रॉस करना बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन जब हमने अपनी यात्रा को एक कंपटीशन बना लिया है, जीवन की यात्रा में हम फ्यूचर में क्या ढूंढ रहे हैं, हम सक्सेस ढूंढते हैं, सक्सेस अचीवमेंट्स, ये होगा तो खुशी मिलेगी, क्योंकि हमने जीवन को कहा इट्स विनिंग एंड लूजिंग एंड सक्सेस इज विनिंग विनिंग विनिंग, तो मुझे सक्सेस चाहिए सक्सेस। और थोड़ा सा भी अगर वो नहीं हुआ जो राइट मुझे लगा के होना चाहिए, आई कॉल दैट एज फेलियर। जैसे ही फेलियर आया आई गो चिक। सो वाई? बिकॉज आई क्रिएटेड अ बिलीफ सिस्टम, लाइफ इज अबाउट विनिंग एंड लूजिंग, इट्स अबाउट कॉम्पिटिशन, कौन आगे जा रहा है, किस। ये सारे बिलीफ सिस्टम्स मुझे क्या करेंगे, ड्रेन आउट ही होते रहेंगे। सक्सेस क्या है? सक्सेस इज अबाउट फीलिंग वेरी लाइट, ब्यूटिफुल एंड स्टेबल, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, दैट शुड बी सक्सेस। क्योंकि सक्सेस किसका सक्सेस है? माई सक्सेस, हु एम आई। सो वो जब समझ में आ जाएगा तो ये सारी चीजें जो हमने क्रिएट की थी ये हमारे लिए ऑब्स्टिकल नहीं बनेंगे। नहीं तो आज सक्सेस के नाम पे हम बहुत ज्यादा यू नो ये दर्द से, स्ट्रेस से, गुस्से से, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल। एंड सक्सेसफुल की डेफिनेशन क्या? When I achieve
1: winning
0: this, when I achieve this, that's not success. इतना दर्द क्रिएट किया इन द प्रोसेस, इतने लोगों के साथ इतना कुछ हो गया ऊपर नीचे और पहुंच गए वहां पे, really going to feel successful at the end of it? It's not going to happen. So the right belief.
1: Actually, फिर वही होता है कि फिर आपका वो सक्सेस को पाने का दूसरा मरहला जो है आपने तय कर लिया होता है फिर।
0: ये नहीं है कि हमें वो चीजें जो हैं, जो औहदे हैं, जो पोजिशन है, वो सब हैं, आएंगी और आती ही रहेंगी, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? सक्सेस अगर अपने आप को कहना है तो सक्सेस विल बी कि हर परिस्थिति में हम स्टेबल हैं, हर रिश्ते में हम दे रहे हैं, हरेक जिसको हम मिल रहे हैं उसके साथ हमारा इंटरेक्शन बहुत पॉजिटिव एनर्जी का है, देन वी कैन कॉल आर सेल्फ सक्सेसफुल। क्योंकि मैं जो हूं वो जो मेरी शक्ति है, जो जो मुझे मिलता जा रहा है उसके साथ मैं वो शक्ति एक्सचेंज करते जा रही हूँ, देन आई एम सक्सेसफुल। सो वी नीड टू चेक आर बिलीफ सिस्टम्स। और जो हम पास्ट में बहुत बार हर्ट हो जाते, दैट दे हर्ट मी, यू नो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें धोखा दिया है। कभी भी अगर बैठकर सोचो किसने मुझे धोखा दिया, किसने मुझे हर्ट किया, तो एक लंबी लिस्ट आ जाती। तो इसके लिए हम हमेशा याद रखते कि इट्स नॉट दे हु हर्ट अस, किसी ने हमें हर्ट नहीं किया, उन्होंने जो कहना था वो कहा, जो करना था वो किया, इवन चाहे वो बिजनेस में बहुत बड़ा था या चाहे वो रिलेशनशिप में, उन्होंने किया, मैंने
1: क्रिएट किया वो हर्ट
0: उस सिचुएशन में, जो जो क्रिएट किया, आई क्रिएटेड माई हर्ट। इफ आई रिमेम्बर दिस देन द कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट हर्ट वी कैन मेक अप।
1: अपने आप को तो हम आराम से माफ भी कर पाएंगे, लेकिन एक बात है कि मतलब जब कोई कहता है कि उसने मुझे ये कह दिया, मतलब मैं उसके लिए क्या था और उसने मुझे ऐसे किया, आई कैन अंडरस्टैंड कि उसकी कही हुई बात से मैं वो हर्ट क्रिएट करती हूँ, लेकिन वो इतना फास्ट होता है।
0: लेकिन वो देखो कहा उसने ना, वो यहां है, उन्होंने कहा अपने दृष्टिकोण से, अपने पर्सपेक्टिव से जो भी राइट समझा। अब हम कहते हैं कि ऐसे तो नहीं कहना चाहिए था ना, यू नो सो मेनी टाइम्स

0: way for me to learn the way. ये कोई obstacle नहीं है. और ये it has not come to me, it has come for me to learn how to create the response. और दूसरा success की जो परिभाषा है वो है stability and exchange of right energy in relationships, and कोई मुझे hurt नहीं कर सकता. No one can hurt me. तो जिन जिन को आज दिन तक समझा था एक एक करके उनको हल्का होकर जाने दे, and then you see happiness कैसे हो जाएगी.
1: Becomes your property actually, and this is what we all want. So why don't we try it out? जो आज अभी हमने जो इनफैक्ट अगर आपको इस श्रृंखला की शुरुआत याद हो तो हमने बात की थी कि जो हमारी फीलिंग है हैप्पीनेस की हम बात कर रहे थे, इधर हैप्पी और सैड. सो हैप्पीनेस भी एक फीलिंग है, सैडनेस भी एक फीलिंग है, और वो मेरे थॉट्स या मेरे बिलीफ सिस्टम्स से आ रही थी. कहीं ना कहीं ये जो बिलीफ सिस्टम था पूरा का पूरा कि मैं इनकम्प्लीट हूं, मुझे कुछ चाहिए कम्प्लीशन के लिए, या मेरा सक्सेस या मेरी अचीवमेंट या मेरे वो व्यक्ति या वो लोग या मेरे अपने बच्चे भी. कितनी बार कितनी चीजों पर हम खुद को कम्प्लीट होने का एहसास दिलाते हैं अगर वो हैं तो ये डिपेंडेंसी है. अगर मैं कम्प्लीट हूं ये फीलिंग मुझे आ जाए, ये मेरा बिलीफ बन जाए कि आई एम अ कम्प्लीट बींग एंड देन आई एम इंटरेक्टिंग विद अदर्स, अमेजिंग, इट्स गिव्स मी सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग. और ये हैप्पीनेस का सबसे आई थिंक पहला पायदान होगा. और उसके बाद जिस तरह से कोई भी ऑब्स्टिकल आ रही है, जैसे आपने कहा कि उसे हम एक इट हैज नॉट कम टू मी, इट इज फॉर मी, सो आई हैव टू लुक फॉर द राइट डायरेक्शन. तो कई सारी बातें आज हमने समझी हैं, उन्हें अनुभव में लेकर आए. ये बिलीफ सिस्टम अपनी अब डायरी में हम नोट करना शुरू कर दें और हर रोज पढ़ने लग जाएं, ताकि जो पुराने बिलीफ सिस्टम हैं वो डिलीट होने शुरू हो जाएं. कोई बात, कोई मन में आपकी बात ऐसी है जिसको आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई बिलीफ सिस्टम है जो डिलीट नहीं हो पा रहा, प्लीज फील फ्री, आप हमें फोन करें या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. सर शिवानी, थैंक यू सो मच आज की इस पूरी बातचीत के लिए. ओम शांति. अब इतनी ही ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि ये जो पूरा प्रयास है ये आगे भी चलेगा. हर बात जो हम कह रहे हैं, जो मान रहे हैं, उसे अपने अनुभव में जरूर लाएं. फिर मिलेंगे. I'm Shanti.

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुणे रिया आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते, मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन, आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: अनुराधा, ओ अनुराधा, क्यों री पगली? अरे इस तरह रोने से क्या होगा? ओ तुम आंसू पोंछ रही हो, मगर मुझे हिचकियों की आवाज तो सुनाई दे रही है। अच्छा सुनो, तुम्हें एक कहानी सुना, बहुत दिन हुए

मगर सबसे ज्यादा दुख जानती हो किसे हुआ था? अनुराधा जैसी एक राधा थी, बिचारी बिचारी रो रो कर कहती थी।

चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुणे की आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। मेडिटेशन को जब सही परिपेक्ष में समझा जाना और ये भी जाना कि किस तरह से उससे पहले का जो फाउंडेशन है वो बहुत जरूरी हो जाता है और जो भी थॉट्स आना चाहते हैं उन्हें आने देना चाहिए। एक साक्षी भाव से अगर हम उन्हें देख पाते हैं तो फिर मेडिटेशन का जो रास्ता है वो आसान हो जाता है, क्लैरिटी आ जाती है। आज हम इसे जरूर सबने थोड़ा थोड़ा अनुभव किया होगा क्योंकि एक लॉन्ग प्रोसेस है, काम करते करते ही होगा। लेकिन अब आगे सवाल ये उठता है कि एक बार जब वो महसूस होने लग गया, वो एहसास कि मैं एक पीसफुल सोल हूं या मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, तब उसे जीवन में जब दिन भर हम साथ रहेंगे तब कैसे उसे इम्प्लीमेंट करना है और उसका क्या लाभ हमें अपने दिनचर्या में मिलना चाहिए, इसी पर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। और इसे बात करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, पिछली कड़ी के बाद अब ये क्लैरिटी हो गई कि मेडिटेशन से पहले जो क्लिंजिंग प्रोसेस है, जो बेस है, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद ही एक्चुअली इन द रियल सेंस जो हम अभी तक बात करते आ रहे हैं कि क्या अनुभव होना चाहिए, उसका थोड़ा थोड़ा एहसास होना शुरू हुआ है। अब ये एहसास दिख भी रहा है कि और गहरा होगा, समझ में आएगा, योग भी लगेगा। दिन भर क्या होगा फिर?
1: अब एक बार हमने मॉर्निंग में अपनी तैयारी कर ली तो हमें साथ साथ ये भी थोड़ा सा अटेंशन रखना पड़ेगा कि दिन भर हमें वो स्टेज को मेंटेन करके रखना है। क्योंकि एक है प्रेपरेशन, जैसे अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज तो कर आएंगे लेकिन फिर सारा दिन में भी तो ध्यान रखेंगे ना कि आप क्या खाते हैं, राइट? अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया सारा दिन तो वो मॉर्निंग के एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं देगी। वो आपको फिटनेस देगी, सारा दिन में फिर जंक खाएंगे, या वो आपके वेट को कम करेगी, सारा दिन में फिर अगर बहुत ज्यादा फैटनिंग खाना खाएंगे तो फिर वेट बढ़ जाएगा, तो मोर और लेस फिर उधर ही पहुंच जाएंगे। तो और अगर सारा दिन में ध्यान नहीं दिया तो कुछ दिनों के बाद लगता है कि कोई परिवर्तन तो आ ही नहीं रहा, मेरे अंदर तो कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसलिए प्रोसेस ठीक है लेकिन फिर मुझे उसके ऊपर सारा दिन में भी ध्यान देना है कि यहां से चार्ज किया तो सारा दिन उस चार्ज को मेंटेन करके रखना, ये नहीं कि छोटी छोटी बातों में उसको गवा देना, लीकेज नहीं होनी चाहिए बार बार। जब हम इस स्थिति में आ जाते हैं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं या मैं एक आत्मा हूं, प्योरिटी, वो जब आ जाती तो डिस्टर्बेंस खत्म हो जाती है, इमोशनल डिस्टर्बेंस, क्योंकि डिस्टर्बेंस इसी वजह से थी, ये भूल गया कि मैं कौन हूं, तो हर्ट बहुत जल्दी हो जाते थे। और जब ये स्थिति बन जाती है तो सारा दिन में कई ऐसे पहलू हैं जिस पर हमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, जिसमें हम अपने आप में पहले में और अभी में बहुत ज्यादा अंतर देख पाएंगे। सारा दिन में जो भी सिचुएशंस आती या जितने भी लोगों से हम मिलते हैं तो हम उनको जिस तरह से देखते हैं

0: या जिस तरह से उनकी बात को सुनते हैं और समझते हैं, तो हमारे सुनने और समझने के लिए या हमारे देखने के लिए एक फिल्टर बीच में आ जाता है, जिसको हम कहेंगे हमारा परसेप्शन, मेरा दृष्टिकोण। और मैं हरेक को उसी दृष्टिकोण से देखती हूँ, है ना। आप चाहे कैसे भी हो, लेकिन मेरे अंदर जो आपका इमेज क्रिएट होगा वो इस फिल्टर को पास करके होगा, विच इज माई परसेप्शन। एंड मेरा परसेप्शन किस आधार पर बना है? मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस और मेरा बिलीफ सिस्टम, मेरी मान्यताएं क्या है, और मैंने पास्ट में आपके बारे में क्या क्या सुना है।
1: तो मैं ये सोचती हूँ आपके बारे में कि आप एक बहुत गुस्से वाली हैं, या आप एक हर तरह से ऐसी बात सिचुएशन क्रिएट करती हैं, या आप हमेशा नाराज ही होंगे। सो वही परिप्रेक्ष्य है।
0: तो अब क्या होगा कि क्योंकि ये फिल्टर बीच में आ जाता है, और क्योंकि ये फिल्टर बना है पास्ट एक्सपीरियंसेस से और बिलीफ से, मतलब कहीं ना कहीं ये फिल्टर का आधार पास्ट है, बीती हुई बातें। अब मुझे जो इवैल्यूएट करना है और कर्म करना है, डिसीशन लेना है, वो मेरा अभी का प्रेजेंट और मेरा भविष्य बनाएगा। लेकिन ये प्रेजेंट और भविष्य, फ्यूचर, इस पास्ट से कलर्ड होने लग जाता है, क्योंकि वो इस फिल्टर के थ्रू हरेक को देख रहा है। तो आप, मेरा परसेप्शन इज लाइक ग्लासेस जो मैंने पहने हैं। तो अगर मैंने ग्रीन कलर के ग्लासेस पहने हैं, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ आपने कोई भी कलर की ड्रेस पहनी हो, मुझे उसमें ग्रीनिश शेड ही दिखाई देगा। ईच वन ऑफ अस इज गोइंग थ्रू चेंज, हम हर रोज परिवर्तन हो रहे हैं। लेट्स से कि आपके अंदर अगर गुस्सा करने की आदत है, लेकिन नाउ यू आर ऑन अ जर्नी, आप एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, आप रोज मेडिटेशन कर रहे हैं, आपके संस्कारों में इतना परिवर्तन आ रहा है, लेकिन मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये है कि आप गुस्से वाले हैं। अब इफ आई एम नॉट एबल टू लुक एट यू हाउ यू आर नाउ, देन इवन दो यू हैव चेंज्ड, फॉर मी यू हैव नॉट चेंज्ड, एंड दैट्स वेरी डैमेजिंग फॉर मी,
1: बिकॉज यू हैवंट इवन अंडरस्टूड द राइट टू बी।
0: आई एम नॉट लुकिंग एट यू एज यू आर, आई एम लुकिंग एट यू थ्रू दैट फिल्टर ऑफ माई परसेप्शन, एंड माई परसेप्शन सेज कि आप गुस्से वाले। तो उससे क्या होगा कि भले आपके अंदर चेंज आया है, लेकिन मेरा दृष्टिकोण वही है, नहीं ये तो गुस्से वाले हैं। तो आज आप कुछ भी करें, मैं फिर भी आपको उसी दृष्टिकोण से देखूं। मैं आगे के भविष्य के बारे में जो सोचूं, उसी दृष्टिकोण से अगर सोचूं, तो कितना डैमेजिंग है, क्योंकि आप तो वो है ही नहीं।
1: और बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये कि सिर्फ व्यक्तियों के साथ ही नहीं, इवन सिचुएशन के साथ हम ऐसा करते हैं। ये सिचुएशन आएगी तो उसको ऐसे ही हैंडल कर, इसमें कहीं ना कहीं हमारी इनोवेशन भी खत्म हो रही है,
0: क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। वो फिल्टर लगाने के कारण हम हर सिचुएशन को अपने बिलीफ सिस्टम के अनुसार ले लेते थे। तो बाहर परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, या व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, हम उसको मोल्ड करके अपने बिलीफ सिस्टम के अनुसार अंदर फिट कर लेते थे कि नहीं, इन्होंने तो ऐसा ही किया होगा, या ये तो है ही ऐसे, भले वो चेंज हो गया है। तो अब जब मैं वो स्थिति मेंटेन कर सकती हूँ कि आई एम अ पीसफुल सोल, देन दैट परसेप्शन, दैट फिल्टर विच इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ पास्ट बिलीफ, दैट ड्रॉप्स। एंड मैं हरेक को, जो आपने कहा क्लैरिटी, वो क्लैरिटी क्यों आएगी? क्योंकि वो डिस्टोर्शन खत्म हो गई है। जब इमोशनल डिस्टर्बेंस है अंदर, तो वो डिस्टोर्शन है, वो सब वो परसेप्शन से क्रिएट हो रहा, लेकिन अब एकदम क्लैरिटी। तो आप जो हैं, जैसे हैं, मुझे वैसे ही दिखाई देंगे। मैं अपने पास्ट को अपने फ्यूचर पर इन्फ्लुएंस नहीं हो रही।
1: बट हम हमेशा ये कहते हैं कि मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है, सो मेनी टाइम्स एक्चुअली वी,
0: इसीलिए हमारे साथ कुछ नया नहीं होता, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये थॉट अंदर डाल दिया कि मेरे साथ तो ऐसा ही होने वाला है, या मेरे साथ तो होता ही नहीं है कुछ ठीक से, या मुझे तो जॉब मिलती ही नहीं है, या मेरे से तो वो ठीक से बात करते ही नहीं है। तो व्हाट हैव आई डन, आई हैव फिक्स्ड कि पास्ट में ऐसा हुआ था तो फ्यूचर भी ऐसा ही होगा। तो उसके लिए यहाँ के डिस्टर्बेंस को फिनिश करें, एक दिन के लिए सिर्फ, जस्ट ट्राई दिस आउट फॉर वन डे। हर एक को सिर्फ एक दिन के लिए एक्सपेरिमेंट करना है कि अपने माइंड और इंटेलेक्ट को इस पीसफुल स्थिति में रखना है। और उसके लिए क्या करना है, अगेन द सेम थिंग, नो जजमेंट, नो क्रिटिसिज्म। हर एक जो है, जैसा है, जो कर रहा है, उसको उस एक दिन के लिए जैसा है वैसे स्वीकार कर ले।
1: इट्स एक्चुअली वेरी, इट्स वंडरफुल। व्हाई? बिकॉज एक नया एंथुसियास्म, जो न्यूनेस की हम तलाश करते हैं, तो उन्हीं लोगों के साथ हर सिचुएशन, हर मीटिंग एक नया एक्सपीरियंस होता है।
0: एक्चुअली
1: दैट्स गुड, कीप ऑन लुकिंग फॉर दैट न्यूनेस,
0: एंड इट इज न्यू बिकॉज हर

0: स्थिति भी सारी डिस्टर्ब दिखाई देती है। स्थिति स्टेबल होगी वो बड़ा से बड़ा क्राइसिस ऐसे हो जाएगा, एकदम स्टेबल आ जाएगा। तो डोंट लूज योर काम दैट टाइम। तो वो जो सुबह में किया होगा मेडिटेशन और वो स्थिति की प्रैक्टिस और सारा दिन में अटेंशन, उसको ऐसे टाइम पे यूज करना है। डोंट फॉरगेट इट एट दैट टाइम।
1: सिस्टर शिवानी, इसमें बात करते करते मुझे एक बात सामने आई है कि व्हेन आज के अगर दौर में देखते हैं तो वी आर ऑल लुकिंग फॉर मिरेकल्स।
0: दिस इज मिरेकल,
1: दिस इज मिरेकल। यू नो, हम देखें तो कि परिस्थिति के ऊपर हम हावी होंगे, यू नो, स्थिति हावी हो जाती है, हम किस स्थिति में हैं, क्योंकि परिस्थितियां तो फिर अपने उस हिसाब से बदल जाएंगी। इट्स वंडरफुल एक्चुअली।
0: एंड तब क्या होगा, हमें दिखाई देने लगेगा धीरे धीरे कि हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में है। अभी ऐसे लगता है कि कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज आई गेट स्वेड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, आई गेट कैरिड अवे अकॉर्डिंग टू द पीपल, बट व्हेन आई एम एबल टू मेंटेन दैट एंकर इनसाइड, देन आई हैव दैट मास्टर ऑफ द सिचुएशन। एंड ये है स्वराज्य फिर, और ये इतना सहज है, और इसकी टेक्निक जब सीख ले तो इसको कभी भी कहीं भी कितनी भी बार दिन में यूज कर सकते हैं। तो लाइफ कैसी होती जाएगी, वेरी स्ट्रीमलाइंड होती जाएगी, बहुत स्मूथ होती जाएगी। और तीसरा जो हमें ये स्थिति हेल्प करती है वो है प्रोटेक्शन। आई एम अ पीसफुल सोल, इसको जब हम इस स्थिति में अनुभव कर लेते और इसको स्टेबलाइज कर लेते हैं तो ये हमारे लिए एक प्रोटेक्शन का बहुत बड़ा काम करती है। आज दिन तक क्या होता था कि जब भी हमें कोई क्रिटिसाइज करता, हम तो लोगों को क्रिटिसाइज करते थे, जजमेंट पास करते, लेकिन लोग भी तो हमें क्रिटिसाइज करते। अब हम तो शायद बंद कर दें, लेकिन सब लोग तो नहीं बंद करने वाले हैं,
1: और वो हर्ट हम लेते जाते हैं।
0: तो किसी ने हमें क्रिटिसाइज कर दिया, किसी ने हमें इंसल्ट कर दिया, किसी ने सबके सामने कुछ ऐसा कह दिया, तो नेचुरल संस्कार बन गया था हर्ट का। तो हर्ट मतलब कि मेरे आसपास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, आपने कोई ऐसी एनर्जी फेंकी, नेगेटिव एनर्जी आपने फेंकी और वो एनर्जी ने मेरे ऊपर अपना प्रभाव डाल दिया। तो वेन एवर आई फील हर्ट, अगर मुझे बुरा लगता है किसी की इंसल्ट से या किसी की क्रिटिसिज्म से, तो उस समय अंदर क्या चल रहा है, सबसे पहले ये याद रखना होगा, मैंने क्रिएट किया ये ये हर्ट मैंने क्रिएट किया है।
1: हम हर्ट के लिए तो कभी भी खुद को नहीं कहते, हम हर्ट तो इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम द अदर एंड एक्चुअली,
0: बट एक्चुअली नॉट। नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि आपको जो बोलना है बोलिए, आपको जो करना है करिए, मुझे कैसा फील करना है वो मेरे हाथ में है। लेकिन जब बुरा लगता है कोई बात नहीं, उस समय अपने आप को याद दिलाएं, ये हर्ट मैंने क्रिएट किया। ये हर्ट क्यों क्रिएट हो गया, क्योंकि मेरी प्रोटेक्शन वाले लेयर नहीं थे। ये पेन मैंने क्रिएट किया, मैं पेन नहीं हूँ, मैं दर्द नहीं हूँ, ये दर्द मैंने क्रिएट किया और इसीलिए मैं ही इसको
1: सॉल्व
0: फिनिश कर सकती हूँ। सारा दिन में हम एक रेडिएटर की तरह हैं कि हम जो कुछ यहाँ सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, इट इज ट्रांसमिटिंग टू एवरीवन अराउंड मी। तो अंदर अगर यहाँ बहुत नेगेटिविटी है, बहुत दर्द है, बहुत दुख है, तो हम जहां जाएंगे, जिनसे मिलेंगे, उनको वो वाइब्रेशंस हमसे आती जाएगी। और अगर सबको ये वाइब्रेशन मुझसे आए कि मैं बहुत कमजोर हूं, तो क्या होगा, लोगों को पता चल जाएगा कि ये तो बहुत कमजोर है, इनको टेक ओवर करना तो बहुत इजी है। तब उनको पता चल जाता है कि कुछ भी थोड़ा सा बोला तो ये तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। एंड दैट्स व्हेन आई बिकम वेरी वल्नरेबल। अगर हम मॉर्निंग में जब मेडिटेशन कर रहे हैं एंड आई क्रिएट दिस थॉट, ये थॉट मेरे अराउंड एक ऑरा क्रिएट कर देंगे, क्योंकि एवरीवन इज वॉकिंग विद एन ऑरा। एंड अब अगर मेरा ऑरा स्ट्रेंथ का है, पॉजिटिविटी, पहले था वरी का, नेगेटिविटी का, तो वो वीक ऑरा था, कोई भी आता तो मुझ पर अटैक कर लेता। लेकिन अब जो ऑरा है वो प्योरिटी और पॉजिटिविटी का है, तो अब सामने से कोई मुझ पर अटैक नहीं कर सकता है, दैट्स फॉर श्योर। आप अपना नेगेटिव एनर्जी फेंकेंगे, लेकिन मेरे अराउंड वो शील्ड बने हुए हैं। आज एक दिन में प्रैक्टिस भी इसको करके देखें कि कभी भी अगर, क्योंकि सारा दिन में कोई ना कोई एक मिल जाएगा जो इस तरह से कोई तीर फेंकेगा क्रिटिसिज्म का, तो जब कोई ऐसा तीर फेंक दे तो तुरंत से अपने अराउंड याद रखें कि मेरे पास एक प्रोटेक्टेड शील्ड है। तो वो जो तीर आप फेंकेंगे सामने से, अपना कुछ भी जो आपने बोला होगा, वो तीर यहाँ आएगा, शील्ड को हिट करेगा और फिनिश हो जाएगा। और उल्टा मैं आपकी तरफ अब एक बहुत अच्छा सा तीर फेंक सकती हूँ, विच इज अ प्योरिटी एंड पॉजिटिविटी।

0: आपके अंदर की भी जो नेगेटिविटी है वो भी धीरे धीरे धुलती जाएगी.
1: क्योंकि एंड आई डोंट इवन हैव टू स्पीक इट, यू नो, लाइक इट जस्ट गोज,
0: इट डजंट हैव टू बी सेड, इट डजंट हैव टू बी सेड एट ऑल. सो वी बिकम वेरी प्रोटेक्टेड. तो अभी जो हमें डर और इनसिक्योरिटी है सारा दिन में, क्योंकि अभी इनसिक्योरिटी इसलिए क्योंकि कोई भी हमें अटैक कर ले, बट आई हैव टू फर्स्ट प्रोटेक्ट माई सेल्फ. हम ज्यादा क्या सोचते हैं, उसको सुधारना या उसको बताना कि उसने मुझे हर्ट किया. इस टाइम वो इम्पोर्टेंट नहीं है. पहले अपनी सुरक्षा, जब कोई अटैक करता है तो पहले अपनी सुरक्षा देखी जाती है, ना कि अटैकर को बाकी समझाया जाता है कि आपको अटैक नहीं करना चाहिए था. पहले अपने आप को तो प्रोटेक्ट कर ले. सो दैट मेडिटेशन एंड दैट पावरफुल पीसफुल स्थित, दैट गिव्स मी दैट प्रोटेक्शन लेयर एंड दिस कैन स्टे विद मी थ्रू आउट द डे. और ये स्थिति एक और मुझे बहुत हेल्प करती जब और लोग दुखी होते हैं. कोई और परेशान है, अपसेट है, दुखी है, तो अभी तक क्या होता, मैं भी उनके साथ दुखी हो जाती. अब क्या होगा कि इफ आई एम इन दैट स्टेज कि आई एम अ पीसफुल बींग, नाउ आई कैन गिव दैट टू यू. तो आप दर्द में हैं, अब मैं आपके पास आकर वो दर्द को नहीं डिस्कस करूं या वो दर्द में ही ना बह जाऊं, लेकिन मैं वो थॉट्स क्रिएट करूं तो आपको भी वो वाइब्रेशंस मुझसे मिलेंगे जिससे आप उस दर्द से बाहर निकल सकते हैं. एंड दैट विल बी वेरी एम्पावरिंग. अभी तक हम सिंपथाइज करते थे तो हमें लगता था कि वो सही तरीका है चलने का, कि नहीं वो दर्द में है तो मुझे भी दर्द में होना चाहिए. लेकिन वो ऑलरेडी दर्द में है, उसे दर्द की नहीं जरूरत है, उससे उसका एंटीडोट चाहिए.
1: और इनफैक्ट उस टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि वो हमारा दर्द उसके जो एक्चुअल दर्द में है उससे ज्यादा बड़ा हो जाता है,
0: क्योंकि बहुत स्ट्रांग अटैचमेंट है ना, तो वो और ज्यादा हो जाता है. तो हमें तो उस समय उसकी मदद करनी है, हमें उसे वो गिफ्ट देना है. हम क्या गिफ्ट दे सकते हैं किसी को, कोई दर्द में है, हम उस समय क्या दे सकते हैं?
1: पीस दे सकते हैं.
0: लोग कहते हैं मेरा कंधा है, आप रो लीजिए, आई हैव अ शोल्डर फॉर यू टू क्राई. बट नो, व्हाई आर वी इनकरेजिंग देम टू क्राई? दे वांट पावर, दे वांट पीस एट दैट टाइम. डू आई हैव दैट टू गिव इट टू देम? सो इफ आई हैव दैट, आई विल बी एबल टू गिव दैट टू एवरीवन.
1: आई विल क्राई विद यू, यू नो, ये कहा जाता है. समवेयर आई थिंक
0: व्हाट्स द बेनिफिट? अभी एक जना रो रहा था, अभी दो जने रो रहे हैं, एंड वेरी सून बहुत सारे लोग साथ में रो रहे हैं. हु विल pull them out of that at that time? I can be the one. Why? Because I have that. Sabko jo chahiye wo mere paas agar hai, kyunki maine Parmatma se shakti boli hai. I can give that to everybody else.
1: Very beautiful. बहुत सुंदर. मतलब पूरा एहसास ही कहीं ना कहीं हमारे परसेप्शन को चेंज करता है, और जिंदगी का जो पूरा दिन भर में जो है, जो हमारे वही हर बार रॉन्ग बिलीफ के साथ जो जी रहे होते हैं वो बदल जाते हैं. आज की इस पूरी बातचीत के लिए सत शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया. ओम शांति. और भी बहुत सी बातें हो सकती हैं जो आपके पास हों, आपको खुला निमंत्रण देते हैं. आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं.
2: हमारे फोन नंबर है 09999344555, 09999344666, 09873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com.
1: अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी का ये सफर यूं ही चलता रहेगा. आने वाली कड़ियों में फॉरगिवनेस पे बात करेंगे कि सचमुच क्षमा को सही परिप्रेक्ष्य में कैसे देखें. अब दीजिए इजाजत. ओम शांति.

0: पकड़ना
1: पाए।
2: ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँ रे।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई, अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा, अब ईंट का जवाब किससे भेजें?
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, जिंदगी की भागदौड़ में हम खुद का ध्यान रखना भूल जाते हैं। सारा दिन हम दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों को खुश रखने के लिए जीते हैं, पर खुद को खुश रखना भूल जाते हैं। जिंदगी की भागदौड़ में जब सेहत बिगड़ने लगती है, जिनके लिए सारी जिंदगी दे दी वो तो कभी खुश होते नहीं। ना अपेक्षाएं खत्म होती है और ना इच्छाएं। जब अपने आप को खोकर दूसरों को बनाने की कोशिश करते हैं तब कुछ भी हासिल नहीं होता। जिंदगी में हर किसी के कभी न कभी एक मोड़ ऐसा जरूर आता है जब इंसान सब कुछ खोने के बाद खुद को देखता है कि जिनके लिए सारी जीवन दे दी वो तो खुश हुए नहीं। उनकी इच्छाएं अपेक्षाएं तो बढ़ती ही गई, कभी पूर्ण नहीं हुई। सब कुछ करते हुए हम खुद से मिलना, खुद की सेहत पर ध्यान देना, खुद से प्यार करना, खुद को सम्मान देना भूल जाते हैं। हमें लगता है कि कोई और ये सब हमारे लिए करेगा, लेकिन जब हम खुद ये सब हमारे लिए नहीं कर रहे तो औरों से क्या अपेक्षा रखना। जब हम खुद अपना ख्याल रखना छोड़कर सबका ख्याल रखने की कोशिश करते हैं तब दिन ब दिन अपनी सेहत, अपनी खुशी, अपनी शांति को भी खो देते हैं। हमें लगता है कि कोई और हमारी देखभाल करेगा, कोई और हमसे प्यार करेगा, कोई और हमें इज्जत देगा, लेकिन ये सब कुछ हम खुद के साथ क्यों नहीं करते। हम अपने आप में परिपूर्ण क्यों नहीं बनते। क्यों हमें इज्जत किसी और से चाहिए, क्यों हमें प्यार किसी और से चाहिए, क्यों हम चाहते हैं कि हमारी सेहत की देखभाल कोई और करे। ये सब हम अपने लिए क्यों नहीं करते। क्यों हम खुद को खोकर, खुद को भूलकर

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन। आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ।

अपने आत्मिक स्थिति में टिकना यही सारे दुखों से मुक्ति का मार्ग है। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियाँ बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने

प्रोग्राम में, जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, इस कलयुग में हम जिस चीज को भी पकड़ कर रखेंगे वही बात हमें दुख देगी। अपने नाम को पकड़े रहेंगे तो कभी किसी ने हमारी बुराई की तो दुख होगा। अपने मान को पकड़े रखेंगे तो कभी किसी ने अपमान किया तो दुख होगा। अपनी इमेज को पकड़े रखेंगे और किसी ने निंदा की तो दुख होगा। भूतकाल को पकड़े रखेंगे तो भूतकाल की कड़वी बातों से दुख होगा। भविष्य की चिंता को पकड़े रखेंगे तो भी दुख होगा। किसी व्यक्ति के प्रति नाराजगी पकड़ कर रखेंगे तो भी दुख होगा। किसी की कोई कड़वी बातें दिल में पकड़ कर रखी तो दुख होगा। किसी का स्वभाव संस्कार का कठोरपन दिल में पकड़ के रखने से दुख होगा। किसी भी बात का भय हमें दुखी कर सकता है। इच्छाओं को पकड़ कर रखना और वो पूरी नहीं हुई तो दुखी होना। दूसरों के प्रति अपेक्षाएं पकड़ कर रखी तो दुख होता है। और फिर दुखी होकर हम परमात्मा को कहते हैं दुखों से छुड़ाओ, लेकिन परमात्मा कहते हैं छोड़ो तो छूटो। परमात्मा कहते हैं अपने आप से पूछो, छोड़ो तो छूटो। यह पाठ पक्का किया? छोड़ो तो छूटो यह पाठ सदा याद रहा? वह दूसरों ने दुख देना छोड़ा तब दुखी होना छोड़ेंगे? परमात्मा कहते हैं कि जब परमात्मा दुखों से छुड़ाए तब मैं दुखों से छूटूं, ऐसा पाठ तो नहीं पढ़ लेते हो? किसी भी दुख की डाली को अपने बुद्धि रूपी पांव से पकड़ के तो नहीं बैठे हो? किसी भी पुराने स्वभाव संस्कार व किसी भी शक्ति की कमी होने के कारण, निर्बल होने के कारण दुखों की डाली पर ही तो नहीं बैठ गए हो? हर बात में छोड़ो तो छूटो यह बात प्रैक्टिकल में लाते हो? परमात्मा कहते हैं यही नहीं सोचो कि दूसरे मुझे दुख देना छोड़े तो मैं दुखों से छूटूं, संबंधी छोड़े तो मैं दुखों से छूटूं, विघ्न डालने वाले विघ्न डालना छोड़े तो मैं दुखों से छूटूं, भिन्न भिन्न परिस्थितियां मुझे छोड़े तो मैं दुखों से छूटूं, यह कभी नहीं सोचना। सदा स्वयं दुखों को छोड़ना तो स्वयं दुखों से छूट भी जाओगे। परमात्मा कहते हैं हर बात में, चाहे स्वभाव परिवर्तन में, संस्कार परिवर्तन में, एक दो के संपर्क में आने में, परिस्थितियां या विघ्नों को पार करने में स्वयं को छोड़ो तो छूटो यह पाठ पक्का किया? परिस्थिति आपको नहीं छोड़ेगी, आपको परिस्थिति को छोड़ना पड़ेगा। दूसरी आत्माएं संस्कार के टकराव में भी आती है तो भी यही सोचो कि मैं छोड़ूं तो छूटूं, यह टकराव छोड़े तो मैं दुखों से छूटूं, यह नहीं सोचना। अगर यह छोड़े तो छूटूं होगा तो टकराव समाप्त होकर फिर दूसरा शुरू हो जाएगा। कहां तक इंतजार करते रहेंगे कि दूसरे हमें दुख देना छोड़े तो मैं दुखों से छूटूं? परमात्मा कहते हैं दुखों की भिन्न भिन्न डालियों को हमें ही छोड़कर उड़ता पंछी बनकर परमात्मा के समीप का अनुभव करना है, परमात्मा को अपने पास बुलाना है।

उनकी समीपता का अनुभव करना है। जब तक हम दुखों की अलग अलग डालियों को पकड़े रहेंगे तब तक हम दुखों से छूटेंगे नहीं। छोड़ना हमें है क्योंकि पकड़ा भी हमने है। श्रुते हो अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है, और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, परमात्मा कहते हैं पेपर तो आने ही हैं, भिन्न भिन्न परिस्थितियों के पेपर जीवन में आने ही हैं। जब पेपर आते हैं तो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूपों से आते हैं, लेकिन हमें पेपर में पास होना है। मैं पढ़ूंगी तो पास होंगी, या टीचर पेपर हल्का करे तो पास होंगी। परमात्मा कहते हैं क्या करना पड़ता है, मैं पढ़ूं तो पास हूं, यह ठीक है ना? ऐसे ही यहां भी सभी बातों को मैं स्वयं पास कर जाऊंगी, फलाना व्यक्ति पास करे यह नहीं, फलानी परिस्थिति पास करे यह भी नहीं, मुझे पास करना है। इसको कहा जाता है छोड़ो तो छूटो, इंतजार नहीं करो। परमात्मा कहते हैं इंतजाम करो।

किसी भी प्रकार के स्व के संस्कार व स्वभाव व दूसरों के स्वभाव और संस्कार देखने और वर्णन करने की कमजोरी है। पुरुषार्थ में निराधार नहीं आधार है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का लगाव है, किसी भी गुण व शक्ति की कमी है। यह है भिन्न भिन्न दुखों के परिस्थितियों की डालियां। तो इन डालियों में से किसी एक भी डाली को पकड़ के तो नहीं बैठे हो? अगर किसी भी डाली को पकड़ा हुआ है तो दुखों से छूट नहीं सकते। परमात्मा के समीपता का अनुभव नहीं कर सकते। परमात्मा कहते हैं छोड़ो तो छूटो, यह पाठ पक्का किया है? दुखों के डालियों को तो नहीं पकड़ते हो? थक जाते हैं ना तो डाली को पकड़कर बैठ जाते हैं। कभी स्वयं से थक जाते हैं, कभी दूसरों से थक जाते हैं, कभी सेवा से थक जाते हैं, तो डाली को पकड़कर फिर चिल्लाते हैं अब छुड़ाओ अब छुड़ाओ। परमात्मा कहते हैं पकड़ा आपने खुद है और छुड़ावे परमात्मा, यह कैसे हो सकता है? इसीलिए परमात्मा कहते हैं सदा छोड़ने की ताकत रखो। भिन्न भिन्न दुखों की डालियों को परिस्थितियों को पकड़े नहीं रहो। परिस्थितियां आएंगी और गुजर जाएंगी, बातें आएंगी और गुजर जाएंगी, उसमें अटके नहीं रहना है। परमात्मा कहते हैं मन बुद्धि से इन दुखों के डालियों को छोड़कर परमात्मा के समीप पहुंच जाओ। इस कलयुग में किसी भी बात से लगाव नहीं होना चाहिए। न हमारे नाम के प्रति हमें लगाव होना चाहिए, न हमारे इमेज के प्रति हमें लगाव होना चाहिए, न हमारे मान के प्रति हमें लगाव होना चाहिए। हमें बाहर की दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। परमात्मा कहते हैं स्वयं को इतना भरपूर कर लो कि बाहर से कुछ भी मांगने की जरूरत ही ना पड़े। और ये तभी मुमकिन होगा जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में टिक कर परमात्मा को याद करेंगे। जब तक इस दुनिया के देहधारियों को याद करेंगे हम दुखी होते रहेंगे, लेकिन जब हम खुद के आत्मिक स्वरूप में टिक कर खुद को आत्मा समझकर सुखों के सागर परमात्मा से अपने मन बुद्धि को जोड़ेंगे तभी हम सुखी हो पाएंगे। जब हम खुद को जानेंगे तभी हम खुदा को भी जान पाएंगे। परमात्मा कहते हैं पहले स्वयं को पहचानो तभी हम परमात्मा को भी पहचान पाएंगे। श्रोते हो, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

वतन कराक के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। 19वीं शताब्दी की शुरुआत की बात है। अंग्रेजी हुकूमत और भारतीय सूदखोरों द्वारा किया जा रहा जनता का शोषण अपनी चरम पर था। जाहिर है नियति को विद्रोह का फैसला लेना पड़ा। आदिवासी समुदाय ने अपने तीर कमान उठा लिए। शुरुआत में सबने अपनी अपनी लड़ाई लड़ी, लेकिन जरूरत थी कि स्व की लड़ाई को स्वाभिमान की लड़ाई में बदल दिया जाए, स्वाभिमान देश का। तब सामने आया वो नायक जिसने एक छोटी सी चिंगारी को दावानल में बदल दिया। उसने एक संगठित विद्रोह द्वारा 20 साल तक अंग्रेजों को नाको चने चबवाए। तब हताश होकर अंग्रेजों को पहली बार एक क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए पुलिस ब्रिगेड बनानी पड़ी, मगर विडंबना देखिए वो ब्रिगेड भी उसे पकड़ ना सकी। और तब वही हुआ जो अक्सर आजादी संग्राम के इतिहास में हुआ करता था, गद्दारी। उस महानायक के अपने ही साथी ने उसे गिरफ्तार करवा दिया। 4 दिसंबर 1889 को फांसी के फंदे को गले लगाकर वो देश की खातिर शहीद हो गया। उस क्रांतिकारी का नाम था टंट्या भीम।

कुछ व्यक्तित्व होते हैं जिन्हें शब्दों में बांधना आसान नहीं होता। स्कॉलर, आलोचक, दार्शनिक, क्रांतिकारी, कवि, योगी या फिर ऋषि। जब इतने अलौकिक गुण एक व्यक्ति में समाहित हो जाएं, तो वो महर्षि अरविंद घोष बन जाता है। महर्षि भारतीय समाज को संस्कारों और आध्यात्म का आधार देकर मजबूत करना चाहते थे, जबकि अंग्रेज अंग्रेजियत से युक्त शिक्षा प्रणाली द्वारा भारतीयों को उनकी जड़ों से काटना चाहते थे। अरविंद ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो व्यक्तित्व को मजबूती देकर लोगों को उनके वास्तविक चित्त से जोड़ सके। अंग्रेजों को ये बात खतरनाक लगी और उन्होंने अरविंद घोष को जेल में डाल दिया। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जब जेल में उनसे मिलने गए तो उनके सामने शीश नमन करते हुए बोले, देश के दोस्त, भारत की आत्मा, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ।

ऋग्वेद में कहा गया है, अज्येष्ठा सो अकनिष्ठास्थे संभ्रांत रोवा वृद्ध सोमगाया, अर्थात मनुष्यों में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, सब बराबर के भाई हैं। सबको मिलकर लौकिक और पारलौकिक उत्थान के प्रयास करना चाहिए। वेदों को आधार बनाकर छुआछूत का विरोध करने वाले और भारत के संविधान के निर्माता थे बाबा साहब अम्बेडकर। संपूर्ण मानव जाति को एक कुटुंब मानने वाले डॉक्टर अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था, ताकि भारतीय समाज को पुनर्गठित करके उसमें सामाजिक एक रास्ता लाई जा सके। शायद ये देश की आजादी के लिए बेहद जरूरी भी था।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। संगीतकार थे उमेश वीनस, तापसी नागराज और मॉरिस लाजरस। आलेख और उद्घोषणा सुधानुपम, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। आज के इस कार्यक्रम में आपने जो गीत सुने उन्हें हमने लिया था स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जन गर्जे श्रृंखला के अंतर्गत जारी ऑडियो एल्बम्स से।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: Sunedi Awaaz 107.8 FM World Renewal Spiritual Trust ka samudayik radio. Khush raho, khushiya baato.
1: Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister.
2: Thank you so much. Om Shanti.
1: Om Shanti and welcome to Being Shakti.
2: Thank you.
1: सबसे करेज के ऊपर कुछ मुझे एक बहुत अच्छा पॉइंट मिला था तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करूंगा. सेज करेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल द वर्च्यूज बिकॉज विदाउट करेज यू कांट प्रैक्टिस एनी अदर वर्च्यू कंसिस्टेंटली. यू कैन प्रैक्टिस एनी वर्च्यू erratically, but nothing consistently without courage.
2: हमने पिछली बार देखा power to decide against all public opinion also, चाहे लोग कुछ भी और कह रहे

0: हो, चाहे मान्यताएं कुछ और हो, बिलीफ सिस्टम्स कुछ और हो, और ये इतना ब्यूटीफुल है कि ये सब कुछ करने के लिए, मतलब अपनी सारी वैल्यूज, क्वालिटीज, ओरिजिनलिटी पे सदा टिकने के लिए, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट थी कि इराटिकली तो आप कोई भी वर्च्यू को प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब कभी किया कभी नहीं किया, थोड़े दिन किया फिर छूट गया, छोटी मोटी बातों में किया, बड़ी बातों में गिव इन कर दिया, तो इराटिकली तो आप कोई भी वर्च्यू को प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना है तो फिर सदा के लिए सबसे बड़ी वर्च्यू, या इसको हम पावर भी कह सकते हैं, वो है करेज, हिम्मत। क्योंकि बातें आएंगी हर बार, परिस्थितियां आएंगी हर बार, अपनी वैल्यू को पकड़ के रखना, अपनी उस ओरिजिनलिटी पे टिके रहना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चाहिए होगी हमारी हिम्मत, हमारी करेज, विच ऑल्सो मीन्स द पावर टू फेस एनी सिचुएशन एंड एनी पर्सन।
1: हो सकता है कोई रॉन्ग डूइंग के लिए मुझे बहुत सारा पैसा मिले, रॉन्ग बिजनेस, मतलब विच इज नॉट लीगल और वट एवर विच इज नॉट राइट, तो वहाँ करेज टू से नो भी आना चाहिए ना।
0: दिस इज ओनली इट कि अपनी वैल्यूज पे टिके ना, लोग क्या कहते हैं उस पे नहीं सकम्प किया, ग्रीड क्या कहती है उस पर नहीं सकम्प किया, फैमिली भी कई बार कह सकती है कि इट्स ओके टू डू दिस, व्हाट्स रॉन्ग इन दिस, सारे प्रेशर्स के अगेंस्ट, अपने पुराने संस्कार के भी अगेंस्ट,
1: अपने ग्रीड, अपने लालच,
0: अपना ईगो, अपना स्टेटस, अपनी पोजीशन, वो सब कुछ तो बढ़ेगी ना अगर हम धन ले लेंगे इस तरह से, उन सारे चीजों के अगेंस्ट खड़े होकर अपनी ओरिजिनलिटी के थ्रू डिसाइड करके आंसर देना,
1: कितना सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, करेज,
0: करेज, कितनी हिम्मत होनी चाहिए। और इसलिए राजयोग में जब हम पावर्स सीखते हैं, समझते हैं और अनुभव करते हैं, ये हमारी नेक्स्ट पावर बन जाती है, दैट इज पावर टू फेस एनी सिचुएशन एंड पावर टू फेस एनी संस्कार एंड पावर टू फेस द संस्कार ऑफ एनी अदर पर्सन। एक हमने देखा सहन करने की शक्ति, एक्सेप्ट करने की शक्ति, पावर टू फेस मतलब सामना करने की शक्ति, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देर इज ऑलवेज दैट परख कि किस बात में सहन करना है, किस बात में सामना करना है, किस बात में एडजस्ट करना है, किस बात को फेस करके मुझे एक्सप्लॉइट नहीं होना है, ये भी थिन लाइन है। ऐसे नहीं हम तो सहन कर रहे थे, हम तो सहन कर रहे थे, सहन कर रहे थे, कोई हमारे साथ गलत भी कर रहा था, हमने कहा हम तो सहन कर रहे थे, कितने सालों के बाद बोलेंगे आई वॉज बींग अब्यूज्ड फॉर सो मेनी ईयर्स, होता है ना ऐसा। एक बार भी कोई ऐसा कुछ करे तो हमारे पास सामना करने की शक्ति होनी चाहिए। कितने लोग 5 साल 10 साल के बाद आई वॉज बींग अब्यूज्ड बाय सो एंड सो इन माई फैमिली, आई वॉज बींग एक्सप्लॉयटेड बाय सो एंड सो एट माई वर्क प्लेस, कितनी बहने पता नहीं कितने सालों बाद कहते हाँ मेरे हस्बैंड तो मुझ पर हाथ उठाते ही हैं, मुझे मार तो खानी ही पड़ती है, क्या करे सहन कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते इसको सहन नहीं करना है, सहन क्या करना है और किसका सामना करना है वो भी परखने की शक्ति चाहिए। सहन क्या करना है, किसी का कोई संस्कार है उसके साथ एडजस्ट करके हमें चलना है, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो हमारा नुकसान कर रही है और उसका हम सामना करने की बजाय मजबूरी से सोशल प्रेशर के कारण हमने कहा हम इसको सहन कर रहे हैं, और जो छोटे छोटे लोगों के संस्कार हैं जिसको हमें सहन करना है उसको हम सामना करते हैं, वी कन्फ्रंट पीपल, जहां हमें एडजस्ट करना चाहिए हम कन्फ्रंट कर देते हैं, जहां हमें कन्फ्रंट करना चाहिए वहां हम कहते हैं हमने एडजस्ट कर लिया। दिस थिन लाइन, ये करेज इसलिए चाहिए, करेज टू फेस सिचुएशंस एंड पीपल आल्सो।
1: वो वाली लाइन याद है आपको, ओ गॉड गिव मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज,
0: वेरी ट्रू,
1: द करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन एंड द विजडम टू नो
0: द डिफरेंस बिटवीन द टू।
1: तो ये विजडम
0: सामना करने की शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। कई जगहों पर ऐसा होगा कि हम जो प्रिंसिपल्स पे चलना चाहते हैं

0: इतना हम रोज परमात्मा से कनेक्शन जोड़ेंगे। अगेन मेडिटेशन के बिना हरेक के अंदर ये शक्ति अगर नहीं भी है तो डेली मेडिटेशन करने से ये शक्ति इमर्ज होती है। ये हरेक को आज चेक करना पड़ेगा, कहीं ऐसा कोई चीज तो नहीं है, कोई लोग तो नहीं है, कोई हमारा अपना संस्कार तो नहीं है जिसका हमें सामना करने की जरूरत है। वी हैव टू फेस इट एंड चेंज इट। कोई ऐसा तो नहीं है जिसके साथ हमें सहन नहीं करना, लेकिन अगर हम सहन करते जा रहे हैं तो मेरी अपनी शक्ति कम हो रही है, वो करेज को मुझे वापस अपने अंदर वापस इमर्ज करना है। आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, सर्वशक्तिवान। जब हम कहते हैं ऑल माइटी अथॉरिटी, रोज उससे अगर कनेक्शन हम जोड़ेंगे, रोज पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ेंगे, तो ये जो फियर्स है ना, छोटे छोटे हमने जो पकड़ के रखे हुए, चाहे वो सोशल स्टिग्मा के हैं, चाहे वो अपनी ही कोई फियर है, ये सारे फियर से हमारे लिए ऊपर उठना बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए आपकी वो लाइन बहुत अच्छी है, कोई भी एफर्ट हम करें, कोई भी पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, कोई हम डिसीशन आज लेते हैं कि ये मैंने चेंज करना है, ये संस्कार को मैंने बदलना है, उसको बदलने के लिए भी हिम्मत चाहिए। बाहर लोगों के साथ तो हिम्मत चाहिए, संस्कारों के साथ औरों की हिम्मत चाहिए, लेकिन अपने संस्कार को, अपनी आदत को, उसका सामना करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। क्योंकि हम नहीं तो कभी कभी अपने ही संस्कार से हार जाते हैं कि सोचा तो था आज से करेंगे, डिसाइड तो किया था आज से करेंगे, लेकिन सामना करने की बजाय अपनी, फिर हम क्या कहते हैं, आदत से मजबूर। कुछ हमारे अपने संस्कार हैं जिनकी वजह से हम अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उसका भी सामना, वो भी हिम्मत से, कि हम कभी भी अपने ही संस्कार के परवश होकर हार तो नहीं जाते।
1: पुरानी आदतें,
0: तो उस पर भी तो हिम्मत से ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा ना।
1: मैंने महात्माओं में देखा है, बड़े बड़े संतों में देखा है, किसी को एंगर कितने बड़े बड़े महात्मा में देखा है, वो संस्कार कितना लास्ट जाता है, उन्होंने खान पीन पान पे, बात करने पे, साइलेंस करते हैं, मौन करते हैं, दिन में 5-5 घंटे, इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन है।
0: हाँ, तो उस संस्कार का सामना करना, लेट अस नॉट अलाउ इट टू लिव इन साइड अस, हमें उसका सामना करना है, उसको भी अपने घर से निकालना पड़ेगा।
1: वो कम्फर्ट जोन है ना मेरा, आई एक्सेप्ट दिस कम्फर्ट जोन, ठीक है जी, मेरा नेचर एक ही तो है, बाकी सब जगह तो मैं अच्छा हूँ।
0: एक चीज भी हमारी पावर को क्या करेगी, डिप्लीट करेगी ना। इट्स नॉट कि हमने एकदम से उस पर ओवरकम कर लिया, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। सी, जैसे हम औरों को क्या एक्सेप्ट करना है, क्या नहीं एक्सेप्ट करना है,
1: दूसरे के अंदर जो एंगर है वो मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ ऐसे,
0: तो अपने
1: इसमें एक ही है, बाकी इतनी अच्छी क्वालिटीज हैं, वो मैं कभी नहीं बोलूंगा।
0: कभी भी अपने को हम ये नहीं कहें कि क्या करें, ये तो नहीं जाता, यू नो, ये आदत तो चेंज नहीं होती, मैं कमजोर हूँ। परमात्मा हमेशा सिखाते हैं, इवन अगर आप 1,00,000 बार हार गए उस आदत से, नेक्स्ट मॉर्निंग You will have to get up with a different thought. अगर अगले दिन ये thought से उठे, नहीं होता, बहुत difficult है, कितनी बार सोचा है, शायद ये आदत मेरी जल्दी change नहीं होगी, चलो औरों में भी तो है, धीरे धीरे कभी न कभी मेरी भी हो जाएगी, इतना भी कौन सा नुकसान हो रहा है इस आदत से, ये वाली thoughts अगर create की, तो हमने अपनी ही will power को कम कर दिया। इट्स लाइक पुटिंग अ डिलीट बटन इन द विल पावर।
1: यू फेल ओनली व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग।
0: बिल्कुल,
1: ट्राई करना छोड़ दिया और बोले नहीं, अब मेरे से अब इस उम्र में क्या होना है जी,
0: तो वो कंसिस्टेंसी खत्म हो गई। फिर वो जो हिम्मत मींस हर रोज यही कहना, आज मैं इस संस्कार को फिनिश कर दूंगी।
1: 10 साल पहले सिस्टर मैंने ये लाइन बोली थी, अब यार इस उम्र में क्या करना, नहीं होता है, अब ये उम्र में चेंज करना अपने आप को मुश्किल है। और आज इतनी चेंजेस आज की मैंने,
0: बिकॉज वी डिड नॉट गिव अप ऑन एट ना, हिम्मत।
1: हाँ, लेकिन बड़ा इजी था वो बोलना।
0: बोलना इजियर है क्योंकि वो बोलते ही फिर उसके बाद कुछ करना थोड़ी पड़ेगा,
1: और लिबर्टी है ना।
0: हाँ, जैसे
1: हमने आपको लिबर्टी भी दे रहे हैं,
0: जैसे
1: दोबारा करो और कर लो,
0: तो वैसे ही रहेंगे। अब वैसे रहते रहते आत्मा की पावर धीरे धीरे तो घटेगी ना। The more I use my acquired sense

0: कार्ड, आत्मा की पावर तो धीरे धीरे धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है, और जैसे ही हमने कहा नहीं दिस इज गोइंग टू चेंज, ये संस्कार कंफर्टेबल नहीं है, इट हैज टू गो, और फिर हिम्मत से इसने कहा करेज, उस करेज से उसके साथ लगे रहे, जैसे किसी के साथ लड़ते हैं ना, तो लगे रहते हैं, गिव अप नहीं करते, लड़ते जाएंगे जब तक जीतेंगे नहीं, ऐसे ही अपने संस्कार के साथ हिम्मत से लड़ना, वी विल नॉट लूज, वी मे नॉट हैव रीच्ड कंप्लीट विक्ट्री, बट इफ वी गिव अप ऑन दैट संस्कार टुडे, वो हिम्मत अगर आज छोड़ दी कि नहीं होता, चलो ना धीरे धीरे कर लेंगे, ये एक एक वर्ड भी, ये एक एक थॉट भी आत्मा की कितनी शक्ति को वेस्ट कर देता है। हम बहुत इजीली कहते ट्राई कर लेंगे, चलो कल करते हैं, आज अभी। परमात्मा एक बहुत अच्छी लाइन हमें कहते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं।
1: इवन टू स्टार्ट मेडिटेशन,
0: यस,
1: मैं कितनी बार सोचा आज तो लेट नाइट हो गया था, मेहमान आए थे, फलानी जगह डिनर है, आज पार्टी है, कल सुबह तो लेट उठूंगा, कल मेडिटेशन ही परसों से कर, परसों बच्चे आ गए, रात को बच्चे नींद उठा दी, ग्रैंड चिल्ड्रन मेरे साथ सो गए थे, बच्चे बाहर गए, परसों से करूंगा।
0: ऐसे करते करते इट्स लाइक जैसे हमें कोई और कोई कमिटमेंट देता है और फिर नहीं उसको पूरी करता,
1: वाह,
0: होता है ना ऐसे कोई?
1: बहुत बुरा लगता है मुझे,
0: बुरा लगता है ना। अभी मैं आपको आज कहूँ मैं कल सुबह आपका ये काम कर दूंगी,
1: मेरा टेलर ये कुर्ता अगर बोले कल सुबह देता हूँ और दो दिन तक नहीं
0: दे, तो क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी उस व्यक्ति की? तब कहेंगे व्यक्ति की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। कनेक्शन, रिलेशनशिप, ये सेम थिंग विद अस,
1: मेरी क्रेडिबिलिटी मेरे साथ ही, मैं तो अपने इसलिए जानता हूँ ना,
0: क्रेडिबिलिटी नहीं हुई ना, आज अपने आप को कहा कल सुबह मैं उठूंगा या कल से मैं ये करूंगा, ये कहा मतलब अपने आप को कमिट किया,
1: तो फिर मैं बोलूंगा मैं तो ऐसे ही बोलते ही रहता हूँ, करते रहते, पोस्टपोन करते रहते।
0: और जो लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं ना, ऐसे भी लोग मिलते हैं ना जो लोग बोलते रहते हैं हाँ हाँ कर देंगे, यस यस यस, आई विल डू फॉर यू, डोंट वरी, तो थोड़े दिन के बाद हम क्या कहते हैं, इस व्यक्ति की तो बिल्कुल क्रेडिबिलिटी नहीं, इसकी बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। जब हम अपने आप को रोज एक बात कमिट करेंगे कल से मैं ये करूंगा, फिर हम खुद अपने आप को कल दो बहाने भी बना देंगे उसके लिए कि नहीं आज तो ऐसा हुआ, फिर दो दिन बाद हम फिर कमिट करेंगे नहीं आज से तो पक्का करूंगा, फिर हम फिर कुछ कारण बना देंगे, कहेंगे आज हम नहीं कर पाए क्योंकि इसलिए ऐसा हुआ था। ये करते करते अपना अपने ऊपर विश्वास कम होता जाएगा एंड धीरे धीरे फिर कहेंगे मेरे से नहीं होता, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, अदर पीपल मस्ट बी डूइंग इट, नॉट फॉर मी। एंड अपने ऊपर पहले विश्वास खत्म हुआ, फिर अपने ही ऊपर गिव अप भी कर दिया, और फिर अपने आप को अलाउ कर दिया उस कमजोर आदत या कमजोर संस्कार के साथ चलने में, और धीरे धीरे वो आदत संस्कार हमारे ऊपर हावी हो जाएगी, कुछ समय के बाद तो हम उसको छोड़ने का भी नहीं सोचेंगे।
1: छोड़ने का मन नहीं है इसलिए हम ये कल परसों करते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास करेज नहीं है,
0: हम हिम्मत नहीं, हम उस क्षण गिव अप कर देते हैं ना उस आदत,
1: गिव अप कहाँ किया है, अंदर से मन ही नहीं है।
0: अगर डीप विद इन मन ही नहीं है चेंज करने का, तब तो प्रोसेस शुरू भी नहीं हुआ अभी।
1: तो सिस्टर कई बार देखो अलार्म भी लगाते हैं, अंदर से मन ही चलो मैं ट्राई करूंगा ये करूंगा, फिर बंद कर देते हैं।
0: ट्राई जो शब्द है, ट्राई करूंगा, कोशिश, प्रोबेबली, मे बी, ये सारे जो वर्ड्स हैं, जैसे आपने कहा मैंने टेलर को कहा कल सुबह ये कुर्ता देना, अगर वो आपको कहता ट्राई करूंगा, मे बी, शायद, देखता होता है या नहीं, और अगर आपको ये कल चाहिए,
1: मैं उसको नहीं दूंगा, दूसरे के पास जाऊंगा,
0: द सिंपल है, मतलब विश्वास उस आत्मा के ऊपर, ट्रस्ट, फेथ नहीं बैठेगा इस वोकैबुलरी के साथ, लेकिन जो आपको कहेगा टुमारो मॉर्निंग 8 o'clock ही आपके पास पहुंच जाएगा, फर्स्ट थॉट, फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट डिटर्मिनेशन, वो हिम्मत है। जिसने वो थॉट भी नहीं क्रिएट की, फर्स्ट थॉट भी, तो आगे जर्नी में वो हिम्मत नहीं आएगी। इसीलिए आज कोई भी अपनी एक आदत उठाएं, कोई अपना संस्कार उठाएं जिससे बहुत बार हारे हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप पर उसके लिए विश्वास ही नहीं है कि ये हमसे छूटता भी है कि नहीं।

0: अपनी ओरिजिनलिटी से डिस्कनेक्ट हो गए थे, थोड़ा सा अटेंशन
1: आप फिर टीचर के पास भी जाते, आज भी 30-30 साल हो गए लोगों को खेलते हुए, फिर पहुंच जाते सर आई हैव दिस प्रॉब्लम।
0: अब इस केस में क्या है, पहले वो उनके फॉर्म था राइट, फिर थोड़े पीरियड के लिए सडनली बीच में आउट ऑफ फॉर्म चले गए, थोड़ा सा अटेंशन अवेयरनेस पुरुषार्थ किया, वापस इन फॉर्म आ गए। आत्मा भी ओरिजिनली उसका फॉर्म क्या था,
1: वंडरफुल,
0: ओरिजिनली वो ये थी, फिर बीच में थोड़े पीरियड के लिए आउट ऑफ फॉर्म चली गई, जैसे ही उस टीचर से कनेक्ट होगी,
1: वाओ,
0: है ना, वापस वो ज्ञान और पावर को लेगी। और परमात्मा तो सबसे पहला ज्ञान यही हमें देते हैं, ये आपका ओरिजिनल फॉर्म है, कम ऑन, वी आर गोइंग टू गो बैक टूवर्ड्स इट। आत्मा वापस अपने फॉर्म में आ जाएगी।
1: योर लव, योर पीस, योर
0: करेज, योर फॉर्म,
1: योर ब्लेस,
0: सारी चीजें, दैट्स द ओरिजिनल क्वालिटी। कोई नई चीज नहीं हम कर रहे, हम एक नया प्लेयर नहीं है जो आके गोल्फ सीखने वाला है। दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। हम वो प्लेयर हैं जो फॉर्म में थे, आउट ऑफ फॉर्म हो गए, वापस फॉर्म में आ जाएंगे।
1: वंडरफुल,
0: थैंक यू सो मच। ओम शांति,
1: ओम शांति।
2: करेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्च्यू। विदाउट करेज वी कैनॉट प्रैक्टिस एनी अदर वर्च्यू consistently. We can practice any virtue erratically, but not consistently without courage. We have to discern when to use the power to adjust and when to use the power to face or confront. When it comes to difference of opinions and ways of working, we need to adjust with others, not confront them. But when there is abuse, exploitation, or compromise on values and principles, we need to confront, not adjust. If we adjust and accept exploitation, violence, abuse, or compromise on our values because of social pressure, public approval, or success in career, and we feel we do not have a choice, we are helpless, then it is lack of power to face situations, and this makes us emotionally weak. We need to confront our sanskars, which are not right for us. We need to constantly work on that sanskar, even if we have failed many times. We should never stop trying or give up on ourselves and accept our wrong habits. If we give up, the sanskar becomes stronger and our willpower becomes weaker.
3: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999-559-660.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माय कार इज इन माय कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटीफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो।

0: और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट। अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपनी करना शुरू कर दे, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या

0: कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने, टेबल रखिए, उठा मेरा पैर लग गया। सबको डांट रहा था तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लगी मस्त नजर की कतार, हा हा हा, मस्त नजर की कतार, दिल के उतर गई पांव, इन प्यार की राहों में, ओ इन प्यार की राहों में, दिल भी गया हम भी गए, दस में जिगर है बहार, मस्त नजर की कतार, मस्त नजर की कतार, दिल के उतर गई पार, इन प्यार की राहों में, हो इन प्यार की राहों में, दिल भी गया हम भी गए।

क्या थी अदा जिससे पिता हमको हुए सौभाग्य। मस्त नजर की कटा

भर के ख्यालों में, हाय दिल भर के ख्यालों में, हम तो मगन गाते चले प्यार के नगमे हजार, मस्त नजर की कतार, मस्त नजर की कतार, हर दिल के उतर गई पार, इन प्यार की राहों में, ओ इन प्यार की राहों में, दिल भी गया हम भी गए सदमे।

वो जो नहीं ठीक लगे रंग भरा संसार मस्त नजर की कटार मस्त नजर की कटार दिल के उतर गई पार हाय हाय हाय प्यार की राहों में वो इन प्यार की राहों में दिल भी गया हम भी गए जब मिट गया हम मस्त नजर की कटार दिल के उतर गई पार इन प्यार की राहों में वो इन प्यार की राहों में दिल भी गया हम भी गए जब मिट गया हम मस्त नजर की कटार हा हा।

0: अरे ये क्या कह रही हैं आप?
1: अभी और गाइए।
0: चुप रहो भाई साहब, नाराज हो जाएंगे। और गाइए।
2: हाँ गाओ।
3: मैं और नहीं गा सकती।
2: गाओ,
0: आपको गाना पड़ेगा।
3: मैं गाऊंगी। चाहे

खटकवा माँ खटक हो बेकरी, फांस लगे है तो करजवा माँ खटक हो बेकरी। नैन लड़ गई है नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कथक हो बेकरी। सही सही सही सही झाक दिनक दिन झाक दिनक दिन झाक दिनक दिन झाक दिनक दिन झाक।

कोई तो कमाल की बात है लता जी की कि वो इतनी अच्छी इतनी बड़ी कलाकार है, मगर वो कभी मेरे ख्याल से ये नहीं सोचती कि मैं, हाँ मैं तो बहुत अच्छी बहुत बड़ी आर्टिस्ट हूँ, मैं लता मंगेशकर हूँ, तो मैं कोई भी वक्त कोई भी गाना किसी भी तरह गा लूँ। हम सबके लिए उन्होंने गाया, मेरे से पहले वालों के जेनरेशन के लिए भी गाया और आज तक गा रही हूँ। उनमें एक बहुत बड़ी खूबी वो ये है कि वो जिस आर्टिस्ट के लिए गाती हैं वो उनके हिसाब से गाती हैं।

शहर में है चोर बड़े, जंगल में है मोर बड़े, शहर में है चोर बड़े, अपने व्यवस्था यहाँ पड़े हुए हैं और बड़े। माइकल तो बच लोगों की खाली जेब कतरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है।

0: कत्ल करके चले ये वफा खूब है।
1: हाय नादा तेरी के अदा खूब है।
0: मैं किस गलियों की परछाई कभी यहाँ कभी वहाँ

बैया छोड़ मेरी बैया पलम बेमान आते जाते देख लेगा कोई।